मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 45 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग

0: की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

दिन आता है, चला जाता है, आयु यूं ही बीतती चली जाती है। वो दिन व्यर्थ है जो ईश्वर के भजन के बिना व्यतीत हो। इसलिए प्रत्येक दिन के पल पल का सदुपयोग कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, ईश्वर का स्मरण रखिए।

जैसे जैसे संसार के कोने कोने में शिक्षा का प्रसार होता चला जाएगा, मनुष्य की प्रगति भी होती चली जाएगी। अंधविश्वास और कुरीतियां बंद होती चली जाएंगी। जब तक मनुष्य के भीतर चेतना और जागरूकता नहीं आएगी, तब तक मनुष्य का विकास संभव नहीं। ईश्वर का स्मरण रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलें।

हर सुबह सूरज उगता है और दिन भर किरणें बिखेरने के बाद शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। सूरज भी कभी कभी बादलों के पीछे हो जाता है, ढक जाता है। इसी तरह से जीवन का रास्ता एकदम सीधा और सपाट नहीं रहता। कभी इन रास्तों पर कठिनाइयों के पत्थर आते हैं तो कभी अनिश्चितता की धुंध छा जाती है, पर हमें अपने पथ पर सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए।

मनुष्य को जीवन की राहों में अपने आदर्शों और अपने मूल्यों से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। अपने आदर्शों और मूल्यों से समझौता करने पर हम किस तरह अपने आप से सामना कर पाएंगे, हमें तय करना चाहिए कि हमारी प्रगति हमारे मानव मूल्यों पर आधारित हो।

0: आज की वंदना में देशभक्ति पूर्ण रचना वीनस तर्कसवार के स्वर में और भजन लता मंगेशकर, अजीत कड़कड़े, अशोक खोसला और अंबर कुमार के स्वर में सुने। अब आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायन स्वर अनुराधा पौडवाल का है और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

काक भुशुंड ने पक्षीराज गरुड़ को बताया, जैसे गुरु अथवा वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, वैसे ही भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतोष की प्राप्ति से कामनाओं से मुक्ति मिलती है। जब तक कामनाएं जगती रहती हैं, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता।

0: श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति अभी आपने सुनी। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं चिंतन। आज का विषय है विनम्रता।
1: एक विचारक से किसी ने प्रश्न किया, मानव स्वभाव में कौन सा ऐसा गुण है जो उसे समाज में प्रतिष्ठित बनाता है। प्रश्न सुन विचारक कुछ देर चुप रहा, लगा जैसे चिंतन की सरिता में डुबकी लगा रहा हो। मानव स्वभाव के गुण एक के बाद एक उसके मानस में तिरते जा रहे थे। सहसा उसके मानस में बिजली सी कौंधी और उस प्रकाश में उसे आभास हुआ कि सभी से ऊपर एक ऐसा गुण है जो यदि मानव में हो तो वो सचमुच समाज का स्नेह पात्र बन सकता है, सही अर्थों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। फिर प्रश्नकर्ता की ओर मुखातिब होता हुआ चिंतक बोला, मानव स्वभाव का वो गुण है विनम्रता। चिंतक कहता जा रहा था, यूं तो मानव को समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए अनेक गुणों की आवश्यकता होती है, किंतु यदि वह विनम्र न हुआ, विनयी न हुआ, तो न तो वह समाज में उतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेगा और न ही जीवन के किसी क्षेत्र में मनचाही सफलता उसे मिल सकेगी। अतः लौकिक दृष्टि से मानव के भीतर नम्रता का गुण आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अध्यात्म पथ पर विनम्रता तो पाथेय है ही। लगता है मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो किसी का गर्व सहन नहीं कर पाता, किसी की हेटी उसे नहीं सुहाती। यदि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति भी अहंग के नशे में चूर सर्वत्र सदैव अपनी ही डेंग हांकता है तो समाज उसे भी स्वीकार नहीं करता। अहम की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है और प्रत्येक अपने अहम की तुष्टि चाहता है। यदि कोई अपने अहम को सर्वोच्च स्थान देने का प्रयास करता है तो इससे दूसरों के अहम को ठेस लगती है और चाहते हुए भी अहंकारी को वो अपना आदर नहीं दे पाता। आदर वो उसी को दे पाता है जो यदि उसके अहम को सहलाता नहीं तो कम से कम उसमें हीन भावना का सृजन तो नहीं करता। विनम्रता पुरुष की महानता का लक्षण है। जो जितना महान होता है वो उतना ही विनम्र होता है। महानता और विनम्रता का सहज संयोग होता है। विनम्रता के अभाव में महानता थोथी और

0: ओनी बन जाती है। न्यूटन का नाम जाना सुना है। ये विश्वविख्यात वैज्ञानिक अपनी उपलब्धि से इन्होंने विज्ञान जगत को एक नई दिशा और एक नई ज्योति दी। एक दिन जब किसी ने उनके ज्ञान के विषय में पूछा तो जानते हैं न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा, ज्ञान सागर को थहाने की बात तो अलग रही, मैं तो अभी उस सागर के किनारे पर खड़ा होकर कंकड़ियां बटोर रहा था। न्यूटन की वो शालीनता, वो विनम्रता क्या हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं है? सन 1965 की बात है, भारत पाक संघर्ष समाप्त ही हुआ था। एक सज्जन स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री से मिलने गए। उनकी उपलब्धि पर उन्होंने शास्त्री जी को बधाई दी, किंतु विनम्रता की प्रतिमूर्ति शास्त्री जी ने सकुचाते हुए दबी जुबान से केवल इतना ही कहा, हां कुछ बात बन ही गई। विनम्रता का यह गुण प्रकृति में भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। वृक्ष जब फल से लद जाते हैं तो वो झुक जाते हैं, बादल जलपूर्ण होने पर नीचे आ जाते हैं। जब प्रकृति में विनम्रता इस प्रकार समाई है तो पुरुष में भी नम्रता होनी ही चाहिए। चिंतक की इस बात की अनुभव और तर्क दोनों ही पुष्टि करते हैं। यदि मानव विनम्रता का पाठ सीख गया तो सचमुच जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सीख गया।
1: अभी आपने सुना चिंतन, ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: कवि श्री राग तेलंग,
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज इसके अंतर्गत डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर से जानिए लघु कृषकों के लिए कोल्ड स्टोरेज के बारे में।
4: किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम कोल्ड स्टोरेज के बारे में बताना चाहते हैं। कोल्ड स्टोरेज एक ऐसी संरचना और सुविधा है जिसमें खाद्य सामग्री या अन्य भी जैसे दवाई है या वैक्सीन है आदि को रखने का शीत या फ्रीज करने वाला भंडारण होता है। यहाँ खाद्य पदार्थ जैसे कि सब्जियाँ, फल, दूध, पनीर, मक्खन, अचार, मुरब्बे, अंडे तथा अनाज से संबंधित सामग्री भी अपन कम तापमान पर और आर्द्रता को भी नियंत्रित कर सकते हैं अपन इस तरह की संरचना में। इसमें खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता जिससे ताज़ी बनी रहेगी, साथ ही उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी जिससे उनके सड़ने की दर बहुत कम हो जाएगी और कुछ सामग्री को अपन 2-3 सप्ताह तक और कुछ खाद्य सामग्री को अपन 6-12 माह तक भी रख सकते हैं। और जहाँ तक लघु कृषकों के लिए 5-10 टन के छोटे या मिनी कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकते हैं जिनमें कि 5 टन की क्षमता की लागत करीब 33-42 लाख रुपये और 10 टन की क्षमता की लागत 65-80 लाख तक आती है, जिसमें कि सोलर पैनल भी लगी होती है। अब इसमें जिससे 6,000-8,000 रुपये तक प्रति माह आपको बिजली बचत होगी सोलर सिस्टम के कारण। और फिर इससे फ़ायदा ये है कि पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचता है सोलर पैनल लगाने से, और साथ साथ क्या होता है कि जो ऊर्जा के उपयोग की स्वतंत्रता होती है जिसमें अपने के पास जैसे बिजली आपूर्ति पर आप कोल्ड स्टोरेज की निर्भरता कम हो जाती है। अब एक बात और है कि जहां मिनी कोल्ड स्टोरेज के स्थान पर चयन करने की बात है, वहां 10 टन कोल्ड स्टोरेज के लिए आपको 14 फीट × 10 फीट × 10 फीट का आपको कोल्ड स्टोरेज के लिए एक कमरा चाहिए होता है, और ये चयन ऐसा होना चाहिए जहाँ तक पहुँच किसान भाइयों की आसान हो ताकि वो सामान ले जा करके रखें और जल्दी से वहाँ से सामान एक दूसरे स्थान पे ले जा सकें। अब कोल्ड स्टोरेज कैसे काम करता है, इसमें जैसे कूलिंग सिस्टम होता है, इंसुलेशन होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम होता है और वेंटिलेशन सिस्टम होता है। इसमें कोल्ड स्टोरेज में खाद्य सामग्री ठंडा रखने के लिए तापमान और आर्द्रता नियंत्रण के लिए रेफ्रिजरेंट गैस होती है जिनमें खासकर फ्रियॉन या अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। और सामान्यतः अपन देखें कि कोल्ड स्टोरेज का तापमान 0 से 5 डिग्री तक रखा जाता है और आर्द्रता खाद्य सामग्री की 60 से 80% तक

0: खाद्य सामग्री की प्रकृति के अनुसार होती है। हालांकि खाद्य सामग्री को पैक और लेबल करके ही रखें किसान भाई उसमें। अब जहां तक कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते हैं तो उनके पास दस्तावेज जो चाहिए उसमें चयनित भूमि के कागज, मतलब उसका स्वामित्व, बैंक की मंजूरी पत्र और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, यानी DPR जिसको कहते हैं। कोल्ड स्टोरेज के लिए मान्य मैप होना चाहिए उनके पास, और व्यक्तिगत सत्यापन जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो आदि को अपन आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सारे दस्तावेज भी हमारे किसान भाइयों के पास होना चाहिए। ये एक बहुत लाभप्रद कृषि व्यवसाय है, खासकर किसानों का बहुत सारा समय बचता है उसमें, समय मिलता है किसानों को। समय मिलने के कारण किसान अपने उत्पाद का बिक्री कर सकते हैं, और ऐसे समय भी कर सकते हैं जब उनको अच्छे मूल्य पर अपनी खाद्य सामग्री बेचने का अवसर मिले। तो इस तरह से समय का लाभ उनको मिलता है, और साथ ही उनका जो मूल्य है वो बढ़ी हुई दर पे उनको मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर हमको किसानों को अपने उत्पाद को बेचने में सहायता के साथ साथ एक अच्छी दर मिलने से वो किसान लाभप्रद खेती कर सकते हैं, और लाभप्रद खेती के लिए उनको एक अच्छा अवसर मिल पाएगा। धन्यवाद।
1: अभी आपने डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर से जाना लघु कृषकों के लिए कोल्ड स्टोरेज के बारे में। इसी के साथ ही आज की कृषि चर्चा यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए देश के लिए।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
3: मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
5: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
4: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पंच देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्री मोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्र

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक

0: जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रातः के 7:05:27 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जानिए आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज इसके अंतर्गत डॉक्टर ममता वर्मा से अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर की गई चर्चा आप सुनेंगे। साथ ही सुनिएगा भारतीय पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली की अंग्रेजी पत्रिका ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर के विचार। और इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे देश के हित में पेट्रोल और डीजल की बचत किस प्रकार की जाए, इस विषय पर डॉक्टर आशा पाठक से की गई बातचीत। आज का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल प्रस्तुत करेंगी जूही राव। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुगम संगीत के अंतर्गत प्रातः 9:15 पर सुनिएगा प्रकाश पाड़नेकर के गाए भजन। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शब्द सागर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर विजयानंद तिवारी से उनका काव्य पाठ। साथ ही आप सुनेंगे वसंत सकरगाय का काव्य पाठ। जिले की चिट्ठी का समय होगा प्रातः 10:00। प्रातः 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला सुनिएगा प्रातः 10:30 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा पंडित दिनकर कैकिनी का राग देसी में ख्याल गायन। और शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता। विषय है कृषि के साथ वानिकी के लाभ। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब जानिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पूर्वाह्न 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा दिन के 12:00 और दोपहर 2:30। संग्रहालय से के अंतर्गत दिन के 12:30 पर सुनिएगा धारावाहिक जादूगर को सलाम। इसकी

12वीं कड़ी। महिला कार्यक्रम दिन के 1 बजे, लोक संगीत 1:30 पर और सुगम संगीत आप सुन सकेंगे दिन के 1:45 पर। आज के ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की प्रस्तुति हैं। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम युववाणी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे। रात 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में। उर्दू कार्यक्रम कहकशां के तहत समात फरमाइएगा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा। इस कार्यक्रम का वक्त होगा रात 9:30 और रात 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत सुनिएगा पंडित दिनकर कैकिनी का राग देसी में ख्याल गायन। ये थी जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज जुटेंगे फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश में निवेश पर होगा मंथन। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और प्रदेश में योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज से शुरू हो रहा है हर घर योग अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी नागरिकों से राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट और सप्लाई चेन की चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाकर प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह भी किया। इससे पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरक के आयात में कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 4 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से 2 भाजपा और 1-1 सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के होंगे। ये असम में एनडीए की 3री सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री

0: के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं।
0: भोपाल में आज इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक, तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से हर घर योग अभियान शुरू हो रहा है। अभियान में 800 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सभी चिकित्सालयों में पदस्थ योग शिक्षक 10-15 नागरिकों के छोटे समूह में योग अभ्यास करवाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल एक बयान में कहा कि प्रदेशवासियों को योग से जोड़ने के लिए 21 जून तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल के मास्टर ट्रेनर स्टूडियो से 45 मिनट के लाइव योग सेशन आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर घर और जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए मिलकर योग अभ्यास करने और निरोग रहने की अपील की है। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के परीक्षण के लिए 15,598 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। शहरी और नगरी मार्गों के नवनिर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 6,900 करोड़ रुपए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6,116 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बुधनी में MBBS, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 763 करोड़ 40 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नीमच जिले की खुमान सिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इंदौर जिले में फार्मर रजिस्ट्री सिचुएशन अभियान को 20 मई तक पूरा करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य केंद्र शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। फार्मर आईडी के अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमि स्वामी को यूनिक आईडी प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। भोपाल में 15 मई से आयोजित होने जा रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलिया जूनियर टीमें कल भोपाल पहुंची। राजा भोज एयरपोर्ट पर दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 20 मई 2026 तक भोपाल स्थित उद्धव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में आयोजित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव आज। इंदौर के 10,537 अधिवक्ता मताधिकार का करेंगे प्रयोग। सतना जिले के नगर परिषद नागौद के वार्ड 13

में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के पालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। संस्कृति राज्य मंत्री और खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी आज खंडवा दौरे पर रहेंगे। वे जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिवनी जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और संबंधित प्रारंभिक सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के ग्राम डोकरपुरा में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 35 बीघा बहुमूल्य शासकीय गोचर भूमि को मुक्त कराया गया। विदिशा जिले में उर्वरक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 50% की जरूरत वाली पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान ई पोर्टल के माध्यम से अपनी जरूरत का 100% खाद एक बार में उठा सकेंगे। मंडला पुलिस द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नैनपुर में बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। राजगढ़ में आयोजित समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जल गंगा संवर्धन अभियान, ई ऑफिस, आधार निर्माण, ई केवाईसी, सार्थक अटेंडेंस और समय सीमा के प्रकरणों की स्थिति पर विभागवार चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायसेन में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आगरमालवा जिले में 31 मई तक जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों में किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी श्रोताओं का नमस्कार भोपाल में। आज आपके साथ मैं हूं जूही राव। श्रोताओं, आज 12 मई को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में नामित किया है। इसका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर इस बात की जागरूकता बढ़ाई जाए कि पौधों को मनुष्यों की ही भांति स्वास्थ्य, सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता है। इस बार का विषय है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, यानी खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए पादप जैव सुरक्षा। ये तो हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि वातावरण में मौजूद 98% ऑक्सीजन हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है और हमारे भोजन का लगभग 80% भी पौधों से ही प्राप्त होता है। लेकिन प्रतिवर्ष कीटों और बीमारियों के कारण दुनिया भर में फसलों को नुकसान होता है, इससे कृषकों को भी नुकसान होता है। ये हम बात हमारे किसान श्रोता भली भांति समझते होंगे कि कितना जरूरी है पौधों का और फसलों में कीट नियंत्रण होना। वैसे भी श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन से फसलों की पैदावार लगातार घटने का खतरा बढ़ता जा रहा है, साथ ही उनके पौष्टिकता में भी असर हो रहा है। वे कम पौष्टिक रह गई हैं, इसलिए किसी भी संदिग्ध कीटों को या पौधों पर आप फसलों पर देखें तो कीट विज्ञानी या कृषि विशेषज्ञ को सूचित करें और उनसे तत्काल समाधान भी लें। यही बात घर के बगीचे में और भीतर यानी इंडोर प्लांट्स के लिए भी

लागू होती है। आप उन पर ध्यान दें, पत्तियों पर मिट्टी से आपको पौधा ये संकेत दे देता है कि वो बीमार है। उन्हें धूप में रखें या उनकी मिट्टी बदल दें और घर में ही मौजूद चीज़ों से आप पौधों की छोटी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। तो श्रोताओं, इस गर्मी किसी हरे भरे पेड़ के नीचे ठंडी छाँव में रुकें या फिर रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपका मन खुश हो तो प्रकृति को धन्यवाद ज़रूर करें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज कार्यक्रम में आपके लिए है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर जानकारी, और साथ ही आपको मिलवाएंगे अन्य मेहमानों से भी। जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं आज के समाचार पत्रों से कुछ मुख्य समाचार और उपयोगी खबरें।

तीन करोड़ में केमिकल से धुलेगा यूनियन कार्बाइड का परिसर, जमीन भी होगी जहर मुक्त। मास्टर प्लान तैयार, 41 साल पुराने गैस त्रासदी के घाव धोने और परिसर को भविष्य के लिए

सुरक्षित बनाने की कवायद शुरू। यहां पर हिरोशिमा नागासाकी की तर्ज पर बनेगा स्मारक। अब कुछ आयोजनों के बारे में आपको बता दें श्रोताओं, जो कि आज और आगामी दिनों में होने जा रहे हैं शहर में। अग्निगर्भ में जलती पंखुड़ियां पर चर्चा, ये आयोजन 12 मई को दुष्यंत संग्रहालय में होने जा रहा है आज शाम 5 बजे से। इसमें वीणा सिन्हा की कविता पर चर्चा होगी। साथ ही 15 मई से एक्टिंग और कंटेम्प्रेरी वर्कशॉप का आयोजन होगा मायाराम सृजन भवन में। एक शाम माता पिता के नाम 17 मई को रविंद्र भवन में आयोजित की जाएगी। और भोपाल में सजेगा रंगमंच का उत्सव। हम थिएटर ग्रुप भोपाल द्वारा स्मरण हबीब के अंतर्गत 22वें रंग आलाप नाट्य समारोह का आयोजन 8 से 12 जून तक रोजाना शाम 7 बजे से रविंद्र भवन में किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी कुछ जानकारियां आज के समाचार पत्रों से। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस। इस अवसर पर हम आपको मिलाएंगे एम्स भोपाल की नर्सिंग प्रिंसिपल से बस कुछ ही पलों में।

0: आज हमारे साथ में है डॉक्टर ममता वर्मा, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज एम्स भोपाल। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने सन 2026 के अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर आकाशवाणी की तरफ से इस प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये बहुत हर्ष का विषय है कि एम्स भोपाल में भी हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाते हैं। एम्स भोपाल में जो नर्सिंग कर्मियों की संख्या है, स्टूडेंट और अस्पताल में नर्सेस को मिलाकर 2000 के ऊपर चली जाती है। तो इतनी संख्या में नर्सिंग कर्मी, नर्सिंग छात्राएं और नर्सिंग फैकल्टी यहाँ पर हैं, तो हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय होता है। वैसे भी नर्सिंग के संस्थापक की जयंती पर उन्हें याद करना हमारा कर्तव्य है। तो एम्स भोपाल में इंटरनेशनल नर्सेस डे हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। इस बार के जो इवेंट्स हैं वो 10 मई से ही शुरू हो गए हैं। 10 मई को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की गई थी। मैं बताना चाहूंगी कि इसी दिन हमारे यहाँ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। 11 मई को एक पैनल डिस्कशन थी में हैंड हाइजीन द फर्स्ट स्टेप टू पेशेंट सेफ्टी, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपने व्यूज देंगे। 12 मई को क्विज कंपटीशन है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीतने वाले जितने भी लोग होंगे उनको प्राइज भी दिया जाएगा। 12 मई शाम को क्लोजिंग सेरेमनी है और कल्चरल प्रोग्राम है। हर साल इसकी एक थीम अनाउंस की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद होती है जो कि करीब 140 नर्सेस एसोसिएशन का एक समूह है, एक संघ है। इसमें करीब 3 करोड़ नर्सेस इन्वॉल्व है। यह संस्था काफी समय से नर्सिंग के लिए कार्यरत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सन 1879 में इसका निर्माण हुआ था और ICN ही हर साल नर्सेस डे पे क्या थीम होगी इसकी अनाउंसमेंट करती है। इस बार की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सेस जीवन रक्षक हैं। इस वार्तालाप को सुनने के बाद में अगर आप किसी भी क्वालिफाइड नर्स के संपर्क में आते हैं तो आप सोचिए कि वो किस तरीके से हमारा भविष्य हो सकती हैं, कैसे सशक्त हो सकती हैं। इस बार की ICN ने जो थीम दी है उसमें उन्होंने बोला है कि एक नर्स के पास में 7 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। विश्वास की शक्ति, पेशे की शक्ति, संख्या की शक्ति, उनकी प्रैक्टिस की शक्ति, प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता की शक्ति, देखभाल की शक्ति और शांति की शक्ति।
0: जी जी, बहुत बढ़िया थीम है मैम, क्योंकि नर्सेज के बदौलत ही जो मेडिकल फील्ड है उसमें बहुत सारे कार्य हैं जो कि नर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जो मरीज़ हैं वो पूरी तरह कई बार नर्सेज के देखभाल के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से शुरू हुआ ये सेवा भाव का जो सफ़र है वो आज के समय में कितना बदल गया है, ये सब आप हमारे सभी सुनने वालों को बताएं।
1: आपको पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी थी और इस प्रोफेशन को शुरुआत किया था। उन्होंने ये प्रोफेशन शुरू किया था।

0: युद्ध में घायल सैनिकों की देखभाल के लिए, लेकिन उसी समय से ये बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगल ने ही स्टैटिस्टिक्स के जो पाई डायग्राम्स होते हैं और जो स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च होते हैं, उन सैनिकों की देखभाल करते हुए उन्होंने कुछ आधारभूत रिसर्च की और कुछ स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज लगा करके ये बताया कि सैनिकों को ठीक करने के लिए शुद्ध हवा, स्वच्छता, शुद्ध पानी और साफ सफाई की कितनी आवश्यकता होती है। उसी लेगेसी को आगे ले जाते हुए आज जो आधुनिक नर्सिंग है वो बहुत परिवर्तित हो चुकी है। आजकल जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं वो सारे एविडेंस बेस्ड होते हैं। नर्सिंग में कोर नर्सिंग सब्जेक्ट के अलावा जो एलाइड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, जो सोसाइटल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी, ये भी पढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ में रिसर्च भी एक सब्जेक्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट होता है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रोजेक्ट भी करवाए जाते हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि इनको सर्वांगीण शिक्षा दी जाए और ये जब मरीज की जाकर के सेवा करें तो एक आधुनिक तरीके से, जिसमें केयर, कंपेशन, कॉम्पिटेंसी तीनों का समन्वय है। ये सिर्फ ट्रेनिंग की बात है, लेकिन चूंकि हम सब एडवांस हो गए हैं और इसी प्रकार से नर्सिंग प्रोफेशन भी एडवांस हो गया है, तो जो कार्यकारिणी नर्सेज होते हैं जो अस्पताल में काम करते हैं, या जो नर्सिंग फैकल्टी होते हैं जो कॉलेज में काम करते हैं, एम्स जैसी संस्थाएं, काम करने वाले नर्सेज जो कि मरीजों के डायरेक्ट केयर करती हैं, या ऐसी नर्सिंग फैकल्टी जो स्टूडेंट्स को तैयार करती हैं, उनको भी काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं कि वो इन सर्विस एजुकेशन करें, अपनी अपस्किलिंग करें और अपने अपने व्यवहार में एक प्रकार से केयर वाला कंपोनेंट इन्वॉल्व करें। सो कई प्रकार की स्कीम्स चल रही हैं, हमारे यहाँ कई प्रकार की अपस्किलिंग होती है और कई प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट केयर कर पाएँ और अपने आप को मानवता की सेवा में समर्पित कर पाएँ।
1: मैम, आप नर्सिंग के फील्ड में और जो शिक्षण है उसके फील्ड में काफ़ी समय से हैं, युवाओं में आप नर्सिंग के प्रति किस प्रकार का इंटरेस्ट देख रहे हैं?
0: ये आपने बहुत ही एप्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि सटीक सवाल पूछा है। आप जानते हैं कि आजकल जेन जी का ज़माना है और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो काफ़ी युवा होते हैं, और युवा होने के साथ साथ में उनमें उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है सीखने की, आगे बढ़ने की। एम्स में मूलतः काफ़ी अच्छे परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करके आते हैं, जिनमें एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों होता है, सीखने का, आगे बढ़ने का और अपने आप को विकसित करने का। तो देखा जाए तो अभी नर्सिंग के प्रति युवा की बहुत अच्छी लगन हो गई है और नर्सिंग को वो करना चाहते हैं, न सिर्फ इसको एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं बल्कि एक जीवन के मिशन की तरह भी लेते हैं। तो अभी जो युवा है वो नर्सिंग के प्रति काफ़ी उनका रुझान है और समर्पण भी है और डेडिकेशन भी है। हमारे देश में इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर की उतनी ज़्यादा प्रचलन नहीं है, फिर भी शुरुआत हुई है, लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि हम ये सोचते हैं कि हमने मान लीजिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लिया तो हम हमेशा ही नर्सिंग ऑफिसर बन के रह जाएंगे, लेकिन नर्सिंग में प्रमोशन के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, अवसर रहते हैं। तो आप अस्पताल में एक नर्सिंग कर्मी की तरह काम कर सकते हैं, एम्स जैसी संस्थाओं में या केंद्रीय सरकार की संस्थाओं में या राज्य सरकार की संस्थाओं में भी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिससे आपका कैडर बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ता है, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है।
1: नर्सिंग के फील्ड में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
0: हाँ जी, ज़रूर, मैं आपको बताऊंगी। तो हम एम्स भोपाल से ही शुरू करते हैं। एम्स भोपाल में नर्सिंग की छात्राओं के लिए यूजी, मतलब बीएससी नर्सिंग की छात्रा और पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए एक इंट्रामुरल रिसर्च ग्रांट की प्रोविज़न है। इसके अलावा यहाँ पर जो जिनको मेरिट आती है उन बच्चों के लिए गोल्ड मेडल की का प्रोविज़न है। हमारे यहाँ की छात्राओं ने अलग अलग रिसर्च फोरम में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा करके अपने रिसर्च पेपर को प्रस्तुत किया और उन्होंने वहाँ पर जाकर के कई खिताब जीते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे सर्विस साइट के जितने भी नर्सिंग कर्मी होते हैं उनके लिए भी अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, तो उसमें भी उनका सम्मान किया जाता है। और इन सारी उपलब्धियों से जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं या जो नर्सिंग कर्मी होते हैं उनका जो आत्मबल होता है वो बहुत आगे बढ़ता है। भारत सरकार ने भी नर्सिंग के आत्मबल को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड चुनिंदा सेलेक्टेड नर्सेस को हर साल दिया जाता है, जो 12 मई को

0: प्रदान किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि तो जब आप एक नर्स को देखें तो उसकी छवि के रूप में आपको न सिर्फ सफ़ेद यूनिफॉर्म न याद आए, ये छिपी हुई या दिखती हुई शक्तियाँ भी याद आएँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर आज हमारे साथ में थी डॉक्टर ममता वर्मा। आप जब भी किसी नर्स को मिलें, उन्हें देखें, तो उनके सेवा भाव को ज़रूर सम्मान करें।

0: मेरा नाम है वसीम खान और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
1: मेरा नाम है नगीन तनवीर और आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
2: मैं प्रहलाद सिंह टिपानिया।
3: नमस्कार भोपाल के श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्या खरे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, केंद्रीय मंत्रालय खुद भी कम करेंगे पेट्रोल और डीजल की खपत, इस खबर को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पश्चिमी एशिया के हालात पर चिंता व्यक्त की थी और उन्हें बड़ा संकट बताया था। साथ ही ये भी कहा कि कोविड की तरह हम इससे भी उभरेंगे। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा, देशवासियों से आह्वान किया कि पेट्रोल और डीजल की बचत पर जोर दिया जाए। तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम जानते हैं कि देश

0: में पेट्रोल और डीजल की बचत कैसे करें।
1: श्रोताओं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि वे फ्यूल की बचत करें, विशेषकर पेट्रोल और डीजल की। तो ये कैसे किया जाना चाहिए, सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ और कंसल्टेंट डॉक्टर आशा पाठक। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद जूही। मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को फिर से रीस्टार्ट किया है, ये बोलना चाहती हूँ मैं, क्योंकि आज की जरूरत जो चाहे वो विकास के लिए है, चाहे एक प्रकार से बोल दीजिए जीवन यापन के लिए है, ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। और ऊर्जा संसाधनों का जिस तरह से लगातार क्षरण हो रहा है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक संपदा हैं और इनको हम बना नहीं सकते, पेट्रोल और डीजल को, इस पर हम इसी तरह से आश्रित हैं कि वो हम दूसरे देशों से लेते हैं। स्थिति आज ऐसी है, तो उसमें हमें देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा शायद ये भी एक योगदान होगा कि हम पेट्रोल और डीजल और जो LPG है या दूसरी तरह के ईंधन जो हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उनको हम बचाएं और इस्तेमाल का सही तरीका जानें और सीखें, मतलब गुड हैबिट्स जो हैं उनको हम अडॉप्ट करें।
1: जानना चाहेंगे कि सही तरीका क्या है पेट्रोल और डीजल को बचाने का।
2: महत्वपूर्ण रूप से हम ड्राइविंग पे ही बात कर सकते हैं, 4-व्हीलर्स हैं चाहे 2-व्हीलर्स हैं, ट्रक्स हैं, तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा ईंधन अगर आप सोचें तो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल के रूप में है चाहे डीजल के रूप में है। सर्वप्रथम तो 45 से 55 की स्पीड बेस्ट मानी जाती है, जिसके अंदर आपका पेट्रोल सबसे सही सही जलता है चाहे डीजल हो। क्या होता है जब आप बहुत तेज स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं तो एक तो आपका ईंधन ज़्यादा जलेगा, आगे जाके आप कहीं ट्रैफिक लाइट पर फिर खड़े हो गए तो कोई समय भी नहीं बच रहा और आप कहीं ना कहीं असुरक्षित भी हैं। और दूसरी तरफ जब आप बहुत तेज स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं तो बार बार ब्रेक दबाते हैं, तो उस समय जो बहुत ज़्यादा पेट्रोल खर्च करके जो तापमान बना था जिसके ऊपर गाड़ी सही कंबशन करती है, पेट्रोल डीजल चलते हैं, तो वो टेम्परेचर जो एकदम डाउन चला जाता है, फिर से उसे उसी तापमान में आना है तो फिर वो एक्स्ट्रा पेट्रोल जलाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑयल डालते हैं, है ना, इंजन ऑयल होता है, तो उसको सही समय पर बदलवाना भी ज़रूरी है। 2T40 जो एक उसका स्पेसिफिकेशन है, तो वही ऑयल हमको डालना चाहिए, ब्रांडेड ऑयल डालना चाहिए। ऑयल जो है वो एक तो आपके जो डस्ट जो उसके अंदर आती है उसकी लगातार सफाई करता है, एक घर्षण जो है उसको कम करता है, तो तापमान को भी नियंत्रित करता है। लाइक अभी देखिए आप, इतनी गर्मी पड़ रही है और बहुत तेज स्पीड में आप जा रहे हैं और ऑयल भी आपका सही नहीं है या ख़राब है तो आग लगने का डर भी रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसको अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है तो सही गियर में चलाएं, मतलब आप जल्दी से जल्दी टॉप गियर में आने की कोशिश करें, टॉप गियर में सबसे कम पेट्रोल जलता है। रिवर्स गियर, आप कहीं पे गाड़ी को पार्क कर रहे हैं तो रिवर्स गियर लगा के पार्क करिए। सुबह के समय आप निकाल रहे हैं तो ठंडी गाड़ी है तो आप उसमें फर्स्ट गियर लगा के बाहर निकालिए तो आपका पेट्रोल बचेगा, और रिवर्स करके आप कहीं पार्किंग करते हैं तो सुविधा भी बढ़ जाती है। तो ये तरीका होता है। उसके अलावा जो क्लच का उपयोग जो है, जो मैनुअल गाड़ियों के अंदर अगर 4-व्हीलर चला रहे हैं तो क्लच प्लेट के ऊपर पैर रख के गाड़ी ना चलाएं, एक तो क्लच प्लेट्स आपकी जल्दी ख़राब होंगी और दूसरा जो है आपका पेट्रोल और डीजल भी ज़्यादा जलता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर जो आपके व्हील्स हैं, जो टायर हैं, उनके अंदर एयर प्रेशर ठीक होना चाहिए। आजकल तो बहुत अच्छा नाइट्रोजन आपके पास ऑप्शन है, तो नाइट्रोजन जो है उसको अगर आप भरवाते हैं तो वो एक प्रकार से आपको पता है कि बहुत ठंडक देता है वो, तो एक तो एक्सीडेंट का भी खतरा जो है वो कम रहता है उसके अंदर, और नाइट्रोजन जो है बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नहीं तो जब अगर टायर में हवा कम है तो आपका पेट्रोल डीजल ज़्यादा खर्च होता है। आपकी गाड़ी कितने लोगों के लिए बनी है, अगर आप 2-व्हीलर चला रहे हैं उसके अंदर 4 जने बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपका बहुत ज़्यादा पेट्रोल खर्च हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट डाल रहे हैं आप उसके अंदर। तो आप जो है इसी तरह से 4-व्हीलर के अंदर ऊपर सामान मत रखिए, गाड़ी के अंदर रखिए, गाड़ी की सही समय पे आप जो है उसकी सर्विसिंग कराइए, एयर फिल्टर्स बहुत ज़्यादा साफ होने चाहिए, और आपको कहीं पे जाना है कार पूलिंग करिए, इवन 2 जने हैं स्कूटर है तो एक जने एक दिन स्कूटर ले जा रहा है, इस तरह से करिए, तो ये बहुत बड़ी बचत हो सकती है। इसके अलावा आप छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए गाड़ियों का उपयोग क्यों कर रहे हैं, एक रूट प्लान करिए, एक ही बार में पूरा सामान लेके आइए। हम लोग घूमते भी बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए भी एक प्लानिंग करिए कि हफ्ते में एक बार हम लोग घूमने के लिए जाएंगे और उस रूट पे जाएंगे और वहाँ पे अच्छे से इंजॉय करेंगे हम।

0: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो बहुत अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि इकोनॉमिक ऑलरेडी हैं वो, तो उस तरह की गाड़ियों का आप उपयोग करते हैं, ईवीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ईवीज़ को जो आपके हैं उनका किस तरह से चार्जिंग करना है, कैसे रखना है, वो भी हमें पूरा एक प्रशिक्षण लेके और फिर गाड़ी चलाना चाहिए हमको। घर के अंदर भी हमारे एलपीजी है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम इसका कैसे उपयोग करें।
1: एलपीजी अगर हम कम इस्तेमाल करें, कोई दूसरी एनर्जी यूज़ करें, तो वो कौन सी चीज़ हो सकती
0: जी
1: है?
0: हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक तो देखिए, सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बचत होती है, कार्बन एमिशन जीरो है यहाँ पे, और कुछ सालों में जितना आपने पैसा खर्च किया वो वापस भी मिल जाता है आपको। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आज जो है हमारे भोपाल में भी पीएनजी जो पाइपलाइन नेचुरल गैस जो है, तो जहाँ जहाँ पर ये अवेलेबल है वहाँ पे सभी को ये ले लेना चाहिए और किचन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो मेट्रो इतना हम सुविधा मिली हुई है तो हम शीघ्र भी पहुँच जाते हैं, और दूसरी तरफ पेट्रोल और इसकी भी बचत होती है, तो इनका उपयोग करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सिस्टम आजकल बहुत अच्छा हो गया है, जो स्कूल बसेस हैं उनका इस्तेमाल करें। आप अपनी पर्सनल गाड़ियों से क्यों बच्चों को छोड़ रहे हैं?
1: मैम, अगर स्कूल पास में रहेगा और बच्चे साइकिल से जाएं तो वो भी अच्छा
0: बिल्कुल
1: रहेगा।
0: बिल्कुल, साइकिल तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कई देशों में तो ऐसा है, आप दूर के स्कूलों में डाल ही नहीं सकते बच्चों को, नेबरहुड स्कूल्स में ही डाल सकते हैं, तो लोग ही अपने बच्चों को छोड़ते हैं वहाँ पैदल जाके। तो इस तरह के कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं जो हैं, तो वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ये जो है ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं, ना केवल देश के लिए बल्कि अपने भविष्य के लिए भी, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
1: बहुत महत्वपूर्ण बातें और बहुत अच्छे टिप्स दिए हमारे सभी सुनने वालों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए।
0: धन्यवाद जूही, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं। नमस्कार।
2: यहाँ कल क्या हो?
1: श्रोताओं, अभी हमारे साथ में थी एक्सपर्ट डॉक्टर आशा पाठक। हम आशा करते हैं कि आपने ये बातें ध्यान में सुनी होंगी और आप इन टिप्स को बिल्कुल अमल में लाएंगे।

0: हमने जाने।
1: मेरा नाम प्रफुल्ल केतकर है, दिल्ली से एक अंग्रेजी की सबसे पुरानी राष्ट्रीय विचारों की पत्रिका निकलती है, ऑर्गेनाइजर उसका संपादक हूँ। तो उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और जुगल किशोर शुक्ल जी ने उसका एक नींव रखी। तो वो पत्रकारिता का ऐसा दौर था जब अंग्रेज केवल उनके गैजेटियर्स छापते थे और भारत की पत्रकारिता, ये अंग्रेजी पत्रकारिता, अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई पत्रकारिता वही पत्रकारिता थी। ऐसे में भारत के भाषा में, भारत के धार्मिक अनुष्ठान के आधार पर, भारत का स्वदेशी का विचार रखते हुए इस पत्रकारिता को शुरू किया गया। और इसलिए ये पत्रकारिता महत्वपूर्ण है उदंत मार्तंड का, क्योंकि आर्थिक संसाधन नहीं थे, समाज के भरोसे ये पत्रकारिता थी, उस समय वितरण की व्यवस्था नहीं थी, और ऐसे में केवल देश के लिए, राष्ट्र के लिए पत्रकारिता करना, इस भाव को रखते हुए जुगल किशोर जी ने इसको शुरू किया। और पहले ही इसमें भारत के आर्थिक शोषण अंग्रेज कैसे कर रहे हैं इसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम देखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी लोग शामिल हुए, उन्होंने किसी न किसी रूप में पत्रकारिता की, चाहे आप गांधी जी ले लो, सुभाष चंद्र बोस ले लो, लोकमान्य तिलक ले लो, बाबा साहब अम्बेडकर ले लो, हर किसी ने, लेकिन उसका नींव जो थी वो उदंत मार्तंड थी। और वो नारद जयंती के दिन उन्होंने शुरू किया कि नारद हमारे आदर्श है, भारत की जो संवाद शैली है उसके आदर्श है। तो पत्रकारिता जो है वो धर्म की स्थापना के लिए होनी चाहिए, पत्रकारिता टेबल जर्नलिज्म नहीं होना चाहिए, घूम घूम कर होना चाहिए, तीनों लोकों में होना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं होना चाहिए, दो जगह पे वेरीफाई होनी चाहिए। ये जो मूल नारद जी के आदर्शों के स्तंभ थे उसके आधार पर उन्होंने वो शुरू किया, इसलिए इसका एक बड़ा महत्व है। आज माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय 200 वर्ष उसके मना रहा है, उस बहाने कम से कम आज की पीढ़ी को, विद्यार्थियों को, उस 200 वर्ष की पूर्व जो एक नींव रखी गई थी उसका परिचय हो रहा है, उस राष्ट्रीय विचारों की पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है ये समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, इस आयोजन में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा और अपेक्षा करता हूँ कि इसके कारण आने वाले पीढ़ी को नई तकनीक, नए तंत्र सारा अपनाते हुए भी राष्ट्रीय विचारों के आधार पर पत्रकारिता करने की प्रेरणा मिलेगी।
0: श्रोताओं, अभी आपने जाने विचार श्री प्रफुल्ल केतकर जी के, जो कि बता रहे थे 200 वर्षों की भारतीय पत्रकारिता के बारे में।

मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, भारतीय पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हाल ही में एक समारोह आयोजित किया गया, प्रणाम उदंत मार्तंड। यहाँ पर अंग्रेजी पत्रिका ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर के विचार

श्रोताओं, समाचार पत्रों से कुछ और जानकारियां आपके लिए। राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव आज, जिला कोर्ट में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव 25 जून को। और बाल विवाह रोकने के लिए अब ग्राम स्तर तक होंगे प्रयास।

0: श्रोताओं, सुखविंदर सिंह के गाए इस गीत के साथ में आज का नमस्कार भोपाल होता है समाप्त। आगे दीजिए जूही राव को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
2: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500

0: हजार से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक

0: जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है।

0: बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
3: Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headline.
4: Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis.
3: Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
5: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
3: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
5: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
3: Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from BJP and one each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
6: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro, and Ajanta Niyog. This swearing

0: Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF, to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हुए हैं। समय है कार्यक्रम सुरमई सवेरा का, जिसे लेकर आ गई हूं मैं आकांक्षा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग श्रोताओं। नया सवेरा यानी दिन की नई शुरुआत एक कोरे पन्ने की तरह होती है, जिसे हम अपनी मेहनत और उम्मीदों से भर सकते हैं। सुबह की ताजगी हमें याद दिलाती है कि गुजरा हुआ कल चाहे कैसा भी था, आज एक नया अवसर है और इस नए सवेरे की शुरुआत हमें आत्मविश्वास और मुस्कुराकर करनी है और भूल भुलैया वाली हर सिचुएशन को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है।

श्रोताओं, भूल भुलैया वाली किसी सिचुएशन से तो हमें हमारी सोच, हमारे सही फैसले बाहर निकाल सकते हैं, पर हमसे अगर कोई भूल, गलती या कसूर हो जाए तो उसका क्या? और ऐसा होना आम बात है, क्योंकि हमसे जाने अनजाने ही सही अगर कुछ नियम टूट जाते हैं तो वो गलती कभी कभी हमें भारी भी पड़ती है। जो हमें अपराध बोध महसूस कराती है, कई बार हमें अपनों के बीच ही अविश्वसनीयता का सामना करना पड़ता है, मतलब भरोसे की कमी हो जाती है और कई बार तो रिश्तों में दरार भी पड़ जाती है। ये हमारी भूल, हमारी गलती के नकारात्मक पहलू हैं। पर आप जानते हैं, गलतियों के फायदे भी हैं। आप कहेंगे गलती के फायदे, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर है, बताऊंगी मैं। उसे जानने के लिए सुनते रहिए कार्यक्रम सुरमई सवेरा आकांक्षा के साथ।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया,

0: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
0: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा, जिसमें हम बातें कर रहे थे गलतियों की। हालांकि गलतियां करना अच्छी बात नहीं है, मगर मानवीय विकास के नज़रिए से अगर हम देखें तो इससे कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये गलतियां हमें सीखने का अवसर देती हैं, ताकि हमसे भविष्य में कोई बड़ी गलती ना हो सके। और सबसे बड़ी बात कि जब तक हमें अपनी गलती, अपनी भूल का एहसास नहीं होगा, तब तक हमारा बेहतर कुछ नहीं होगा। हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश भला कैसे करेंगे जब तक हमसे कोई गलती ना हो। इसलिए ये गलतियां हमें सुधार का मौका देती हैं। माना कि मेरा कसूर है, पर क्या इंसान वही जिसमें ना कोई फितूर है। गलतियां तो बस एक आईना है जो बताता है कि सफर अभी कोसों दूर है।

0: अगर ना होता कोई कसूर तो मैं सीखता कैसे, ठोकर ना लगती तो खुद को संभालता कैसे, हार ने सिखाया कि जीत की कीमत क्या है, भूल ने बताया कि सही राह की नीमत क्या है। जी हाँ श्रोताओं, जीवन में किए गए छोटे मोटे कसूर, गलती और उनसे मिलने वाली सीख हमें मानसिक रूप से परिपक्व बनाती है, जो हमारे अनुभव में वृद्धि करती है और आगे बढ़ने का एक नया अवसर देती है।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओ।

0: लोगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, गलती या कसूर की गहराई को समझाता एक प्रसिद्ध शेर भी है, बेगुनाह कोई नहीं, सबके अपने राज होते हैं, किसी का कसूर दिख जाता है तो किसी का छिप जाता है। मगर ये याद रखिए कि ये गलतियां हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती हैं। कसूर मेरा मुझे अब पत्थर नहीं बनाता, बल्कि आईने की तरह साफ होना सिखाता है। दोष को मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है, यही जिंदगी को जीने की सच्ची रीत है।
5: ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे,

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा, ये जारी रहेगा कुछ ही पलों बाद। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेशे इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नागरिकों से प्रधानमंत्री के 7 सुझावों को अपनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इसके अलावा श्री मोदी ने किसानों से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप का उपयोग करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर भी जोर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा आज दूसरी बार

और असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ चार मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के होंगे। भोपाल के कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आज इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कल प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण के लिए 29,500

0: विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कल प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है। और आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली ने पंजाब को 3 विकेट से हराया। आज शाम गुजरात और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आपका एक बार फिर स्वागत है।

श्रोताओं, ये हवाएं हमें ले जाती हैं हंसी वादियों में, सुकून की तलाश जहां हमारी पूरी होती है। और ये सब हमारे पेड़ पौधे, हमारी प्रकृति के कारण ही संभव है। इसीलिए हर साल 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। जी हाँ, ये दिन हमारे जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए पौधों के महत्व को समझाने और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए जागरूकता फैलाने को समर्पित है। पौधों का स्वास्थ्य ही हमारा स्वास्थ्य है। यदि पौधे सुरक्षित रहेंगे तभी भविष्य में भोजन और शुद्ध हवा भी उपलब्ध हो पाएगी हमें।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, मन के सुकून की तलाश को वादियां पूरा करती हैं, मगर हमारा तन हमारा साथ नहीं देता और हम बीमारियों से जूझने लगते हैं। तब हमारा ध्यान रखती हैं, हमें संभालती हैं, हमें ठीक होने में मदद करती हैं नर्स। जी हाँ, एक नर्स अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और स्वास्थ्य सेवा में अपना जीवन बिताती हैं। आज का दिन उनके निस्वार्थ योगदान और समर्पण को समर्पित है। आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। आप सभी को हम सम्मान के साथ नमन करते हैं।

जीवन की सार्थकता को बताता हुआ ये खूबसूरत गीत, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुरमई सवेरा यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रकाश पाड़नेकर के गाए भजन।

सूरदास रचित इस भजन के बाद लीजिए अब सुनिए प्रकाश पाड़नेकर के स्वर में रामवल्लभ आचार्य का लिखा ये भजन।

0: प्रकाश पाड़नेकर के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। आज इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ।
1: मेरी कविता का शीर्षक है कविता। जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, भू पर अधर्म की अति होती तब राम अवतरण लेते हैं, भू पर अधर्म की अति होती तब राम अवतरण लेते हैं, सीताएं तब जन्मा करती जब पाप घड़ों में भरते हैं, जब पाप घड़ों में भरते हैं, जब पर्ण कुटियों की सीताएं, जब पर्ण कुटियों की सीताएं सोने का लालच करती, तब तब रावण आ जाता है सीताएं तभी हरी जाती फिर रावण राम युद्ध होता, राम कथा बन जाती है, फिर रावण राम युद्ध होता, राम कथा बन जाती है, पर क्रोच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है, पर क्रोच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है। रामायण और महाभारत साकेत और उर्वशी कथा यामा और हल्दी घाटी नई कविता की नई छटा करुणा की आहें आँखों में आँखों से अश्रु बरसता हो, करुणा की आहें आँखों में आँखों से अश्रु बरसता हो, जन्मा करती तब ही कविता जब शिवा समर में लड़ता हो शब्दों की धार लिए नदियां जब सागर में मिल जाती हैं तब महाकाव्य बन जाते हैं कविताएं रास रचाती हैं कविता ही सीमाओं पर जब सैनिक मन में लहराती है पाकिस्तानी आतंकी जन को गोली से मार गिराती है कविता की अपनी अकथ कथा इधर उधर कविता करुणा से क्रोध जन्म लेता, ढलता चंदा सविता सविता ऐसे जन्मा करती कविता कविता ही बन जाती कविता कविता सरिता कविता से जोश उमड़ता है, भर जाता बाहु बाहु में बल, कविता में जोश उमड़ता जब भर जाता बाहु बाहु में बल, भारत माता की रक्षा हित तन का लोहू करता कलकल, भारत माता की रक्षा

साहित तन कालोहु करता कल कल मकरंद बना करती कविता, मकरंद बना करती कविता जय हिंद बना करती निर्भय, जय हिंद बना करती निर्भय वंदे मातरम हुआ करती, वंदे मातरम हुआ करती कविता भारत माता की जय, कविता भारत माता की जय। मेरी अगली कविता का शीर्षक है उठो जागो। उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, पुराणों में समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए, पुराणों में समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए, कथाओं ने रचे रिश्ते बहुत से धर्म बतलाए, कथाओं ने रचे रिश्ते बहुत से धर्म बतलाए, उन्हीं कर्मों उन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली, उन्हीं कर्मों उन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली, भिखारी बन गया राजा जनों ने राज्य श्री पाली, भिखारी बन गए राजा जनों ने राज्य श्री पाली, नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की महिमा, नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की महिमा, महाभारत रचा जिसने वहाँ थी कर्म की महिमा, महाभारत रचा जिसने वहाँ थी कर्म की महिमा, कथानायक भले हों कृष्ण खलनायक बहुत से थे, कथानायक भले हों कृष्ण खलनायक बहुत से थे, कोई कम तो नहीं था पर धनुषायक बहुत से थे, कोई कम तो नहीं था पर धनुषायक बहुत से थे, समय ही है सभी को कर्म का प्रतिफल दिखाता है, समय ही है सभी को कर्म का प्रतिफल दिखाता है, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा, समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा, कई युद्धों में जन को क्रांति भी करते हुए देखा, बहा जब पाप का दरिया तभी जागृति यहाँ आई, हिलोरें ले रही जन में वहाँ थी क्रांति ही छाई, हिलोरें ले रही जन में वहाँ थी क्रांति ही थाई, उठे हुंकारते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली, उठे हुंकारते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली, गिरे और मर गए फिर भी, गिरे और मर गए फिर भी विजय श्री प्राप्त कर डाली, विजय श्री प्राप्त कर डाली, दुर्गावती लक्ष्मी सदिश कुछ वीर बालाएं, समय ने दृढ़ अजयों को वहां गिरते हुए देखा, समय ने दृढ़ अजयों को वहां गिरते हुए देखा, परम सामान्य जन को शीर्ष पर चढ़ते हुए देखा, सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला, सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला, कई के कर्म तो बदले कई का धर्म भी बदला, गुलामी में कई देशों ने सदियां तक गुजारी है, गुलामी में कई देशों ने सदियां तक गुजारी है, कई पीढ़ी रही मरती बढ़ी वह पर नहारी है, बढ़ी वह पर नहारी है, चलें कर्तव्य पथ पर तो बहुत राहें भी मिल जाएं, चलें कर्तव्य पथ पर तो बहुत राहें भी मिल जाएं, करें हम धर्म पालन तो बहुत बाहें भी मिल जाएं,
करें हम धर्म पालन तो बहुत बाहें भी मिल जाएं। समूची मेदनी अपनी, समूचा गगन हो अपना। समूची मेदनी अपनी, समूचा गगन हो अपना। जगत परिवार।

0: हो अपना, हमारा सत्य हो सपना, जगत परिवार हो अपना, हमारा सत्य हो सपना, जहाँ समता की सरिता अनवरत निर्द्वंद बहती हो, जहाँ समता की सरिता अनवरत निर्द्वंद बहती हो, बिना कुछ भेद के हर जीव जन में शांति रहती हो, बिना कुछ भेद के हर जीव जन में शांति रहती हो, परम कर आत्मबल हम बेगवत तूफान बन जाएं, परख कर आत्मबल हम बेगवत तूफान बन जाएं, तिमिर को बेध कर हम मनुज से भगवान बन जाएं, अधेरा चीर कर हम मनुज से भगवान बन जाएं, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शब्द सागर। कार्यक्रम शब्द सागर में लीजिए अब सुनिए वसंत सकरगाय का काव्य पाठ।
2: नमस्कार। कविता का शीर्षक है धरती का आंचल है जल। धरती का आंचल है जल और प्यास इतनी आदिम कि बुझती नहीं। धरती ने मेघों से गुहार लगाई, गुहार लगाई पहाड़ों से मैदानों से, गुहार लगाई कि खोलो नदियों के कल्ले सोते, झीलों की झिर्री खोलो, खोलो कि प्यासा न रहे जीवन, धरती पर पसरा रहे जल कि जैसे फैला हो माँ का आंचल, धरती का आंचल है जल। अगली कविता का शीर्षक है आज मैंने देखा एक सूखा नलकूप। आज मैंने देखा एक सूखा नलकूप, आज ही देखी पालक मुरझाई हुई, और देखा एक केला रखा रखा पिचक गया था। आज ही मैंने देखी पालक मुरझाई हुई और देखा एक केला रखा रखा पिचक गया था, देखा कि भीतर पानी न हो और छुअन न हो पानीदार, जंग खा ही जाता है भीतर चाहे जितना हो लोहा। अगली कविता का शीर्षक है जरूरी है पहिया होना। बहुत जरूरी होता है गतिमान होना, पहिया हो जाना। बहुत ज़रूरी होता है गतिमान होना, पहिया हो जाना, कमीज से टूटा बटन पहिया बन, भाग नहीं पाता है इधर उधर, धर दबोच टांग दिया जाता है पुनः मजबूत, फिर पिट पिट कर खुद के टूट कर बिखर जाने पर कमीज के फटते दम तक, हिसाब किताब की सनक में, हिसाब किताब की सनक में क्षण क्षण खन खन खनकते सिक्के, वितरागी हो जाते हैं कुछ अचानक, आदमी के हाथों छिटक कर पहिया बन मुक्ति की राह पर अग्रसर, डूब जाते हैं गहरी नाली किसी सिवेज में, ओझल हो जाते हैं गहरे किसी दर्रे दरार, आदमी की उघाड़ और हिसाब किताब की खनकती सांस संभाल के कई किस्से कहानियाँ अक्सर मैं सुनता हूँ, भागता हूँ पीछे पीछे पहिया बन भागते हुए बटन और सिक्कों से। अगली कविता का शीर्षक है पिता से सुंदर। वह अपने पिता से कहीं ज़्यादा सुंदर था, चॉकलेटी फिल्मी अभिनेता सा चेहरा नवनीत, रुई की मानिंद मुलायम हाथ, चांदी जैसे उजले पांव, स्यों फल बोल दें तो हर्ज नहीं ऐसे कपोल, घर से कार और कार से दफ्तर तक सब वातानुकूलित, मगर एक फांस थी जो हरदम चुपती थी उसे कि पिता से उसके नाक नक्श यूं तो मिलते हैं बहुत कुछ, कद भी पिता से ऊंचा लेकिन वह हो न सका पिता सा सुंदर। मसलन पैदल चलते पिता को काला ढांड बना दिया था आग उगलते सूरज ने, पर सूरज को उन्होंने कभी उलाहना नहीं दिया, बल्कि नमस्कार करते रहे सिर झुकाकर जीवन भर, सर्दियों में बनियान बुशर्ट और फटी स्वेटर का पीठ का हिस्सा कर लेते थे छाती पर, और बड़ी गर्मजोशी से कहते

0: कारोबार कभी नहीं चलता ढकी छाती पर, गोदड़ी ज़्यादा गर्म होती है बनिस्बत तीन तीन रजाइयों के। पुराने छाते के सुराखों से अलग गिरती बारिश की धार, किंतु तरबतर पिता इस बात पर खुश रहे सदा कि कुछ न होने से बेहतर है कुछ होना। सिटी बस की पायदान पर पांव रखते रखते हर बार खुद को रोक लेते हैं और हाथों में मेथिया पालक की गड्डी लिए चप्पल फटकारते पिता घर लौट आते हैं मुस्कुराते हुए। पर उसे बार बार खोट नज़र आती है अपनी सुंदरता में। हालांकि उसे कितना तो समझाया भाई बहनों दोस्तों ने, समझाया कि बाप से बढ़कर होता है बेटा, कि कहीं वह ज़्यादा सुंदर है उसके पिता से। हालांकि उसे कितना ही समझाया भाई बहन दोस्तों ने, समझाया कि बाप से बढ़कर होता है बेटा, कि वह कहीं ज़्यादा सुंदर है उसके पिता से, लेकिन वह हर बार ठंडी सांस छोड़ता और कहता, पपीते के बीज होता है, हरगिज़ तो नहीं हो सकता काली मिर्च का दाना।
1: अभी आपने सुना वसंत सकरगाय का काव्य पाठ। कार्यक्रम शब्द सागर में आज आपने सुने डॉक्टर विजयानंद तिवारी और वसंत सकरगाय के काव्य पाठ। इसी के साथ ही कार्यक्रम शब्द सागर यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। एनिमल, इस फिल्म का गीत सुनिए राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाज़ों में। बोल मनोज मुंतशिर के हैं और संगीत है जैम 8 का।

शाश्वत सचदेव, शहजाद अली और साथियों की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म धुरंधर का गीत। बोल इरशाद कामिर और साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत है शाश्वत सचदेव और रोशन का।

0: की पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार

0: हफ्ते शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: राघव, तनिष्क बागची और असीस कौर की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का गीत। गीत तनिष्क बागची का है और संगीत है राघव और तनिष्क बागची का।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए फाइटर फिल्म का गीत, विशाल ददलानी, शेखर बेनीदयाल और शिल्पा राव की आवाजों में। कुमार के बोल हैं और संगीत है विशाल शेखर का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर शरद बाघेला। इन दिनों मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। आगर मालवा जिले में भी पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी विवाह का सीजन होने के कारण बाजारों में भीषण गर्मी के बावजूद चहल पहल दिखाई दे रही है। दिन के समय बाजारों सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं लोग अपने जरूरी बाजारों के कार्य सुबह शाम करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगर मालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने गत दिनों सर्किट हाउस में आयोजित हुई विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़े सभी कार्यों को अधिकारी प्राथमिकता से पूरा करें। प्रदेश के नगरी विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने आगर मालवा प्रवास के दौरान बड़ोद चौराहे से पाल रोड तक 98.34 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामरीकृत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है। अपने प्रवास के दौरान मंत्रीद्वय ने जिले के सुसनेर में नगर परिषद के नवीन भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। आगरमालवा जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में रबी फसल, विशेष रूप से गेहूं कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष यानी कि नरवाई जलवाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि भी निर्धारित की गई है। इसके तहत 2 एकड़ से कम भूमि पर अवशेष जलाने पर 2500 रूपए, 2 से 5 एकड़ भूमि पर 5000 रूपए और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15000 रूपए प्रति घटना के दर से राशि वसूली जाएगी। जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूर्ण करने वाले प्रगणकों का गत दिनों आगरमालवा SDM कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में SDM व तहसीलदार व जनगणना चार्ज अधिकारी ग्रामीण द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगणकों आशा पालीवाल, किरण नागले, सोना सोनगरा, कालूराम मेहर और प्रेम सिंह यादव को सम्मानित कर उनके कार्य की सराहना की। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में आगरमालवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 42 केंद्रों पर की जा रही है, जहां 20,843 कृषकों से 13,617 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही कृषकों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आगरमालवा में 69.42 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन 2 औद्योगिक क्षेत्रों में 394 औद्योगिक प्लॉट विकसित किए गए हैं, जिसमें 175 निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होने पर जिले में लगभग 550 करोड़ रुपए के निवेश और 3,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार उपलब्ध होगा और बड़े शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी और साथ ही परिवहन, होटल, खानपान, मरम्मत व अन्य सेवा क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आगरमालवा जिले में 24 करोड़ की लागत से बनने वाले हडाई डैम का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक मधु गहलोत ने किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले दिनों कृषि विभाग द्वारा आयोजित की गई मिट्टी प्रशिक्षण कार्यशाला में विद्यार्थियों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में विस्तार से समझाते हुए प्रयोग करके दिखाया गया कि किसान अपने कृषि योग्य भूमि की मिट्टी का परीक्षण स्वयं करके उसकी उर्वरकता क्षमता के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना अंतर्गत विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझने के लिए राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले की चयनित छात्रा ख्वाहिश गवली ने नागालैंड का भ्रमण कर परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझा और मध्य प्रदेश की संस्कृति का भी परिचय कराया। 8वें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत कुपोषण के कारण पहचान एवं रोकथाम विषय पर आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुए जागरूकता व्याख्यान में वक्ताओं ने कुपोषण के प्रमुख कारणों, उसके लक्षणों की पहचान और उससे बचाव के प्रभावी उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संतुलित आहार, स्वच्छता और जन जागरूकता को कुपोषण से निपटने के प्रमुख उपाय बताए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे आगर मालवा।

जिले की चिट्ठी, आलेख महेश शर्मा का था और वाचन स्वर शरद बाघेला का। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर

कीजिए स्वीकार आकांक्षा का प्यार और नमस्कार। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। श्रोताओं, जीवन का सौंदर्य उसकी रफ्तार में नहीं बल्कि उसकी निरंतरता में है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। रुकना मृत्यु का प्रतीक है और चलते रहना जीवन का। इसीलिए थके जरूर पर रुके नहीं, क्योंकि हर नया कदम आपको एक नए अनुभव और एक नई सफलता के करीब ले जाता है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सागर। चरैवेति चरैवेति, जी हाँ श्रोताओं, जीवन का मूल मंत्र है निरंतरता। जीवन एक बहती हुई नदी के समान है। नदी जब तक बहती है उसका जल निर्मल और प्राणवान बना रहता है, लेकिन जैसे ही वो रुकती है उसमें ठहराव और विकार आने लगते हैं। मानव जीवन पर भी यही नियम लागू होता है, चलते रहने, जिसका अर्थ है केवल शारीरिक रूप से गतिशील होना नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होते रहना है।

कार्यक्रम गीत सागर में हम बातें कर रहे हैं निरंतरता यानी चलते रहने की। श्रोताओं, प्रकृति का हर कण संदेश देता है कि परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। सूर्य समय पर उगता है, ऋतुएं बदलती हैं और बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया भी कभी नहीं रुकती। जब हम जीवन में चुनौतियों या असफलताओं से डरकर रुक जाते हैं तो हम केवल अपना समय नहीं गवाते बल्कि अपनी क्षमताओं को भी सीमित कर देते हैं। ठहराव आलस्य और निराशा को जन्म देता है, जबकि गतिशीलता आशा और नए अवसरों के द्वार खोलती है। इसीलिए चलते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया,

0: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
0: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपकी अपनी विविध भारती, आपके अपने TV सेट पर, डायरेक्ट टू होम, DTH।
0: पुलिस?
5: मिस सीमा
0: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1 लाख दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
6: हेलो मम्मा।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, ऐसा कहा गया है कि राह में कांटे तो होंगे ही, पर उनका काम तुम्हें रोकना नहीं बल्कि तुम्हारी चाल बढ़ाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन में चलने का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, कभी उतार आते हैं तो कभी चढ़ाव, लेकिन संघर्ष ही वो कसौटी है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। यदि हम गिरते हैं तो रुकने का संकेत नहीं है वो, बल्कि फिर से उठकर और अधिक सावधानी से चलने की प्रेरणा है।

श्रोताओं, चलते रहने का एक और अर्थ है बीती बातों कड़वाहटों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। इसलिए अच्छी बातों और यादों के साथ आगे बढ़ते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।

0: अभी आपने सुना पंडित दिनकर कैकनी का राग देसी में ख्याल गायन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ चार मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल फ्रंट से होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,68,29,250 रुपये की राशि अंतरित होगी। प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। अधिनियम के लागू होने से अब वर्ष भर 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इससे न सिर्फ ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अधोसंरचनात्मक विकास को भी गति मिलेगी। विश्व योग दिवस के लिए मध्य प्रदेश आयुष विभाग एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। आज से शुरू हो रहे हर घर योग अभियान में 800 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और सभी चिकित्सालयों में पदस्थ योग शिक्षक 10 से 15 नागरिकों के छोटे समूह में योग अभ्यास करवाएंगे। आंधी बारिश का दौर थमते ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में तेज गर्मी और लू का असर बना रहेगा। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुँचने की संभावना जताई गई है। और IPL में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाश

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रस्तुति सुनीता सिंह की है।
1: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, जिंदगी हर सुबह हमारे हाथों में एक नया दिन रख देती है, लेकिन उसे शिकायतों से भरना है या शुक्रिया की रोशनी से सजाना है, ये चुनाव कहीं ना कहीं हमारा अपना होता है। कभी हम उन चीजों के बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, और कभी एक छोटी सी खुशी भी

0: दोस्तों, जिंदगी हर सुबह हमारे हाथों में एक नया दिन रख देती है, लेकिन उसे शिकायतों से भरना है या शुक्रिया की रोशनी से सजाना है, ये चुनाव कहीं ना कहीं हमारा अपना होता है। कभी हम उन चीजों के बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, और कभी एक छोटी सी खुशी भी मन को इतने संतोष से भर देती है कि जीवन सुंदर लगने लगता है। सच तो ये है कि सुख केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि उस दृष्टि में छिपा होता है जिससे हम अपने जीवन को देखते हैं। शिकायतें धीरे धीरे मन की मिठास छीन लेती हैं, रिश्तों में अनकही दूरियां भर देती हैं, और फिर घर परिवार दोस्त सबका साथ होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। लेकिन उसी जीवन को जब हम शुक्रिया कहकर स्वीकारते हैं, जब हम आभार के भाव से भरते हैं, तो साधारण दिन भी उत्सव जैसा लगने लगता है। सच तो ये है कि जिसे जो मिला उसने उसी से अपना संसार बना लिया, किसी ने कमी गिनी और किसी ने कृपा। तो आइए आज इसी विषय पर कुछ दिल की बातें करते हैं। आज का विषय, शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं? आप अपनी जिंदगी में किन बातों के लिए ईश्वर, समय, अपनों या जीवन को शुक्रिया कहना चाहेंगे? क्या है आपके संतोष का आधार? कौन सी छोटी सी बात, कौन सा रिश्ता, कौन सी याद या कौन सा अनुभव आपको भीतर से संतोष से भर देता है? और क्या आपको लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है? तो आज इस कार्यक्रम में अपने अनुभव, अपने एहसास और अपने मन की बात साझा कीजिए हमसे। नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए।
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, ग्राम सिरवा बांधा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
0: और बिल्कुल समय का ध्यान रखकर आपने फोन किया है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ये बहुत जरूरी है, हमारे सभी श्रोताओं को ये चाहिए कि वो समय का ध्यान रखकर एक हफ्ते के बाद फोन करें। तो योगेश जी,
1: शिकायत करने का मौका ही नहीं देंगे।
0: बहुत अच्छी बात। तो योगेश जी, हम आज का विषय बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में आप किसके साथ हैं, शिकायतों के साथ या शुक्रिया के साथ। अक्सर मन में लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है। अपने अभावों को, अपनी कमियों को हम बहुत देखते हैं, लेकिन हर जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए इंसान शुक्रिया कह सके। तो हम जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ हैं और किस बात के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे आप?
1: हमारा जीवन ज़्यादातर शुक्रिया पर ही मतलब अभी तक गुजरा है। अक्सर लोगों को हम शिकायत करते सुनते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, लेकिन वो सारी चीजें हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जितना सकारात्मक सोचेंगे उतनी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलेगी और उस तरह से हमारा मानसिक स्थिति होगा। तो जो चीजें नकारात्मक होती है या जो हमारे से थोड़ी दूर होती है उनके बारे में उतना ना सोचे।
0: बिल्कुल,
1: जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत जिंदगी को शुक्रिया में गुजारे तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शुक्रिया कहने का मतलब तभी आता है कि जब हम या तो सामने वाले का मदद कर दे या सामने वाला हमारा मदद कर दे, तो ये सबसे अच्छी चीजें होती है।
0: बिल्कुल, जो कुछ हमें जिंदगी में नहीं मिला है उसकी शिकायत करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि जो मिला है वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, है ना?
1: बिल्कुल, मानव जीवन जैसे हमें मिला है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। माता पिता है, पूरा परिवार है, इससे बड़ा एक इंसान के लिए कोई सौभाग्य की मतलब बात नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल। तो आज हम जानना चाहते हैं योगेश जी कि एक कोई ऐसी बात आप बताएं जिसके लिए आप, या जितनी बातें आप कहना चाहें, किस बात के लिए आप दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं जिंदगी को?
1: जिंदगी को दिल से शुक्रिया तो इसी बात के लिए कहना चाहेंगे कि हमारा पूरा भरा परिवार है और अभी तक के 35 साल के जीवन में हमें कभी मतलब दुखद या फिर कह सकते हैं जिंदगी से उस तरह से कोई शिकायत नहीं है।
0: क्या बात है। देखिए, आज जबकि बहुत से इंसान ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हर पल शिकायत होती है और इसकी वजह से उनके घर का पूरा वातावरण भी खराब होता है, जिंदगी भी खराब होती है, कई बार शारीरिक परेशानियां हो जाती हैं, बीमारियां आ घेरती हैं इस नकारात्मक भाव में रहते रहते। लेकिन आप कह रहे हैं
1: जी जी, जिंदगी से जितना चाहे है उनसे दोगुना ही मिला है।
0: क्या बात है। तो सोचना चाहिए कि जो कुछ मिला है उसको भी हम सेलिब्रेट करें, है ना? जो कुछ मिला है वो कम नहीं है, बहुत कुछ मिला है और का हम प्रयास कर सकते हैं खुशी के साथ, मेहनत के साथ, लेकिन जो मिला है उसे सेलिब्रेट करना ना भूलें।
1: जी जी जी।
0: तो योगेश जी, बहुत

0: हेलो,
1: हेलो
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम नमस्कार।
1: जी। नमस्कार दीदी, मैं दादू भाई कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से रोशन सिंह बात कर रहा हूँ दीदी।
0: रोशन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस
1: जी
0: कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं?
1: जी दीदी, शुक्रिया के साथ रहूंगा मैं
0: अच्छा, तो किन बातों का शुक्रिया कहेंगे?
1: जी। मैं तो भगवान को, मतलब ईश्वर को यही शुक्रिया कहूंगा कि हमें, मतलब इंसान के रूप में जन्म दिया है। मतलब इंसान का जन्म बहुत यूनिक बात कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मिलता
0: बिल्कुल,
1: है। जी
0: बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना?
1: जी जी जी जी
0: तो पहला धन्यवाद तो इसलिए कि मनुष्य के रूप में आपको ईश्वर ने जन्म
1: जी
0: दिया। और
1: जी
0: किन-किन
1: जी
0: बातों
1: जी
0: का संतोष है जीवन में आपको? अक्सर हम
1: और दीदी मुझे सारी बातों का संतोष है, लेकिन एक चीज से मैं कहना चाहूंगा कि मैं, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाया।
0: अफसोस है
1: जो
0: आपको कि आप पढ़ाई
1: जी
0: नहीं कर
1: अब
0: सके,
1: जी जी
0: लेकिन
1: अफसोस भी
0: देखिए।
1: है। जब 2 साल का था तब मुझे माइंड वाला दीदी जी बुखार हो गया था, तो डॉक्टरों ने, मतलब पढ़ाई के लिए मना किया था कि पढ़ाई न कराना, नहीं आंखों की रोशनी चली जाएगी।
0: अब तो ठीक हैं आप?
1: जी अभी तो दीदी ठीक है, अब मतलब पूरा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन
0: हाँ,
1: मतलब पढ़ाई करने में दिक्कत होती तो पढ़ाई नहीं इसलिए करते दीदी।
0: लेकिन आजकल देखिए, पढ़ने के भी बहुत तरीके हैं, सीखने के बहुत
1: जी
0: तरीके हैं, है ना?
1: जी
0: सुनकर
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: कुछ आप सीख सकते हैं, है ना?
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: आप
1: जी
0: जो कुछ जानना चाहते हैं वो सुनकर कीजिए, ऐसे बहुत से
1: जी
0: साधन
1: और
0: हैं।
1: अभी

0: रविवार को हमने मदर डे मनाया है, तो मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी माँ को कि हमें मतलब जीवन इतना अच्छा जीवन दिया है उन्होंने।
1: देखिए यही एक बात कि माँ साथ है, माँ ने इतनी अच्छी परवरिश दी, इस बात का भी शुक्रिया हो सकता है ना, बिल्कुल होना ही चाहिए।
0: किसी किसी की तो दीदी माँ भी नहीं होती साथ, तो उनको भी बहुत दुख होता है और हमें भी
1: जी। तो रोशन सिंह जी कहने का अर्थ यही है कि जीवन जो है वो नजरिए की बात है, वस्तुओं में, उपलब्धियों में, चीजों में सुख नहीं है। आपका नजरिया ही जो है वो आपको सुखी या दुखी करता है, संतुष्ट या असंतुष्ट करता है।
0: नजरिए का बहुत अंतर है
1: जी जी,
0: पूरा ही मतलब।
1: तो शिकायतों के साथ नहीं, आप जीवन को शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ें, हमारा यही आज आपसे कहना है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं।
0: जी दीदी नमस्कार, मैं सुनीता दीदी बोल रही हूँ, आप नाम जा सकता हूँ?
1: जी सुनीता बोल रही हूँ।
0: जी जी दीदी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं आपको वतन का राग में सुनता रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से रेडियो से जुड़े रहिए और हमें फोन करते रहिए। बहुत शुक्रिया।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नाम बताइए
1: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के सारण सेवा में आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश जी।
0: संतोष कुमार राव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम आज ये जानना चाहते हैं जो विषय है वो आपके नाम से जुड़ा हुआ सा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जीवन में कई बार हम बहुत सी बातों को लेकर असंतुष्ट होते हैं और शिकायतों से भर जाते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको संतोष देती है? आप शिकायतों के साथ हैं जिंदगी में या शुक्रिया के साथ हैं?
1: जी हमें हर बातों का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ ने जन्म दिया है, इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेड़ हमें छांव देते हैं, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हवाएं हमें वायु देती है, इसका

0: भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जल हमें नीर देता है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जीवन को शुक्रिया अदा करते ही अगर जाएंगे तो जीवन में संतुष्टि पाएंगे, और संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख होता है, संतोष का कारण होता है। तो विनम्र बनेंगे तो सहजता ही सरलता का भाव आता है, मन में ख्याल आता है और विचारों को भी आप आदान प्रदान कर सकते हैं।
1: क्या बात है, तो दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन बोझ नहीं सुंदर लगने लगता है ना। और आपने बहुत अच्छी बात की कि कितनी बातों का हम शुक्रिया कह सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर हमारे पास है, माँ ने जन्म दिया, परिवार ने हमें पाला पोसा, इतने अच्छे हमारे दोस्त हैं, हम चलने के काबिल हैं, बोलने के काबिल हैं, हम सुन सकते हैं, बहुत से उपहार हमें ईश्वर ने दिए हैं, है ना। और आपने प्रकृति की भी बात की है, बहुत अच्छा लगा संतोष जी। और इस तरह की जब एक दृष्टि होती है तो हमारा जीवन जो है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। फिर हम शिकायतों से नहीं भरते, हम हर बात के लिए आभार करते हैं, शुक्रिया करते हैं और कृतज्ञता से भरे हुए होते हैं। और जो कृतज्ञ जीवन होता है वो हमेशा आनंदित होता है।
0: जी बिल्कुल मैम, और बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम होता है कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। सभी प्रसारण सेवा के जो कार्यक्रम आते हैं बहुत ही लाजवाब होते हैं और आपकी प्रस्तुतियां बहुत खास होती हैं। जितने भी पुराने हमारे अनाउंसर रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देते हैं। आप सभी की योगदान के लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा बहुत बहुत करते हैं मैडम, क्योंकि इतनी अमूल समय निकाल करके आप हमसे बातें करते हैं और इतने कार्यक्रमों को आप प्रसार करते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।
1: क्या बात है, आप हमारे प्रसारण के लिए हमें शुक्रिया कह रहे हैं। कि ये भी एक बात हो सकती है, एक नया ही दृष्टिकोण आपने दिया। बहुत अच्छा लगा संतोष जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद
0: जी मैम। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: जी जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: जी जी, मैं तो आज धन्य हो गया मैम जी कि आप उपस्थित हैं और ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं कि मैं अभी मेरे विचारों की बात इस

0: स्पीकर के माध्यम से रेडियो तक पहुंचे और श्रोताओं तक पहुंचे।
1: क्या बात है।
0: तो मैम जी, मैं अपना परिचय दे देता हूं सबसे पहले। नियमित श्रोता जय नरसिंह एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के से कमलेश कहार बोल रहा हूं जी।
1: कमलेश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार रेडियो सुनते हैं और बिल्कुल ध्यान से पूरे 7 दिन के बाद फोन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपका हम आभार करते हैं और जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
0: थोड़ी सी मैम बस एक बात और रख लूं, जैसे तो मैं सुन लूंगा मैम जी, वो तो सुनना जरूरी है, जैसे के अनुकूल ही बोलूंगा। यही की श्रोताओं से निवेदन है, आग्रह, हाथ जोड़ का निवेदन है कि कम से कम 8 या 9 दिन के पश्चात ही आप फोन लगाएं।
1: क्या बात है। तो कमलेश जी, आपके संदेश से हमारा मन खुश हो गया है, आपका आभार करते हैं कि हमारी तरफ से आपने ये बात कह दी है, बहुत शुक्रिया। आज का विषय जो है वो ये है कि हम जानना चाहते हैं कि जीवन में आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ, किन बातों का आभार करना चाहेंगे आप?
0: ये भी अनुकूल बात है मैम जी कि हमें शुक्रिया का अपनी जगह करना चाहिए, जो हमारे पास है। जैसे मैं मान लूं कि मेरे पास एसी नहीं है, तो बहुत से लोग एसी के लिए आतुर हैं आज, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो है जितना है, कैसे है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
1: क्या बात है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो बहुत अधिक शिकायत से भरना ये जीवन को खराब कर देता है। तो कमलेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसी कौन सी याद है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपको ऐसी कौन सी बात है जो संतोष से भरती है?
0: देखिए मैम जी, मुझे अपनों का साथ रोजी है, उसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ा अपनापन जो है, मैं रेडियो के माध्यम से अपनापन समझता हूँ, तो रेडियो मेरे साथ है, मैं रेडियो के रोजाना उसके साथ हूँ। और आप जैसे उद्घोषक हमारे बीच हैं, तो ये भी एक शुक्रिया का या धन्यवाद का या आभार की स्थिति बनती है। अपनों का साथ यदि रोजीना आपके साथ है, इससे बड़ा धन्यवाद या इससे बड़ा आभार किसी के लिए हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल। अगर आपके पास जीवन की बहुत सी उपलब्धियां हो लेकिन कोई अपना ना हो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए, तो सारी खुशियां बेमानी हो जाती हैं, है ना?
0: बिल्कुल। ये मन की बात कह दी, मैं यही कहने वाला था कि यदि हम उत्साह, उमंग या खुशी मनाते हैं और ये अपना साथ ना हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें टीस पहुँचती है मन में, हृदय जरूर यह बात खलती है कि अपना कोई होना था, तब हम उसके साथ अपनी बात रख पाते या खुशियां मना पाते।
1: जी।
0: मैं समझता हूँ कि जीवन हमारा है या रिश्तेदार है या जो भी अपनेपन है, सभी के साथ उत्साह उमंग के साथ रहें और आभार रोज ही ना उनका करते रहें।
1: जी, और कहा जाता है कि जो हर बात के लिए आभार करता जाता है, जीवन में जो कुछ उसको प्राप्त है उसके लिए जो आभार करता जाता है, उसको प्रकृति की ओर से और बहुत कुछ मिलता जाता है। आप जितना संतुष्ट होते जाते हैं उतनी प्राप्ति और होती जाती है, तो इस वजह से भी आपको बहुत संतुष्ट होना चाहिए।
0: जी, जैसे मैं सुबह उठता हूँ रोजीना, मेरा स्वभाव बन चुका है कि धरती माँ को शरण स्पर्श करना, जलवायु अग्नि आकाश पृथ्वी माता की जय हो, आभार करता हूँ उनका रोजीना, ऐसा नाम लेकर के चंद्र देवता, सूर्य भगवान, जो हमारी संस्कृति कहती है, उन सभी का आभार करता हूँ कि मुझे आज के लिए आपने तैयार किया, मैं अब रोजी रोटी से लग जाऊँ।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने कमलेश जी, कि आप प्रकृति का आभार करते हैं, सूरज चांद धरती आसमान का आभार करते हैं कि एक और नया दिन हमें मिला है जीने के लिए और हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ें, इस बात का शुक्रिया करते हैं। क्या बात है, मन खुश हो गया ये बात सुनकर।
0: बहन जी, ये शब्दों तक सीमित नहीं है, मैं सुबह में ही लाया हूँ। जी जी, शायद सुना पड़ी हो, कोयल मेरे बीच में है।
1: जी जी जी, कोयल ने आपके स्वर से स्वर मिलाया है और उसने सहमति दी है कि कमलेश जी सही कह रहे हैं।
0: पेड़ लगे हैं आम के, मैम जी अम्मियाँ लगी हैं, आम भी हो गए हैं, आंधी तूफान सबका आनंद ले रहे हैं।
1: क्या बात है। तो चलिए कमलेश जी, इसी तरह संतोष के साथ जीवन को खुशी आप बिताइए और आकाशवाणी का साथ बनाकर रखिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। अंततः यह कहूंगा कि पूरी टीम को आभार धन्यवाद जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहते हैं, मैं हर बार यही कह देता हूँ, क्योंकि उनको आभार करना हमारा दायित्व बनता है, सभी श्रोताओं का दायित्व बनता है जो हमें आवाज के माध्यम सुनाई नहीं पड़ते, लेकिन उनके माध्यम से आवाज जरूर हमारे तक आ रही
1: है। जी जी जी, बिल्कुल। तो हमारी पूरी टीम तक आपका आभार पहुँच रहा है, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं। नमस्कार
0: जी, धन्यवाद जी।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी नमस्कार, मैं दशरथ सिंह बोल रहा हूँ, बस स्टैंड नाटाराम, जिला मंदसौर से।
0: दशरथ जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आपने हमें फोन किया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज के विषय पर आप बहुत अच्छा एक कोई विचार रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिंदगी में किन बातों के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं? आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ हैं? आपको क्या लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है या वस्तुओं में, चीजों में छिपा होता है?
1: जी बिल्कुल, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुख का, और शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी से भी शिकायत नहीं है। हमारे पास अपना जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ है, यानी हाथ पैर पांव सब ठीक है, और मम्मी पापा हमारे साथ हैं। शाम का खाना, सुबह का खाना, दोपहर की चाय, हम सब साथ में बैठकर पीते हैं, इससे सुख और क्या हो सकता है।
0: क्या बात है, परिवार का साथ है, माता पिता का आशीर्वाद है, भोजन की व्यवस्था है।
1: गरीबी और अमीरी, ये दुनिया का और संसार का नियम भी है, परिवर्तन का नियम है। लेकिन अपने पास स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य नहीं, अपना जो शरीर है उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, हाथ पैर बिल्कुल स्वस्थ है, सलामत है, और मम्मी पापा साथ में है, बच्चे बच्चियां हैं, मिसेज हैं, परिवार है, दुकान चल रही है, बढ़िया चल रही है, सभी कस्टमर आते हैं, वो सब सब कुछ चल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है दशरथ जी, के परिवार का साथ है, भोजन की व्यवस्था है, माता पिता का आशीर्वाद है, और आपका जो रोजगार है, रोजी रोटी, उसका काम बढ़िया चलता है। तो ये जरूर है कि आप और अच्छे का प्रयास करते होंगे, लेकिन जो है उसका संतोष जरूर है। जी
1: जी जी, हमने ये बात भी देखी है कि बहुत सारे के पास अधा पैसा है, लेकिन उनके पास बिल्कुल शांति नहीं है, वो खाना नहीं खा सकते हैं, किसी से बात करने का टाइम ही नहीं है। कोई गरीब आदमी आएगा तो उनको ऐसे ही टाल देते हैं कि इससे क्या बात करेंगे, अपना समय ऐसे ही जाया करा जाएगा, तो एक काम करते हैं, पैसे में लगे रहते हैं, हम पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, हम व्यवहार के पीछे भागते हैं।
0: बिल्कुल, तो देखिए संतोष का बहुत सा अवसर और बहुत सी चीजें जीवन में उपलब्ध हैं, देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, है ना? हमारे जीवन में ईश्वर ने हमको ऐसा बहुत कुछ दिया है, ऐसी अनेक परिस्थितियां जिसके लिए हम आभार कर सकते हैं, जिसका कि आपने जिक्र भी किया। तो हमें बहुत अच्छा लगा दशरथ जी कि आपने एक बहुत

0: सुंदर संदेश दिया इस कार्यक्रम के जरिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण निरंतर ऐसे ही दिन रात हम तक पहुंचता रहे, जैसे कि आकाशवाणी को सुनते हुए एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है
0: जी।
1: तो ये मेरे हिसाब से कि जो कस्टमर और सुन रहे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, जो श्रोता बंधु हैं, मैं चाहता हूँ कि ये 90 साल का जो हमारा आकाशवाणी का सफर रहा है,
0: हमारे
1: से पहले भी चलता आ रहा था, तो आने वाली पीढ़ी को भी इसको समझना चाहिए कि आकाशवाणी क्या हो रही है,
0: बिल्कुल
1: क्या होती है।
0: बहुत अच्छी बात। तो आकाशवाणी से ये प्रेम बनाकर रखिए, आपके ज़रिए ये भी संदेश पहुंच रहा है कि आकाशवाणी आप जो आने वाली पीढ़ी है वो भी रेडियो से जुड़े। बहुत अच्छा लगा दशरथ जी।
1: और कहते हैं कि जहां ना पहुंचे प्राणी वहां पहुंच गई आकाशवाणी।
0: बहुत अच्छी बात। तो दशरथ जी आपने हमें आज फ़ोन किया, आपका हम आभार करते हैं, शुक्रिया कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते खमागणी।
0: नमस्ते खमागणी, कौन बोल रहा है?
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापति।
0: मोहनलाल प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैडम। और हमारे यहाँ तो गर्मी का मौसम बहुत खतरनाक है।
0: गर्मी खतरनाक है ही इस साल, तो बहुत बचकर रहना होगा और पूरी सावधानियां बरत कर ही गर्मी के मौसम में बाहर निकलिएगा। फिलहाल जो हमारा विषय है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम जानना चाह रहे हैं कि जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको संतोष होता है। बहुत से लोग जीवन में शिकायतों के साथ रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, मेरे जीवन में ये कमी है। तो हम आज जानना चाहते हैं कि जो है आपकी जिंदगी में, किस बात के लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे जिंदगी को?
1: भगवान की मेहरबानी से एक लड़का है, तो वो मेरी मतलब मुराद पूरी हो गई। और दो बच्चियां हैं, जो एक शादीशुदा है और एक छोटी है, तो मेरी मुराद पूरी हो गई है। और वो एक भगवान की मेहरबानी से एक बच्चा है, तो वो भी अपने काम पर व्यस्त है। तो मतलब मेरे मन की मुराद पूरी हो गई और मैं संतुष्ट हूँ।
0: संतुष्ट हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं आपको ये लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो योग्य हैं और एस्टैब्लिश्ड हैं, इसलिए आप संतोष करते हैं और आभार करना चाहते हैं ईश्वर का? और कौन सी बात है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे? कई बार शिकायतें होती हैं लोगों को बहुत कि जिंदगी में ये नहीं है, अभावों पर बहुत हमारा ध्यान जाता है, लेकिन जो हमारे पास
1: मैं मेरे शरीर से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं नशा करता नहीं हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। भगवान की मेहरबानी से खुद धंधा कर लेता हूँ और संतुष्ट हूँ। भगवान की मेहरबानी से धंधा भी अच्छा है।
0: जी जी, तो आप स्वस्थ हैं इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं और ये बड़ी बात है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन कहा गया है स्वास्थ्य को, है ना? तो
1: जी,
0: सबसे बड़ा धन

जब आपके पास है, आप स्वस्थ हैं, तो जीवन का सारा आनंद आपके पास है। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है जिंदगी को, है ना। तो मोहनलाल जी, आज आपने हमें फ़ोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ, मैं अनूपपुर से।
0: आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप, शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ? ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, खुशी है और आप शुक्रिया कहना चाहते हैं?
1: देखो मैम, शुक्रिया जरूर हमें किसी की, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, कोई हमें अच्छा कोई कर रहा है, तो हम जरूर भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी,
0: जिंदगी आपके साथ जो व्यवहार कर रही है, जिंदगी ने आपको जो दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी बात जिंदगी से आपको मिली है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मेरे हमारे जीवन में जरूर ऐसे कई ऐसे बातें आए हैं जिसको हम लोगों को शुक्रिया अदा किए हैं, ऐसी बात नहीं है। जी,
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ।
0: अच्छा, तो देखिए आपके पास एक नौकरी है, इस बात का शुक्रिया कर सकते हैं आप, है ना?
1: जी
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है,
1: जी जी
0: है ना? इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। घर में, घर परिवार में कौन है आपके?
1: घर परिवार में मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है।
0: और सभी लोग
1: जी
0: स्वस्थ हैं,
1: जी बिल्कुल स्वस्थ
0: सभी
1: है
0: लोग
1: सब।
0: खुश हैं, इस बात का शुक्रिया हो सकता है ना?

0: बिल्कुल हो सकता है। और एक
1: तो
0: शुक्रिया का एक और होता है शुक्रिया, जैसे मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करके मेरे को मतलब नौकरी पे रखा, तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया अपने बॉस को।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: दोस्त को भी शुक्रिया, ईश्वर को भी शुक्रिया। तो इस तरह से एक नज़रिया जब हमारा होता है ज़िंदगी में कि जो कुछ हमें प्राप्त है उसको भी हम कभी सेलिब्रेट करें, है ना,
0: जी जी बिल्कुल
1: अच्छे के लिए हम प्रयास ज़रूर करें, जो कुछ कम है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। किसकी ज़िंदगी में कमियां नहीं हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी बात की कमी है। जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास हो सकता है कि समय की कमी हो सकता है कि परिवार की कमी हो, है ना।
0: जी जी बिल्कुल
1: तो चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके पास एक अच्छी सी नौकरी है, घर परिवार है और सभी स्वस्थ हैं। तो इसी तरह से ज़िंदगी को सकारात्मक भाव के साथ देखिए और बहुत खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: चंद्रशेखर सिंह शाक्य है। मैं टैक्सेशन असिस्टेंट हूँ मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत SGST डिपार्टमेंट में।
1: चंद्रशेखर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहले भी फोन किया है आपने?
0: नहीं मैम,
1: पहली बार फोन किया है। तो इस तरह से आप हमारे नए श्रोता हुए, तो विशेष स्वागत आपका। और अब हम जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
0: मैडम, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन रहते हैं वो ऐसा मानिए कि अगर वो नहीं होंगे तो हमें छोटी छोटी खुशियों का कभी पता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल,
0: थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल होना या नेगेटिव फेस आना बहुत जरूरी होता है। उससे आदमी बूस्ट भी करता है
1: जी,
0: परिवार के साथ में उसकी बॉन्डिंग भी बनती है, बहुत सारी चीजें अच्छी है।
1: जी जी, तो ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, जिसके लिए आप जिंदगी को शुक्रिया कहना चाहेंगे?
0: मैडम, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं अपने परिवार के प्रति काफी संतोषजनक हूँ, उनकी बहुत केयर करता हूँ, वो मेरी बहुत केयर करते हैं।
1: एक अच्छा परिवार है आपके पास, है ना?
0: जी मैम।
1: जी जी, तो देखिए, जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक दृष्टिकोण की बात होती है, जो संतोष और सुख है वो वास्तव में हमारे नजरिए की बात है। तो चंद्रशेखर जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे नए श्रोता हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे नियमित श्रोता रहें, लगातार हमें फोन कीजिएगा, बस इस बात का ख्याल करके कि एक सप्ताह के अंतराल के बाद ही आप दोबारा फोन करें। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: शिवम सिंह,
0: कहाँ से बोल रहे हैं शिवम जी?
1: शहडोल, मध्य प्रदेश।
0: शिवम जी, आप हमारे नए श्रोता हैं शायद,
1: जी
0: पहली बार फोन लगा है आपका।
1: हाँ,
0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम शिवम जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। तो क्या कहेंगे आज के विषय पर आप?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली है,
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, रहते हैं मेरी पूरी फैमिली एंड आयरिंग माय एल्डर ब्रदर्स, माय पेरेंट्स, सारी चीजें सब लोग। एंड जो क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी जगह आपको ऐसी चीजें होती हैं कि आपको गाइडेंस की जरूरत होती है,
0: जी जी जी
1: वहाँ पे बहुत अच्छी मेरे जो बड़े भाई लोग हैं और जो मेरे और पेरेंट्स हैं, वो सारे लोग मुझे बहुत अच्छा गाइड और सपोर्ट करते हैं वहाँ पे।
0: क्या बात है
1: सेकेंडली,
0: जी।
1: आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर माई जॉब और जॉब ऑन हैविंग और अभी जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे सीनियर्स मुझे मिले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ने में लाइफ कोचेस भी, एज अ लाइफ कोच भी गाइड करते हैं, एज अ कंपनी कोच भी गाइड करते हैं।
0: क्या बात है। तो शिवम जी, आप बहुत खुश हैं कि एक बहुत अच्छा परिवार आपके पास है जो आपका मार्गदर्शन करता है और सपोर्ट करता है जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, और ऐसा ही आपका कार्यक्षेत्र भी है। तो आपको क्या लगता है कि जिंदगी में सुख जो है वो वास्तव में वस्तुओं से होता है, चीज़ों से होता है, या हमारे नज़रिए की बात है सुख?
1: नजरिए का होता है, क्योंकि सबकी लाइफ, सबके देखने का तरीका अलग होता है। किसी को मटेरियल हैप्पीनेस होती है, किसी की मटेरियलिस्टिक होती है, किसी को चीजों में खुशी मिलती है, किसी को फैमिली में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में मिलती है। मुझे फैमिली में ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज अगर आपके पास चीजें नहीं भी हैं बट आपके पास एक अच्छा परिवार है, कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको आपके जिंदगी के उतार चढ़ाव में आपका साथ दें, तो जिंदगी आसान लगती है।
0: बिल्कुल। और नजरिए की बात मैंने इसलिए की कि एक गिलास की हम बात करें कि एक गिलास अगर आधा भरा है तो उसे दो तरह से देखा जा सकता है। कोई कह सकता है कि ये गिलास आधा भरा है और कोई ये भी कह सकता है कि ये गिलास आधा खाली है। तो ये दृष्टिकोण की बात है ना। तो हर जीवन में कमी तो होती है, अगर हम सिर्फ कमियों को लेकर शिकायतों से भरते हैं तो फिर बात बनती नहीं, जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होती है, गुणवत्ता उसकी ख़राब हो जाती है ना
1: जी।
0: तो शिवम जी, आपने आज हमसे बात की, हमें फ़ोन किया और अपने विचार इस कार्यक्रम में रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

मित्रों श्रोताओं, जीवन शायद कभी पूरी तरह शिकायतों से खाली नहीं होता, लेकिन यदि मन में शुक्रिया के कुछ दीप जलते रहें, तो अंधेरे उतने घने नहीं लगते हैं। कभी किसी अपने का साथ, कभी किसी अनजान की मुस्कान, कभी सुबह की धूप, तो कभी कठिन समय में मिली छोटी सी उम्मीद। जीवन हर दिन हमें कुछ न कुछ ऐसा देता है जिसके लिए ठहर कर धन्यवाद कहा जा सके, आभार किया जा सके, शुक्रिया कहा जा सके। शिकायतें मन को थका देती हैं, लेकिन कृतज्ञता मन को शांत करती है और यकीनन संतोष का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इसी सोच और इसी सकारात्मक भावना के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। आप मुस्कुराते रहिए, अपनों का साथ महसूस करते रहिए और जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों के लिए दिल से कहते रहिए शुक्रिया। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति सुनीता सिंह की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,67,29,250 रुपये की राशि अंतरित होगी। प्रदेश में 1 जुलाई से विकसित भारत जी रामजी अधिनियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इससे वर्ष भर में 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे न सिर्फ ग्रामीण आजीविका बल्कि अधोसंरचनात्मक विकास को भी गति मिलेगी। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका प्रभाव हमारे मन, शरीर और आत्मा पर गहराई से पड़ता है।

और भाग दौड़ वाली इस ज़िंदगी में संगीत एक थेरेपी की तरह है, और ये थेरेपी अगर आपके पसंद की हो तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की संगीतमय थेरेपी, वो भी आपकी पसंद की, कार्यक्रम आपकी फरमाइश के इस पहले गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म बेमिसाल से। लता मंगेशकर की आवाज़ को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है आप सभी श्रोताओं ने, इंदौर मध्य प्रदेश से विजय।

कमल, पूजा, सुषमा और सुनील, साथ ही औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म बेमिसाल का ये गीत।

जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन। आप सभी की पसंद है फिल्म अभिलाषा का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को लिखा है मजरू ने और संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीत से सजाया।

सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। आप सभी ने फरमाइश की है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म धनवान के इस गीत को सुनने की, जिसे लिखा है साहिर ने और संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। लीजिए सुनिए।

नाइट इन लंदन। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पसंद आप सभी की। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार ने।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की 12वीं कड़ी।
3: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओं, धारावाहिक की 12वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी नसीहतों।

0: का दफ्तर का नाट्य रूपांतरण। बाबू अक्षय कुमार पटना के जाने माने वकील थे। बड़े वकीलों में उनकी गिनती हुआ करती थी। बस ये समझा जाए कि राय बहादुरी के खिताब के करीब पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई खानदानी रईस थे। इनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता। इनके संघर्ष और कामयाबी की मिसालें शहर में चर्चा का विषय थीं।
1: अरे बीए में थर्ड डिवीजन से पास हो गए और वो भी 2 साल में, तो कौन सा तीर मार लिया। उन्हें देखो जिन्हें पढ़ने के लिए लालटेन की रोशनी भी नसीब नहीं थी। सड़क पर लगे लैंप शेड की रोशनी में पढ़ा करते थे और कभी कभी तो जुगनू की रोशनी में भी सबक याद किया करते थे। जी हाँ, मैं शहर के मशहूर वकील बाबू अक्षय कुमार की ही बात कर रहा हूँ। और एक आप हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हुए भी कुछ नहीं पढ़ा जाता।
2: उनके घर में तो खाने तक को भी नहीं था।
1: नसीब लेकर कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। श्रीमती जी, अपने लाडले को समझाएं। उसके लिए जिस्म को तपाया जाता है, गलाया जाता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आदमी कुछ बन पाता है। बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता, पेड़ नहीं फूटता, पत्ते नहीं लगते, फल नहीं आता।
0: बाबू अक्षय कुमार का शुरुआती सफर तो संघर्षमय रहा ही। वकालत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, लेकिन शीघ्र ही परिश्रम और लगन से वो समय भी आ गया जब वही काला कोट कामधेनु साबित हुआ। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से उन्हें वो दर्जा मिलने लगा। बड़े बड़े जलसों में सभापति बनने का न्योता आने लगा। ये अक्षय कुमार के जीवन का वो समय था जब सारी खुशियां उनके कदम चूम रही थीं।
3: सभी मेहमान आ चुके हैं, मगर अभी तक हमारे खास मेहमान अक्षय बाबू नहीं दिखाई दिए।
4: जी हाँ, उन्हीं का इंतजार हो रहा है।
5: अरे साहब, किसी मुकदमे की तैयारी में उलझे होंगे।
2: हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज के जलसे की पहली स्पीच तो उन्हीं से ही शुरू होनी है।
5: अरे लीजिए, आ गए वकील साहब, आइए आइए। शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर।
6: दोस्तों, आज की महफिल में हमारे खास मेहमान हैं हम सबके हर दिल अजीज, हमारे प्यारे दोस्त और शहर के जाने माने वकील अक्षय कुमार जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ मंच पे आकर हमारे नौजवानों के लिए 2 शब्द कहें और ये बताएं कि कैसे संघर्ष और परिश्रम से उन्होंने जीवन का ये सफर तय किया और इस ऊंचाई तक पहुंचे। अक्षय कुमार जी।
7: दोस्तों, आप सभी और घोष बाबू सम्मान के पात्र हैं जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूं कि कुछ लोग भाग्य को बनाते हैं और कुछ लोगों को भाग्य बना देता है। मैं पहले किस्म के लोगों में से हूं। हमारे शहर, समाज और देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें भाग्य पर नहीं बल्कि स्वयं के कर्म और कड़े परिश्रम पर विश्वास करना होगा। मैं सभी नौजवानों में यही जज्बा देखना चाहता हूं।
4: वाह वाह वाह, कितना अच्छा बोलते हैं अक्षय बाबू।
8: इनकी शादी हो गई है क्या?
4: अभी नहीं, जीवन की भागदौड़ में शादी करने की फुर्सत ही कहाँ मिली अभी तक।
8: लेकिन यह सही समय है, अक्षय बाबू को अब विवाह कर लेना चाहिए।
0: समय बीतता रहा। अदालत से कचहरी, कचहरी से घर, घर से महफिल और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब हर कामयाब इंसान की तरह अक्षय बाबू के जीवन में भी उनके हम सफर का आगमन हुआ। हेमवती बेहद हसीन और हसमुख औरत थी।

0: जाने मन, मैं आपसे कुछ पूछूं, इजाजत है?
1: हाँ हाँ जाने मन, हम भी तो यही चाहते हैं कि कुछ आप अपनी कहें, कुछ हम अपनी कहें।
0: हम चाहते हैं कि आज शाम को हम लोग नुमाइश देखने चलें।
1: अच्छा,
0: शादी हुए हमें इतना समय गुजर गया, देखो ना, हम कहीं घूमने फिरने बाहर गए ही नहीं अब तक।
1: अब बात यह है प्रिय कि काम की व्यस्तताओं में कहीं घूमने फिरने का ख्याल ही नहीं आया। और नुमाइश, नुमाइश में क्या रखा है? कितनी भीड़ भाड़ होगी वहाँ, मेरा तो दम घुटता है ऐसे माहौल में। क्यों ना हम घर में ही कोई आयोजन रख लें, मेरा मतलब है कि मनोरंजन कर लें।
0: ठीक है, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा, रहने दीजिए।
1: अरे अरे अरे अरे, लगता है आप बुरा मान गईं। अरे सुनो तो, चली गई। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी है। अरे कौड़ियों को दांत से पकड़ना पड़ा है, वो तो मैं बालों में खिजाब भी इसलिए लगाता हूं कि मुझे इनका कुछ ख्याल आ जाता है। मेरी नजर में ये फिजूल खर्ची से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है प्रियवर, चलते हैं नुमाइश के लिए, आप तैयार रहना।
0: रहने दीजिए रहने दीजिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है। मेरी बहनों को देखो, कितना खुलकर खर्च करती हैं, आए दिन खरीदारी और सैर सपाटे करती हैं। उनके पति तो उन्हें मना नहीं करते, और एक हमारे साहब है।
1: जान तुम मुझे समझ नहीं सकी। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि कल हमें घोष बाबू की पार्टी में तो जाना ही है, फिर क्यों ना कल ही चला जाए। और हाँ, याद आया, वहाँ आपने भी तो ड्रामे में हिस्सा लिया है ना।
0: क्या मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने चार पैसे बचाने की फिराक में हैं? साहब, मैं आपकी खातिर ही तो घूमने के लिए कह रही थी, मैं आपके लिए कुछ खरीदना चाहती थी, और उसके लिए मैंने कुछ रुपए रखे हुए हैं।
1: ये तो समझती हैं कि पैसा जैसे पेड़ पर लगता है। हेमू, आज तुम बलाह की खूबसूरत लग रही हो। ये बालों में जूड़ा, ये गजरा, अरे वाह वाह वाह वाह, अरे लगता है नाटक की तैयारी पूरी हो चुकी है। कह देता हूं, आज तो आप सबके दिलों पर बिजलियां गिराएंगी, बिजलियां। बड़ी कीमती साड़ी है, जरूर मायके सिलाई होंगी, और बनाओ श्रृंगार पर भी काफी खर्च हुआ होगा, सब बेकार का खर्चा है। पर किया क्या जाए, इनसे मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता, कहीं फिर से बुरा मान गई तो। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सब्र से ही काम लेना चाहिए। जी चाहता है प्रिय, तुम्हारा हाथ चूम लूं।
0: जाइए भी, जल्दी से तैयार हो जाइए।
1: हाँ।
0: ड्रामे के लिए देर हो रही है।
1: हाँ।
0: अरे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। जनाब तारीफ तो ऐसे कर रहे थे जैसे खर्च करने के लिए तपाक से मेरे हाथ में रुपए थमा देंगे, लेकिन मैं भी इनसे एक कदम आगे ही हूँ, साहब को जल्दी ही पता लग जाएगा।
2: वाह वाह, क्या अभिनेत्री है, शकुंतला के रोल में जान ही डाल दी।
3: इन्हें तो फिल्मों में अभिनय करना चाहिए।
4: बड़े खुश नसीब हैं, ऐसा नगीना उनकी अंगूठी में जो जड़ा है।
3: लेकिन साहब, इतना महंगा नगीना और ऐसे कंजूस की अंगूठी में, वो क्या जाने इसकी कीमत।
5: साहब, गोशाल कंपनी से कोई महाशय आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
1: ठीक है, अंदर भेजो।
3: साहब, ये 200 रुपये

0: रुपए का बिल है।
1: बिल? कैसा बिल?
2: कल मेम साहब ने हमारी दुकान से कुछ खरीदारी की थी, उसी का बिल है।
1: ओह, हाँ। अच्छा तो कल की चमक दमक, ये बिल उसका खमियाजा है। मन मार कर अक्षय बाबू को सुंदर बीवी के इन अतिरिक्त खर्चों का बोझ उठाना ही पड़ता था। बीवी की खातिरदारी के लिए थोड़ा बहुत खर्चा अपने ऊपर भी करना पड़ता था। हालांकि ये सब उनके उसूलों के सख्त खिलाफ था। आए दिन किसी न किसी अनजाने खर्च का बोझ उनके सिर पर सवार रहता था। एक रोज वकील साहब जब कचहरी से लौटे,
3: सुनिए जी, श्रीमती किचलू आई थी और ये निमंत्रण पत्र दे गई हैं।
1: अच्छा, लाओ दिखाओ तो।
3: हाँ, ये लीजिए।
1: अच्छा है, निमंत्रण पत्र तो बड़ा महंगा छपाया है। अच्छा, अपने छोटे भाई के बीए में पास होने के शुभ अवसर पर आप सभी को सपरिवार प्रीति भोज में आमंत्रित करता हूं। लीजिए बताइए, ये भला बीए पास करने की खुशी में इतना बड़ा आयोजन करने की क्या जरूरत है? मेरा भाई अगर बीए में पास होता तो मैं तो उसकी पीठ ठूंक कर कहता कि शाबाश, खूब मेहनत की। हजारों लोग हर साल बीए पास करते हैं, अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा चलो मान भी लिया जाए, लेकिन ये ड्रामा खेलने का भी कार्यक्रम है, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है।
3: क्यों, इससे बेहतर खुशी का और क्या मौका हो सकता है?
1: मेरी जान, डॉक्टर साहब समझदार आदमी है, ये उन्हें क्या सूझी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि खुशी तो हृदय का तत्व है, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है?
3: ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना।
1: जाना पड़ेगा क्यों, क्या वादा कर लिया है?
3: अब देखिए ना, श्रीमती किचलू कितना आग्रह करके गई हैं।
1: तो मेरी जान, तुम एक काम करो, जैसे वो तुम्हारे घर आई ऐसे ही तुम भी कभी उनके घर चली जाना।
3: क्या,
1: इसमें परसों जाने की क्या जरूरत है?
3: अरे जरूरत है भाई, अब आपको ही बता दूं, मुझे नायिका का पार्ट दिया गया है और मैंने उसे मंजूर भी कर लिया है। लगता है साहब ये खबर सुनकर खुश नहीं हुए हैं।
1: फिर वही ड्रामा, मतलब ये हुआ कि ये ड्रामा खेलेंगी और घोषाल एंड कंपनी फिर से मुझे कम से कम 200 रुपए की चपत लगाएगी। मामला बेहद गंभीर है, वक्त की नजाकत को समझते हुए इस बात की सख्त जरूरत है कि अभी से रोकथाम कर दी जाए। ये बला फिर से तुमने अपने सर ले ली, अपनी तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया तुमने, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे इस प्रेमी को कितनी परेशान करती है। मेरी जान, इस किस्म के जलसे नैतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक होते हैं। इन्हीं मौकों पर दिलों में ईर्ष्या के बीज बोए जाते हैं और यहीं पीठ पीछे बुराई करने की आदत पड़ती है। अरे ऐसे ही जलसों में तानेबाजी और नोकझोंक की नौबत आ जाती है कि फला लेडी हसीन है इसलिए उसकी दूसरी बहनों का फर्ज है कि उससे जलें। मेरी जान, ईश्वर ना करे कि कोई किसी से जले, मुझे तो डर है कि तुम्हारा दाहक सौंदर्य कितने ही दिलों को जलाकर राख कर देगा। इसलिए प्यारी हेमू, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं इसे पसंद नहीं करूंगा तो तुम हरगिज इसे स्वीकार नहीं करती।
3: साहब की दलीलें तो सुनिए, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे भी कम ना आका जाए। देखिए जी, मैंने तो यही सोचकर मंजूर कर लिया था कि कपड़े तो सब पुराने ही काम आ जाएंगे और ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होगी, बस कुछ घंटों की तकलीफ जरूर है और एहसान मुफ्त में हो जाएगा। अरे डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना? मगर अब नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मजबूरी उन्हें अभी लिखे देती हूँ। सचमुच क्या फायदा बेकार की उलझनों से।
1: कपड़े सब पहले के ही काम आ जाएंगे।

0: और कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। चलो, दिल से एक बड़ा बोझ तो उतरा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि मामला ऐसा है तो क्यों मैं इतनी माथापच्ची करता। अरे नहीं नहीं हेमू, मेरी जान, मेरी ये मंशा हरगिज नहीं है कि तुम जाओ ही मत। अब देखो ना, जब तुमने निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया है तो उससे मुकरना अच्छी बात नहीं मालूम होती। मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि जहां तक मुमकिन हो ऐसे जलसों से दूर ही रहना चाहिए।
1: आप फिक्र ना करें, अब नहीं जाऊंगी। तुम्हारी बातें मैंने गांठ बांध ली हैं।
2: दूसरे दिन शाम को अक्षय बाबू बगीचे में अपनी एक खास जगह पर फूलों के खिलने का आनंद उठा रहे थे। अक्सर काम से फुर्सत मिलते ही वो बगीचे में टहलने आया करते थे। तभी एक बूढ़ा उन्हें एक रंगीन और खुशबूदार लिफाफा थमा गया।
0: लिफाफा? देखें तो किसका खत है, क्या लिखा है? मेरे प्यारे अक्षय बाबू,
1: आप इस नाचीज के खत को पढ़कर बहुत हैरत में आएंगे, मगर मुझे आशा है कि आप मुझे माफ जरूर कर देंगे। आपके स्वभाव और आपके रहन सहन के तरीके सुन सुनकर मेरे दिल में आपके लिए प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया है। आपकी सादगी ने मुझे मोहित कर लिया है, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुद्दतों की सोई।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा। मैं कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है।
1: तो मौजूद है जिसकी मेरी निगाह में ज्यादा इज्जत है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपने रूप की जरा भी चिंता होती तो शायद मैं बहुत प्रसन्न होती, मगर मैं रूप की भूखी नहीं हूं। मुझे तो सीने में सच्चा दिल रखने वाले एक इंसान की चाहत है, और मैंने उसे आप पे देखा है। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप कल रात को डॉक्टर किचलू के बंगले पर तशरीफ ले आएं। मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। वहां अशोक के पेड़ के नीचे हरे कपड़े पहने मैं आपके लिए आंखें बिछाए बैठी नजर आऊंगी।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा। मैंने कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है। ना जाने चेहरा कैसा दिख रहा होगा। क्या करूं? क्यों ना हौस के पानी में अपनी सूरत देखी जाए। नहीं नहीं नहीं, यहां तो चेहरा साफ नजर ही नहीं आ रहा है। फिर तो घर ही चलना पड़ेगा, वहां आईना देखता हूं। ये क्या, हजामत साफ नहीं है, और ये कमबख्त साफा भी तो ठीक तरह से नहीं बंधा है। मगर इतना तो है कि मुझे कोई बदसूरत तो नहीं कह सकता। जरूर ये कोई ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी महिला है, वरना मामूली औरतों की निगाह में तो दौलत और रूप के सिवा कुछ और होता ही नहीं। लेकिन मेरा फोहड़पन शायद ही किसी स्त्री को पसंद आए। मुझे अब इसका ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। आज मेरे भाग्य जाके बड़ी मुद्दत के बाद मेरी कद्र करने वाला कोई सच्चा जौहरी नजर आता है। भारतीय स्त्रियां तो शर्म हया की पुतली होती हैं। जब तक अपनी दिल की हलचलों से मजबूर ना हो जाएं, वो ऐसा खत लिखने का साहस ही नहीं कर सकती। इन्हीं ख्यालों में बाबू अक्षय कुमार ने रात काटी, पलक तक नहीं झपकी। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे तक बाबू अक्षय कुमार ने शहर की सारी फैशनेबल दुकानों की सैर की। दुकानदार हैरान थे कि साहब यहां का रास्ता कैसे भूल गए। गरज ये कि आज उन्होंने बड़ी बेदर्दी से रुपया खर्च किया, और जब घर चले तो फिटन पर बैठने की

0: भी जगह नहीं थी।
1: अरे आज सवेरे से कहाँ गायब रहे, और ये माथे पर पसीना कैसा?
0: अब हाँ, जिगर में कुछ दर्द था, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ चला गया था।
1: तुमने तो मुझसे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, जिगर का दर्द एक भयानक रोग है।
0: अरे डॉक्टर साहब ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है।
1: इसकी दवा डॉक्टर किचलू के यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, मालूम नहीं डॉक्टर चड्ढा बीमारी की तह तक पहुँचे भी हैं या नहीं।
0: अक्षय कुमार ने हेमवती को चुपती निगाहों से देखा, खाना खाकर अपने कमरे में जा लेटे। शाम को जब वो पार्क, घंटाघर और आनंद बाग की सैर करते हुए फिटन पर जा रहे थे, तो उनके होठों पर लाली और गालों पर जवानी की गुलाबी झलक मौजूद थी। आज उन्हें पहली बार जीवन में अपने रूपवान ना होने पर दुख हो रहा था। आज वो अपनी पतली नाक के बदले अपना खूबसूरत गाउन और वकालत की डिग्री सब कुछ देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर किचलू शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक थे, पार्टियां देना तो उनका जैसे शौक था। बंगला क्या था, शानो शौकत का जीता जागता नमूना था। दूर तक फैले अशोक के पेड़, सजे धजे फाटक, बरामदे की लंबी मेहराबें, सरू के पेड़ों की कतारें, बल्ब की रोशनी से चकाचौंध बंगला भव्यता का संकेत दे रहा था। मुख्य कक्ष में ओपन थिएटर और उससे सटा बार, अभिप्राय ये कि आधुनिक सुख सुविधाओं से सजा धजा बंगला था।
2: अरे वकील अक्षय कुमार, आज ये कूलर में फूल कैसे लग गए?
3: आइए आइए भाई, आज तो आप एकदम बाके नौजवान लग रहे हैं, क्या बात है
4: भाई। आज वकील साहब को क्या हो गया है, ये चमक दमक माजरा क्या है?
5: जी जनाब, माजरा कैसा, अपने अक्षय बाबू किसी से कम थोड़ी ही ना है। रुपया है, मान सम्मान है, इज्जत है और खूबसूरत बीवी है, क्या नहीं इनके पास।
4: माफ करना, बात काट रहा हूँ, भाभी जी की संगत का असर रंग लाया है। बीवी अगर हसीन हो, जवान हो, ऊपर से अदाकारा हो, तो उसका जोड़ बिठाना कोई मामूली बात है क्या? क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते, क्यों अक्षय बाबू?
0: कैसे कैसे मस्खरे महफिल में जमाए, इनसे फुर्सत मिले तो उन मोहतरमा को ढूंढा जाए। वहां देखूं उस अशोक के पेड़ के नीचे, मगर वो है कहां? आधा घंटा हो गया, चलो अब नाटक भी शुरू होने वाला है, वहीं बैठा जाए।
3: क्या कातिल लताएं हैं,
4: हाय शकुंतला के बेश में तो ये अप्सरा हैं।
3: अजी साहब, फलक के चांद और धरती के चांद में कौन ज्यादा हसीन है, कहना थोड़ा मुश्किल है क्या अक्षय बाबू?
0: ये क्या, ये तो हिम्मती है, इसने तो मुझसे कहा था कि नाटक में नहीं जाएगी, इन्होंने तो मेरी नसीहतों और अपने वादों और यहां तक कि मेरी खुशियों का भी ख्याल नहीं रखा। हे भगवान, यहां मेरा दम घुट रहा है, बाहर चलता हूं, उन मोहतरमा को तलाशता हूं। रात के 12 बजने को आए, उनका कहीं पता नहीं। मैं भी कैसा अहमक हूं, एक औरत के चकमे में आ गया, ना जाने हेमवती भी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अरे वो पेड़ के नीचे, वो सुंदरी, अरे हाँ वो तो मुझे ही इशारे से बुला रही है। हाँ चलता हूँ वहाँ। ऐ रूपवती, तुम्हारी इस कृपा के लिए दिल से मैं तुम्हारा आभारी हूं, तुम्हें देखने के शौक में मेरी आंखें पथरा गई हैं। अगर तुम्हें कुछ देर तक और नहीं मिल पाता तो शायद मेरी जान ही निकल जाती। कल शाम से ही मेरे दिल की जो हालत है उसका जिक्र करने के लिए मेरे पास

0: शब्द नहीं है। अपने हुस्न के जलवे दिखाइए। ये पर्दा हटा दीजिए, चेहरे से घूंघट हटा दीजिए। ये क्या? अरे अरे अरे हेमवती, तुम? ओ, तो ये सब तुम्हारी शरारत थी। बस हेमवती, बस अब मुंह से कुछ मत कहो। मैं खुद से बेहद शर्मिंदा हूं। हाँ हेमू, तुम जीत गई और मैं हार गया, और ये हार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 12वीं कड़ी, नसीहतों का दफ्तर। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, सतीश कक्कड़ और अशोक शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई नव निर्वाचित सरकार के राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,67,29,250 रुपए की राशि अंतरित होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक प्रदेश में आज से विशेष अभियान हर घर योग चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल से जुड़ें और लोगों को भी प्रेरित करें। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

आज आपके साथ हूँ मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, गर्मियों की तेज धूप और उमस भरा मौसम न केवल असहज लगता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हर साल हजारों लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं, जिनमें से कई को समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ सरल सावधानियों और जागरूकता के साथ आप इस खतरे से खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकती हैं। तो सबसे पहले सखियों, ये जानने की जरूरत है कि हीट स्ट्रोक और हीट थकावट में अंतर क्या है। शरीर जब अत्यधिक गर्मी से थक जाता है और शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता है, तब यह स्थिति होती है। यदि समय पर इलाज ना

केवल सावधानियों और जागरूकता के साथ आप इस खतरे से खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकती हैं। तो सबसे पहले सखियों, ये जानने की जरूरत है कि हीट स्ट्रोक और हीट थकावट में अंतर क्या है। शरीर जब अत्यधिक गर्मी से थक जाता है और शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता है, तब यह स्थिति होती है। यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो यह हीट स्ट्रोक में बदल सकती है। अत्यधिक पसीना आना, त्वचा का ठंडा और नम हो जाना, कमजोरी और थकावट, चक्कर आना, सिर दर्द होना, धड़कन तेज या धीमी हो जाना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है सखियो? त्वचा का गर्म और सूखा हो जाना, भ्रम और बेहोशी या दौरे वाली स्थिति हो जाना, धड़कनों का तेज हो जाना। तो आप समझ ही गई होंगी कि इन दोनों में अंतर क्या है। और अब जानते हैं इसके इलाज और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। व्यक्ति को ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं, शरीर को ठंडे पानी से स्पंज करें, ढीले कपड़े पहनाएं, पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक दें। वहीं अगर हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं या नजदीकी अस्पताल ले जाएं। शरीर को तुरंत ठंडा करने की कोशिश करें, बर्फ के पैक, ठंडी तौलिया वगैरह इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। दोपहर 12 से 4 बजे तक कोशिश करें कि धूप में ना निकले, हल्के ढीले और सूती कपड़े ही पहने, दिन में 8-10 ग्लास पानी जरूर पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, नारियल पानी, शिकंजी हमेशा लेते रहें, बाहर निकलते समय छाता, टोपी या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है सखियों। हीट स्ट्रोक और हीट थकावट को रोकना पूरी तरह संभव है, बस जरूरत है सही जानकारी, सतर्कता और समय पर कार्यवाही की। तो सखियों, बहुत सी जानकारी और भी देंगे आपको आगे कार्यक्रम में, पहले सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

सखियों, आज 12 मई है। हर साल 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। इसका उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, फसलों की कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि कीटों के कारण हर साल दुनिया भर में लगभग 40% फसलों का नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2018 में इस दिन की घोषणा की, जो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष की एक विरासत है। यह दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पौष्टिक भोजन प्रदान करने और कृषि व्यापार को सुरक्षित बनाने में पौधों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ पौधे हमारे जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए कितने आवश्यक हैं।

अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी, जो 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का एक सरकारी कार्यक्रम है। यह योजना 40% तक के भारी सब्सिडी के साथ 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य घरों में ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना और बिजली बिल कम करना है। आवेदन करने के लिए आप pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले क्रम मेरी उड़ान की ओर।

0: न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। इन्हीं इरादों और वादों के साथ शुरुआत करते हैं आज के मेरी उड़ान क्रम का। आज हमारे साथ हैं सपना यादव, का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आजकल हम हर जो मूवमेंट होता है, क्षण होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या कोई भी अवसर। और कुछ भी सेलिब्रेशन में हमें जरूरत पड़ती है केक की, तो हम महिलाओं के लिए इस केक के बिजनेस में कितना सुनहरा अवसर है। सपना जी, सबसे पहले ये बताइए, केक का बिजनेस शुरू करना है, ये आइडिया आपको कैसे आया?
1: केक का बिजनेस करना है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली कोविड के समय सिचुएशन

0: ऐसी थी कि किसी को कुछ अवेलेबल नहीं था, एटलीस्ट मुझे कुछ अवेलेबल नहीं था। मेरी एनिवर्सरी थी अप्रैल में,
1: हाँ
0: तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या केक कैसे मिलेगा। बस वहीं से मैंने कुछ घर के सामानों से बनाया केक, फिर इसका स्टेटस रखा। जो दूसरे लोग थे जिन्होंने मेरा स्टेटस देखा, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे नेबर्स थे, तो उनको भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट।
1: कोविड के दौरान आपको कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन मिला कि आप अपने घर के लिए बनाया और फिर आपको बाहर से ऑर्डर
0: बाहर
1: मिलने
0: से
1: लगे।
0: ऑर्डर्स मिले।
1: तो अभी आपको कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं केक के?
0: अभी मुझे वीकली मिल जाते हैं 5 से 6, या फिर कभी कभी मुझे एक दिन में 3 या 4 भी बनाने पड़ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग भी देना पड़ता है और फिर शाम लेट नाइट भी देना पड़ता है। तो ये चीजें, मैं फिर ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं, मंथ में 15-20 ऐसे
1: अच्छा
0: ऑर्डर्स हो
1: अच्छा
0: जाते हैं।
1: तो सपना जी ये बताइए कि जब आपने पहला केक बनाया उसका आपका एक्सपीरियंस क्या था?
0: वो तो बहुत खुशी हुई थी मुझे कि मैंने, जो मैं देखती थी, कभी सोचा नहीं था कि ये केक्स हम बना सकते हैं। बहुत खुशी हुई तब मैंने बनाया, और मेरे हस्बैंड ने जब देखा तो उन्होंने तारीफ की, तो वो तो एक स्पेशल ही होता है, हस्बैंड की तारीफ मिले तो।
1: जब अपने किसी हुनर की कोई तारीफ करता है तो वाकई में
0: हाँ,
1: बहुत अच्छा लगता है। और सपना जी सबसे पहले जब आपने सोचा कि आपको केक बनाना है तो उसके लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता पड़ी?
0: देखिए, केक बनाने के लिए तो हमारे घर में जो आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, हम केक उससे भी बना सकते हैं। किचन में सोडा भी यूज होता है, बेकिंग पाउडर भी होता है, शुगर भी होती है, ये सब बेसिक चीजों से ही केक बनता है। फिर हम इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, वो एसेंस के होते हैं उसके। तो अगर आप सिंपल केक बनाएंगे तो एसेंस की नीड नहीं है, नहीं तो आप घर के ही बेसिक सामान से ही केक बना सकते हो। आपको कोई मैदे की जरूरत नहीं, कोई सूजी की जरूरत नहीं, आप घर के गेहूं के आटे से भी आप केक बना सकते हैं। इवन शक्कर नहीं है तो आप गुड़ भी डालकर केक बना सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हम गुड़ से भी केक बना सकते हैं। तो कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं। हाँ, हमें एडवांस लेवल पर जाना है तो
1: अच्छा,
0: हमें चीजों की जरूरत।
1: इतने सारे ऑर्डर्स आपके पास आते हैं तो अभी तो आपको बहुत सारे इसमें लगने वाले सामानों की जरूरत पड़ती होगी, तो खुद मार्केट जाकर लाती हैं या ऑनलाइन मंगवाती
0: नहीं,
1: हैं?
0: वो मैं खुद सर्च करती हूँ मार्केट में, जैसे जैसे नई चीजें आती है मैं मार्केट खुद जाकर सर्च करती हूँ, और फिर जैसे मुझे जिस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे आजकल बच्चों को थीम केक चाहिए, डोरीमैन केक चाहिए, बार्बी गर्ल थीम, तो ये सब अलग अलग थीम चल रही है आजकल।
1: इतना बारीक काम है कि इसमें बहुत सारे टाइम की
0: नहीं
1: जरूरत
0: नहीं
1: पड़ती
0: ये
1: है।
0: वो केक को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, पर जब उस चीज में आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है उन चीजों को, तो आपके हाथ ऐसे चलते हैं जैसे आप रोटी नहीं बेलते हो
1: अच्छा।
0: फटाफट। जैसे एक लेडी को कितनी आदत हो जाती है रोटी बेलने की, उस तरह से केक आपका बनना। अगर मुझे कोई ऑर्डर देता है 2 घंटे पहले तो मैं केक रेडी करके दे देती
1: 2 घंटे में अगर एक केक बनाना चाहें तो आराम से
0: बन
1: बन
0: सकता
1: जाएगा।
0: है आराम से।
1: जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से संभालते हो और आप केक के लिए आराम से टाइम निकाल
0: हाँ,
1: लेते हो।
0: ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलूंगी कि मुझे घर में रहकर मैं घर भी संभाल रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख पा रही हूँ, और मैं ये काम भी कर पा रही हूँ। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट करते
1: एक सवाल और था आपसे, जैसे जो सखियां चाहती हैं, जैसे उनको भी पता है कि वो बहुत अच्छा कुछ कर सकती हैं, उनमें भी हुनर है किसी चीज का, या सपोज वो केक ही बनाती हैं, अच्छा बना सकती हैं, इसकी शुरुआत वो कैसे करें?
0: शुरुआत। तो सबसे पहले हमें केक का बेस, जो स्पॉन्ज बोलते हैं जिसको, ड्राई केक बोलते हैं, उसमें आप पहले बनाइए, एक दो बनाइए, चॉकलेट का बनाइए, वनीला बनाइए, ये सब चीजें मार्केट में अवेलेबल
1: तो
0: हैं।
1: इसके लिए प्रॉपर कहीं ट्रेनिंग की ऐसी कोई जरूरत
0: ऐसी
1: नहीं
0: कोई
1: है?
0: जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल हूँ जिस, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग भी अगर आप लेते हो और ट्रेनिंग करके छोड़ देते हो, आगे कुछ नहीं करते, पर आपको ट्रेनिंग लेने के बाद भी प्रैक्टिस तो लगती है।
1: प्रैक्टिस की
0: प्रैक्टिस,
1: जरूरत
0: आपके
1: है।
0: हाथ में सफाई आने के लिए आपको खुद को कम से कम 10 केक बनेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही बना पा रही।
1: तो जैसे कोई हमारी सखियां हैं घर पर ही शुरू करना चाहती हैं केक का बिजनेस, तो मिनिमम उनको कितने अमाउंट की जरूरत हो?
0: आप मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके, क्योंकि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उससे आप स्पॉन्ज बना सकते हैं। फिर आपको क्रीम चाहिए, टर्निंग टेबल चाहिए, स्पेचुला चाहिए, नाइफ चाहिए, इसके लिए आप 1000 रुपीज इनफ है। 1000 रुपीज, 1500
1: अच्छा,
0: से आप स्टार्ट कर सकते हैं
1: और ओवन
0: बिजनेस।
1: भी जरूरत पड़ती होगी?
0: देखिए, ओवन तो मैं खुद अभी कोविड के 2 साल मैंने बनाया, मेरे पास कोई ओवन नहीं था, मेरे पास कोई ऐसी एडवांस कोई मशीन नहीं थी। मैंने अपना केक 2 साल तक, कम मैं बता दूं, हंड्रेड्स ऑफ केक मैंने कढ़ाई और कुकर में ही बनाए।
1: तो बहुत अच्छी बात है सपना जी। और बहुत सी हमारी सखियां होती हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनमें एक डर होता है, एक हौसले की शायद कमी होती है,
0: कमी
1: वो आगे बढ़
0: होती
1: नहीं
0: है
1: पाती, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: सखियों के लिए। मेरा मैसेज यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, और किसी भी चीज को देखकर घबरा जाना या डर जाना, कोई केक हम मेरे लिए भी पहले मैं देखती थी कैसे बनता होगा, पर कोई स्पेशली लेडी

0: कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, कर सकती हैं वो, बस अपने अंदर के हुनर को पहचाने तो सब कुछ पॉसिबल है।
1: बिल्कुल सही बात कही है कि अपने हुनर को पहचानने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। अगर आप में कोई प्रतिभा है, और जरूर होगी, हर महिला में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और तराशने की। मेरे उड़ान क्रम में सपना जी आप आई, आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

उस खूबसूरत से गीत के बाद अब बारी है फूड जोन की। गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और लू से बचने के लिए सत्तू यानी

कि चने का आटा सबसे बेहतरीन और सस्ता घरेलू उपाय है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है सखियो। तो आइए आज आपको बताते हैं क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत के बारे में। यह सबसे आम और झटपट बनने वाली रेसिपी है जो पेट को तुरंत ठंडक देती है। तो इसमें लगने वाली सामग्री को लिख लीजिए सखियो। 2 बड़े चम्मच सत्तू, 1 गिलास ठंडा पानी, आधा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ पुदीना और धनिया। और सखियो आप जानते हैं इसे बनाना कैसे है। 1 गिलास में सत्तू और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह घोल ले ताकि गांठे ना पड़े। फिर बाकी पानी, नींबू, काला नमक, जीरा मिर्च और धनिया मिलाकर ठंडा ठंडा सर्व करें। ये क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत आपको बहुत ही पसंद आएगा। और सखियों आपको बता दें कि सत्तू का सेवन सुबह खाली पेट या दोपहर में करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो सखियों फिर से लेकर चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

सखियों, सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। जहां यह हमें सीखने और जुड़ने के अवसर देता है, वहीं छोटी सी लापरवाही किसी भी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण दे सकती है। ऐसे में महिलाएं सुरक्षित डिजिटल अनुभव के लिए कुछ अनिवार्य कदम उठा सकती हैं। इंटरनेट पर अगर कोई जानकारी ऑनलाइन चली गई तो उसे पूरी तरह मिटाना लगभग

0: असंभव है, इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर, बच्चों के स्कूल का नाम या वित्तीय विवरण साझा ना करें। आप इन्हें सीधे अपलोड भले ही नहीं करती, पर कई बार अनजाने में किसी पार्सल या अवार्ड को दिखाते समय ये सूचनाएं गलती से पोस्ट हो सकती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें।
1: महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है सुगम संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

सुंदरलाल मालवी और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। कलाकार हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में शिखा शर्मा। आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने शिखर शर्मा के गाए कुछ भक्ति गीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: नसंसनी ना उत्तेजना नशोर दिन रात ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गायक कैफी आजमी के लिखे गीत से। संगीत मदन मोहन का है और फिल्म है हकीकत।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने, फिल्म है गुमराह।

0: फिल्म गुमराह के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले इन पेशेवरों को प्रमाण पत्र, पदक और 1,00,000 रुपए नकद दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने और बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। उनके साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें भाजपा असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता शामिल हैं। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, हालांकि उन्हें फिर से आवेदन या फीस नहीं भरनी होगी। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही आधिकारिक तौर पर घोषित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
2: 21 जून योग दिवस को लेकर के जो यूनेस्को के माध्यम से पूरी दुनिया को योग अपनाओ, निरोगी बनो, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, शरीर में परमात्मा की दया से योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आईपीएल में कल रात धर्मशाला में खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से मात दी। वहीं आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रदेश भर के करीब 88,000 अधिवक्ता 122 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आंधी बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर लू ने दस्तक दे दी है। कल रतलाम में तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज उज्जैन, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में लू का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आज लॉयंस क्लब के भोजन सेवा केंद्र भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। राजगढ़ के पचोर पेट्रोल पंप अग्निकांड के घायलों से मंत्री गौतम टेटवाल ने आज शाजापुर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आगरमालवा में व्याख्यान का आयोजन किया गया। नवागत संभागायुक्त ने नर्मदापुरम संभाग का पदभार संभालते ही कमिश्नर कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। जबलपुर के रामसागर तालाब में डूबे 2 युवकों में से एक का शव आज सुबह बरामद हुआ, दूसरे की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं।

अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: आवर एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस

0: मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत श्रेया घोषाल और आतिफ असलम की आवाज में। फिल्म है तेरे नाल लव हो गया।

आतिफ असलम और श्रेया घोषाल के गाए इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें भेजी थी बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने, प्रमिलागंज, आलौर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। इसी गीत को सुनना चाहते थे संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, अकोला से गांधीबाग के रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की यही फरमाइश थी, अमरावती महाराष्ट्र के सरोज चौक से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया और उनके सभी साथियों ने इसी गीत को सुनना चाहा था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का गीत। पसंद करने वाले हैं कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदित्य, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर ने उमर खेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश भेजी है, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर और प्रणिता गवाणकर की फरमाइश आई है, बहादुरा नागपुर से शैलेश, सुमित, श्वेता, ध्वनि और टुक टुक गवाणकर ने भी ये फरमाइशी पत्र भेजा है, शाजापुर मध्य प्रदेश से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ राजावत भी यही गीत सुनना चाहते हैं, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही पसंद है। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध गीत, आवाज़ शफकत अमानत अली और क्लिंटन की है, फिल्म है जोड़ी ब्रेकर्स।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रांझणा से। जावेद अली, कीर्ति सगाथिया और पूजा के गाए इस गीत को संगीत से संवारा है एआर रहमान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेजी है। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सोना शारदा, दामिनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, सतीश मिगलानी, सीमा, शायना, विशाल और मिगलानी परिवार के सभी सदस्यों ने मलॉट कैंप पंजाब से अपनी फरमाइश भेजी है। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत।

इरशाद कामिल का लिखा एक और गीत आप सुनेंगे, चिन्मयी श्रीप्रदा और आतिफ असलम की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने। फिल्म है फटा पोस्टर निकला हीरो। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं अनिल कवचाले, नेहा फटसे, सीमा, सबीहा, पूजा, नेहा, सुषमा, स्मिता और उनके सभी साथी। इंदौर से ये पत्र आया है। पटेल नगर मलौट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीतारानी जाजौरिया, गगनदीप और बेबी आरजू ने भी अपना फरमाइशी पत्र हमें भेजा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर की फरमाइश आई है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता भी अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। तो आप सबकी पसंद पर हम सुनवाते हैं आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीप्रदा का गाया

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं कौसर मुनीर का लिखा गीत विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में। फिल्म है गोरी तेरे प्यार में और इस गीत को आवाज़ दी है नीति मोहन और कमाल खान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, कमलेश जयपुरिया, अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला, लालचंद्र मिश्र और नरेंद्र कुमार राम ने भिलाई और रायगढ़ से ये फरमाइश हमें भेजी है। जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की फरमाइश है। प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने गौतम नगर जिला नांदेड़ से अपना पत्र भेजा है। भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा की भी यही पसंद है।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकवाणी, जिसमें गीत संगीत चर्चा और रोजगार सूचनाएं शामिल होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा कृषि के साथ वानिकी के लाभ विषय पर ली गई भेंटवार्ता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, साथ ही होंगे बुंदेली समाचार, गीत संगीत और चर्चा शामिल रहेगी। सुर्खियों में कार्यक्रम रात 8:00 प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। रात 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा प्रसारित किया जाएगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित दिनकर कैंकिनी का ख्याल गायन। राग होगा सावनी बिहार। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01:30 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मालवी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपने मालवी लोकगीत सुने। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं शिखा शर्मा।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपने शिखा शर्मा और साथियों के गाए भक्ति गीत सुने। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है। पेश है चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अमित कुमार के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है तेरी कसम।

0: किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वर में आप सुनते हैं योगेश का लिखा गीत। संगीत गोविंद नरेश का है और फिल्म है हंसती खेलती।
1: Hey, hey.

अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों के स्वर में। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है सत्ते पे सत्ता।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। फिल्म शक्ति के लिए इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का था और फिल्म थी मशाल। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है काव्य पाठ। शब्द सागर कार्यक्रम में सुनते हैं डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ।
2: मेरी कविता का शीर्षक है कविता। जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, भू पर अधर्म की अति होती, भू पर अधर्म की अति होती, तब राम अवतरण लेते हैं। भू पर अधर्म की अति होती तब राम अवतरण लेते हैं, सीताएं तब जन्मा करती, सीताएं तब जन्मा करती, जब पाप घड़ों में भरते हैं, जब पाप घड़ों में भरते हैं, जब पर्ण कुटियों की सीताएं, जब पर्ण कुटियों की सीताएं सोने का लालच करती, तब तब रावण आ जाता है, तब तब रावण आ जाता है, सीताएं तभी हरी जाती, सीताएं तभी हरी जाती, फिर रावण राम युद्ध होता, राम कथा बन जाती है, फिर रावण राम युद्ध होता, राम कथा बन जाती है, पर क्रोच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है, पर क्रौच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है। रामायण और महाभारत साकेत और उर्वशी कथा, रामायण और महाभारत साकेत और उर्वशी कथा, यामा और हल्दी घाटी नई कविता की नई छटा, नई कविता की नई छटा, करुणा की आहें आँखों में आँखों से अश्रु बरसता हो, करुणा की आहें आँखों में आँखों से अश्रु बरसता हो, जन्मा करती तब ही कविता, जन्मा करती तब ही कविता, जब शिवा समर में लड़ता हो, जब शिवा समर में लड़ता हो, शब्दों की धार लिए नदियाँ जब सागर में मिल जाती हैं, शब्दों की धार लिए नदियाँ जब सागर में मिल जाती हैं, तब महाकाव्य बन जाते हैं कविताएं रास।

रचाती हैं, कविताएं रास रचाती हैं। कविता ही सीमाओं पर जब, कविता ही सीमाओं पर जब सैनिक मन में लहराती है, पाकिस्तानी आतंकी जन को गोली से मार गिराती है, गोली से मार गिराती है। कविता की अपनी अकथ कथा, इधर उधर कविता कविता, कविता की अपनी अकथ कथा, इधर उधर कविता कविता। करुणा से क्रोध जन्म लेता, ढलता चंदा सविता सविता, ढलता चंदा सविता सविता। ऐसे जन्मा करती कविता, वैसे जन्मा करती कविता, कविता ही बन जाती कविता, कविता कविता कविता सरिता, कविता कविता सरिता कविता। कविता से जोश उमड़ता है, भर जाता बाहु बाहु में बल, कविता में जोश उमड़ता जब, भर जाता बाहु बाहु में बल। भारत माता की रक्षा हित, तन का लोहू

जाती कविता, कविता कविता कविता सरिता, कविता कविता सरिता कविता, कविता से जोश उमड़ता है भर जाता बाहु बाहु में बल, कविता में जोश उमड़ता जब भर जाता बाहु बाहु में बल, भारत माता की रक्षा हित तन का लोहू करता कल कल, भारत माता की रक्षा हित तन का लोहू करता कल कल, मकरंद बना करती कविता, मकरंद बना करती कविता, जय हिंद बना करती निर्भय, जय हिंद बना करती निर्भय, वंदे मातरम हुआ करती, वंदे मातरम हुआ करती, कविता भारत माता की जय, कविता भारत माता की जय। मेरी अगली कविता का शीर्षक है उठो जागो। उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, पुराणों में समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए, पुराणों में समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए, कथाओं ने रचे रिश्ते बहुत से धर्म बतलाए, कथाओं ने रचे रिश्ते बहुत से धर्म बतलाए, उन्हीं कर्मों उन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली, उन्हीं कर्मों उन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली, भिखारी बन गया राजा जनों ने राज्य श्री पाली, भिखारी बन गए राजा जनों ने राज्य श्री पाली, नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की महिमा, नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की महिमा, महाभारत रचा जिसने वहाँ थी कर्म की महिमा, महाभारत रचा जिसने वहाँ थी कर्म की महिमा, कथा नायक भले हों कृष्ण खलनायक बहुत से थे, कथा नायक भले हों कृष्ण खलनायक बहुत से थे, कोई कम तो नहीं था पर धनुषायक बहुत से थे, कोई कम तो नहीं था पर धनुषायक बहुत से थे, समय ही है सभी को कर्म का प्रतिफल दिखाता है, समय ही है सभी को कर्म का प्रतिफल दिखाता है, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा, समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा, कई युद्धों में जन को क्रांति भी करते हुए देखा, बहा जब पाप का दरिया तभी जागृति यहाँ आई, हिलोरें ले रही जन में वहाँ थी क्रांति ही छाई, हिलोरें ले रही जन में वहाँ थी क्रांति ही थाई, उठे हुंकारते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली, उठे हुंकारते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली, गिरे और मर गए फिर भी, गिरे और मर गए फिर भी विजय श्री प्राप्त कर डाली, विजय श्री प्राप्त कर डाली, दुर्गावती लक्ष्मी सदिश कुछ वीर बालाएं, समय ने दृढ़ अजयों को वहां गिरते हुए देखा, समय ने दृढ़ अजयों को वहां गिरते हुए देखा, परम सामान्य जन को शीर्ष पर चढ़ते हुए देखा, सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला, सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला, कई के कर्म तो बदले कई का धर्म भी बदला, गुलामी में कई देशों ने सदियां तक गुजारी है, गुलामी में कई देशों ने सदियां तक गुजारी है, कई पीढ़ी रही मरती बढ़ी वह पर नहारी है, बढ़ी वह पर नहारी है, चलें कर्तव्य पथ पर तो बहुत राहें भी मिल जाएं, चलें

0: भी मिल जाएं, करें हम धर्म पालन तो बहुत बाहें भी मिल जाएं, करें हम धर्म पालन तो बहुत बाहें भी मिल जाएं, समूची मेदनी अपनी समूचा गगन हो अपना, समूची मेदनी अपनी समूचा गगन हो अपना, जगत परिवार हो अपना हमारा सत्य हो सपना, जगत परिवार हो अपना हमारा सत्य हो सपना, जहाँ समता की सरिता अनवरत निर्द्वंद बहती हो, जहाँ समता की सरिता अनवरत निर्द्वंद बहती हो, बिना कुछ भेद के हर जीव जन में शांति रहती हो, बिना कुछ भेद के हर जीव जन में शांति रहती हो, परम कर आत्मबल हम बेगवत तूफान बन जाएं, परख कर आत्मबल हम बेगवत तूफान बन जाएं, तिमिर को बेध कर हम मनुज से भगवान बन जाएं, अधेरा चीर कर हम मनुज से भगवान बन जाएं, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शब्द सागर में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विजयनंद तिवारी का काव्य पाठ, और अब सुनते हैं वसंत सागर गायक को।
2: नमस्कार। कविता का शीर्षक है धरती का आंचल है जल। धरती का आंचल है जल और प्यास इतनी आदिम कि बुझती नहीं। धरती ने मेघों से गुहार लगाई, गुहार लगाई पहाड़ों से मैदानों से, गुहार लगाई कि खोलो नदियों के कल्ले सोते, झीलों की झिर्री खोलो, खोलो कि प्यासा न रहे जीवन, धरती पर पसरा रहे जल कि जैसे फैला हो माँ का आँचल, धरती का आँचल है जल। अगली कविता का शीर्षक है आज मैंने देखा एक सूखा नलकूप। आज मैंने देखा एक सूखा नलकूप, आज ही देखी पालक मुरझाई हुई, और देखा एक केला रखा रखा पिचक गया था। आज ही मैंने देखी पालक मुरझाई हुई और देखा एक केला रखा रखा पिचक गया था, देखा कि भीतर पानी न हो और छुअन न हो पानीदार, जंग खा ही जाता है भीतर चाहे जितना हो लोहा। अगली कविता का शीर्षक है जरूरी है पहिया होना। बहुत जरूरी होता है गतिमान होना पहिया हो जाना। बहुत ज़रूरी होता है गतिमान होना पहिया हो जाना, कमीज से टूटा बटन पहिया बन भाग नहीं पाता है इधर उधर, धर दबोच टांग दिया जाता है पुनः मजबूत, फिर पिट पिट कर खुद के टूट कर बिखर जाने पर कमीज के फटते दम तक, हिसाब किताब की सनक में, हिसाब किताब की सनक में क्षण क्षण खन खन खनकते सिक्के, वितरागी हो जाते हैं कुछ अचानक, आदमी के हाथों छिटक कर पहिया बन मुक्ति की राह पर अग्रसर, डूब जाते हैं गहरी नाली किसी सिवेज में, ओझल हो जाते हैं गहरे किसी दर्रे दरार, आदमी की उघाड़ और हिसाब किताब की खनकती सांस संभाल के कई किस्से कहानियाँ अक्सर मैं सुनता हूँ, भागता हूँ पीछे पीछे पहिया बन भागते हुए बटन और सिक्कों से। अगली कविता का शीर्षक है पिता से सुंदर। वह अपने पिता से कहीं ज़्यादा सुंदर था, चॉकलेटी फिल्मी अभिनेता सा चेहरा नवनीत, रुई की मानिंद मुलायम हाथ चांदी जैसे उजले पाँव, स्यो फल बोल दें तो हर्ज नहीं ऐसे कपूल, घर से कार और कार से दफ्तर तक सब वातानुकूलित, मगर एक फांस थी जो हरदम चुपती थी उसे कि पिता से उसके नाक नक्श यूं तो मिलते हैं बहुत कुछ, कभी पिता से ऊंचा लेकिन वह हो न सका पिता सा सुंदर। मसलन पैदल चलते पिता

0: को काला ढांड बना दिया था आग उगलते सूरज ने, पर सूरज को उन्होंने कभी उलाहना नहीं दिया, बल्कि नमस्कार करते रहे सिर झुकाकर जीवन भर। सर्दियों में बनियान, बुशर्ट और फटी स्वेटर का पीठ का हिस्सा कर लेते थे छाती पर, और बड़ी गर्मजोशी से कहते, ठंड का बार कभी नहीं चलता ढकी छाती पर। गोदड़ी ज़्यादा गर्म होती है बनिस्बत तीन तीन रजाइयों के, पुराने छाते के सुराखों से अलग गिरती बारिश की धार। किंतु तरबतर पिता इस बात पर खुश रहे सदा कि कुछ न होने से बेहतर है कुछ होना। सिटी बस की पायदान पर पांव रखते रखते हर बार खुद को रोक लेते हैं और हाथों में मेथिया पालक की गड्डी लिए चप्पल फटकारते पिता घर लौट आते हैं मुस्कुराते हुए। पर उसे बार बार खोट नज़र आती है अपनी सुंदरता में। हालांकि उसे कितना तो समझाया भाई बहनों दोस्तों ने, समझाया कि बाप से बढ़कर होता है बेटा, कि कहीं वह ज़्यादा सुंदर है उसके पिता से। हालांकि उसे कितना ही समझाया भाई बहन दोस्तों ने, समझाया कि बाप से बढ़कर होता है बेटा, कि वह कहीं ज़्यादा सुंदर है उसके पिता से, लेकिन वह हर बार ठंडी सांस छोड़ता और कहता, पपीते के बीज होता है, हरगिज़ तो नहीं हो सकता काली मिर्च का दाना।
1: वसंत सकरगाई के काव्य पाठ के साथ ही कार्यक्रम शब्द सागर अब समाप्त होता है। आकाशवाणी भोपाल से अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज़ में। फिल्म है श्रीमान सत्यवादी।

और अब सुनते हैं मुकेश की ही आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है योगेश ने। फिल्म है पल दो पल का साथ।

0: मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म छोटी सी बात का गीत। इस गीत को लिखा था योगेश ने और संगीत सलिल चौधरी का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं धारावाहिक जादूगर को सलाम। आज प्रस्तुत है इसकी 12वीं कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 12वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी, नसीहतों का दफ्तर का नाट्य रूपांतरण। बाबू अक्षय कुमार पटना के जाने माने वकील थे। बड़े वकीलों में उनकी गिनती हुआ करती थी। बस ये समझा जाए कि राय बहादुरी के खिताब के करीब पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई खानदानी रईस थे। इनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता। इनके संघर्ष और कामयाबी की मिसालें शहर में चर्चा का विषय थीं।
1: अरे बीए में थर्ड डिवीजन से पास हो गए और वो भी 2 साल में, तो कौन सा तीर मार लिया। उन्हें देखो जिन्हें पढ़ने के लिए लालटेन की रोशनी भी नसीब नहीं थी। सड़क पर लगे लैंप शेड की रोशनी में पढ़ा करते थे और कभी कभी तो जुगनू की रोशनी में भी सबक याद किया करते थे। जी हाँ, मैं शहर के मशहूर वकील बाबू अक्षय कुमार की ही बात कर रहा हूँ। और एक आप हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हुए भी कुछ नहीं पढ़ा जाता।
2: उनके घर में तो खाने तक को भी नहीं था।
1: नसीब लेकर कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। श्रीमती जी, अपने लाडले को समझाएं, उसके लिए जिस्म को तपाया जाता है, गलाया जाता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आदमी कुछ बन पाता है। बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता, पेड़ नहीं फूटता, पत्ते नहीं लगते, फल नहीं आता।
0: बाबू अक्षय कुमार का शुरुआती सफर तो संघर्षमय रहा ही। वकालत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, लेकिन शीघ्र ही परिश्रम और लगन से वो समय भी आ गया जब वही काला कोट कामधेनु साबित हुआ। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से उन्हें वो दर्जा मिलने लगा। बड़े बड़े जलसों में सभापति बनने का न्योता आने लगा। ये अक्षय कुमार के जीवन का वो समय था जब सारी खुशियां उनके कदम चूम रही थीं।
3: सभी मेहमान आ चुके हैं, मगर अभी तक हमारे खास मेहमान

0: शिव बाबू नहीं दिखाई दिए?
1: जी हाँ, उन्हीं का इंतजार हो रहा है।
2: अरे साहब, किसी मुकदमे की तैयारी में उलझे होंगे।
3: हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज के जलसे की पहली स्पीच तो उन्हीं से ही शुरू होनी है।
0: अरे लीजिए, आ गए वकील साहब, आइए आइए। शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर।
4: दोस्तों, आज की महफिल में हमारे खास मेहमान हैं हम सबके हर दिल अजीज, हमारे प्यारे दोस्त और शहर के जाने माने वकील अक्षय कुमार जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहां मंच पे आकर हमारे नौजवानों के लिए दो शब्द कहें और ये बताएं कि कैसे संघर्ष और परिश्रम से उन्होंने जीवन का ये सफर तय किया और इस ऊंचाई तक पहुंचे। अक्षय कुमार जी।
5: दोस्तों, आप सभी और घोष बाबू सम्मान के पात्र हैं जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूं कि कुछ लोग भाग्य को बनाते हैं और कुछ लोगों को भाग्य बना देता है। मैं पहले किस्म के लोगों में से हूं। हमारे शहर, समाज और देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें भाग्य पर नहीं बल्कि स्वयं के कर्म और कड़े परिश्रम पर विश्वास करना होगा। मैं सभी नौजवानों में यही जज्बा देखना चाहता हूं।
1: वाह वाह, कितना अच्छा बोलते हैं अक्षय बाबू।
0: इनकी शादी हो गई है क्या?
1: अभी नहीं, जीवन की भागदौड़ में शादी करने की फुर्सत ही कहाँ मिली अभी तक।
0: लेकिन यह सही समय है, अक्षय बाबू को अब विवाह कर लेना चाहिए।
5: समय बीतता रहा, अदालत से कचहरी, कचहरी से घर, घर से महफिल और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब हर कामयाब इंसान की तरह अक्षय बाबू के जीवन में भी उनके हम सफर का आगमन हुआ। हेमवती बेहद हसीन और हसमुख औरत थी।
3: जाने मन, मैं आपसे कुछ पूछूं, इजाजत है?
5: हाँ जाने मन, हम भी तो यही चाहते हैं कि कुछ आप अपनी कहें, कुछ हम अपनी कहें।
3: हम चाहते हैं कि आज शाम को हम लोग नुमाइश देखने चलें।
5: अच्छा।
3: शादी हुए हमें इतना समय गुजर गया, देखो ना, हम कहीं घूमने फिरने बाहर गए ही नहीं अब तक।
5: अब बात यह है प्रिय कि काम की व्यस्तताओं में कहीं घूमने फिरने का ख्याल ही नहीं आया। और नुमाइश, नुमाइश में क्या रखा है? कितनी भीड़ भाड़ होगी वहाँ। मेरा तो दम घुटता है ऐसे माहौल में। क्यों ना हम घर में ही कोई आयोजन रख लें, मेरा मतलब है कि मनोरंजन कर लें।
3: ठीक है, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा, रहने दीजिए।
5: अरे अरे अरे अरे, लगता है आप बुरा मान गई। अरे सुनो तो, चली गई। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी है। अरे कौड़ियों को दांत से पकड़ना पड़ा है, वो तो मैं बालों में खिजाब भी इसलिए लगाता हूं कि मुझे इनका कुछ ख्याल आ जाता है। मेरी नजर में यह फिजूल खर्ची से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है प्रियवर, चलते हैं नुमाइश के लिए, आप तैयार रहना।
3: रहने दीजिए रहने दीजिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है। मेरी बहनों को देखो, कितना खुलकर खर्च करती हैं, आए दिन खरीदारी और सैर सपाटे करती हैं। उनके पति तो उन्हें मना नहीं करते, और एक हमारे साहब है।
5: जान तुम मुझे समझ नहीं सकी। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि कल हमें घोष बाबू की पार्टी में तो जाना ही है,

0: क्यों ना कल ही चला जाए। और हाँ, याद आया, वहां आपने भी तो ड्रामे में हिस्सा लिया है ना?
1: क्या मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने 4 पैसे बचाने की फिराक में हैं? साहब, मैं आपकी खातिर ही तो घूमने के लिए कह रही थी। मैं आपके लिए कुछ खरीदना चाहती थी और उसके लिए मैंने कुछ रुपए रखे हुए हैं।
0: ये तो समझती हैं कि पैसा जैसे पेड़ पर लगता है। हेमू, आज तुम बलाह की खूबसूरत लग रही हो। ये बालों में जूड़ा, ये गजरा, अरे वाह वाह वाह वाह, अरे लगता है नाटक की तैयारी पूरी हो चुकी है। कह देता हूं, आज तो आप सबके दिलों पर बिजलियां गिराएंगी, बिजलियां। बड़ी कीमती साड़ी है, जरूर मायके सिलाई होंगी, और बनाओ श्रृंगार पर भी काफी खर्च हुआ होगा। सब बेकार का खर्चा है, पर किया क्या जाए, इनसे मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। कहीं फिर से बुरा मान गई तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सब्र से ही काम लेना चाहिए। जी चाहता है प्रिय, तुम्हारा हाथ चूम लूं।
1: जाइए भी, जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ। ड्रामे के लिए देर हो रही है। हाँ। अरे, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना? जनाब तारीफ तो ऐसे कर रहे थे जैसे खर्च करने के लिए तपाक से मेरे हाथ में रुपए थमा देंगे, लेकिन मैं भी इनसे एक कदम आगे ही हूँ। साहब को जल्दी ही पता लग जाएगा।
2: वाह वाह, क्या अभिनेत्री है, शकुंतला के रोल में जान ही डाल दी।
3: इन्हें तो फिल्मों में अभिनय करना चाहिए।
4: बड़े खुश नसीब हैं, ऐसा नगीना उनकी अंगूठी में जो जड़ा है।
3: लेकिन साहब, इतना महंगा नगीना और ऐसे कंजूस की अंगूठी में, वो क्या जाने इसकी कीमत।
5: साहब, गोशाल कंपनी से कोई महाशय आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
0: ठीक है, अंदर भेजो।
2: साहब, ये 200 रुपए का बिल है।
0: बिल? कैसा बिल?
2: कल मेम साहब ने हमारी दुकान से कुछ खरीदारी की थी, उसी का बिल है।
0: ओह, हाँ। अच्छा, तो कल की चमक दमक, ये बिल उसका खमियाजा है। मन मार कर अक्षय बाबू को सुंदर बीवी के इन अतिरिक्त खर्चों का बोझ उठाना ही पड़ता था। बीवी की खातिरदारी के लिए थोड़ा बहुत खर्चा अपने ऊपर भी करना पड़ता था। हालांकि ये सब उनके उसूलों के सख्त खिलाफ था। आए दिन किसी न किसी अनजाने खर्च का बोझ उनके सिर पर सवार रहता था। एक रोज वकील साहब जब कचहरी से लौटे,
1: सुनिए जी, श्रीमती किचलू आई थी और ये निमंत्रण पत्र दे गई हैं।
0: अच्छा, लाओ दिखाओ तो।
1: हाँ, ये लीजिए।
0: अच्छा है, निमंत्रण पत्र तो बड़ा महंगा छपाया है। अच्छा, अपने छोटे भाई के बीए में पास होने के शुभ अवसर पर आप सभी को सपरिवार प्रीति भोज में आमंत्रित करता हूं। लीजिए बताइए, ये भला बीए पास करने की खुशी में इतना बड़ा आयोजन करने की क्या जरूरत है? मेरा भाई अगर बीए में पास होता तो मैं तो उसकी पीठ ठोंक कर कहता कि शाबाश, खूब मेहनत की। हजारों लोग हर साल बीए पास करते हैं, अजय इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा चलो, मान भी लिया जाए, लेकिन लेकिन ये ड्रामा खेलने का भी कार्यक्रम, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है।
1: क्यों, इससे बेहतर खुशी का और क्या मौका हो सकता है?
0: मेरी जान, डॉक्टर साहब समझदार आदमी है, ये उन्हें क्या सूझी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि खुशी तो हृदय का तत्व है, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है।
1: ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना।
0: जाना पड़ेगा क्यों?

0: क्या वादा कर लिया है?
1: अब देखिए ना, श्रीमती किचलू कितना आग्रह करके गई हैं।
0: तो मेरी जान, तुम एक काम करो, जैसे वो तुम्हारे घर आई, ऐसे ही तुम भी कभी उनके घर चली जाना।
1: क्या
0: इसमें परसों जाने की क्या जरूरत है?
1: अरे जरूरत है भाई, अब आपको ही बता दूं, मुझे नायिका का पार्ट दिया गया है और मैंने उसे मंजूर भी कर लिया है। लगता है साहब ये खबर सुनकर खुश नहीं हुए हैं।
0: फिर वही ड्रामा। मतलब ये हुआ कि ये ड्रामा खेलेंगी और घोषाल एंड कंपनी फिर से मुझे कम से कम 200 रुपए की चपत लगाएगी। मामला बेहद गंभीर है, वक्त की नजाकत को समझते हुए इस बात की सख्त जरूरत है कि अभी से रोकथाम कर दी जाए। ये बला फिर से तुमने अपने सर ले ली। अपनी तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया तुमने, अब ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे इस प्रेमी को कितनी परेशान करती है। मेरी जान, इस किस्म के जलसे नैतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक होते हैं। इन्हीं मौकों पर दिलों में ईर्ष्या के बीज बोए जाते हैं और यहीं पीठ पीछे बुराई करने की आदत पड़ती है। अरे ऐसे ही जलसों में तानेबाजी और नोकझोंक की नौबत आ जाती है कि फला लेडी हसीन है इसलिए उसकी दूसरी बहनों का फर्ज है कि उससे जलें। मेरी जान, ईश्वर ना करे कि कोई किसी से जले। मुझे तो डर है कि तुम्हारा दाहक सौंदर्य कितने ही दिलों को जलाकर राख कर देगा। इसलिए प्यारी हेमू, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं इसे पसंद नहीं करूंगा तो तुम हरगिज इसे स्वीकार नहीं करती।
1: साहब की दलीलें तो सुनिए, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे भी कम ना आका जाए। देखिए जी, मैंने तो यही सोचकर मंजूर कर लिया था कि कपड़े तो सब पुराने ही काम आ जाएंगे और ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होगी। बस कुछ घंटों की तकलीफ जरूर है और एहसान मुफ्त में हो जाएगा। अरे डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना? मगर अब नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मजबूरी उन्हें अभी लिखे देती हूँ। सचमुच क्या फायदा बेकार की उलझनों से।
0: कपड़े सब पहले के ही काम आ जाएंगे और कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। चलो, दिल से एक बड़ा बोझ तो उतरा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि मामला ऐसा है तो क्यों मैं इतनी माथापच्ची करता। अरे नहीं नहीं हेमू, मेरी जान, मेरी ये मंशा हरगिज नहीं है कि तुम जाओ ही मत। अब देखो ना, जब तुमने निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया है तो उससे मुकरना अच्छी बात नहीं मालूम होती। मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि जहां तक मुमकिन हो ऐसे जलसों से दूर ही रहना चाहिए।
1: आप फिक्र ना करें, अब नहीं जाऊंगी, तुम्हारी बातें मैंने गांठ बांध ली हैं।
2: दूसरे दिन शाम को अक्षय बाबू बगीचे में अपनी एक खास जगह पर फूलों के खिलने का आनंद उठा रहे थे। अक्सर काम से फुर्सत मिलते ही वो बगीचे में टहलने आया करते थे। तभी एक बूढ़ा उन्हें एक रंगीन और खुशबूदार लिफाफा थमा गया।
0: लिफाफा? देखें तो किसका खत है, क्या लिखा है? मेरे प्यारे अक्षय बाबू,
1: आप इस नाचीज के खत को पढ़कर बहुत हैरत में आएंगे, मगर मुझे आशा है कि आप मुझे माफ जरूर कर देंगे। आपके स्वभाव और आपके रहन सहन के तरीके सुन सुनकर मेरे दिल में आपके लिए प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया है। आपकी सादगी ने मुझे मोहित कर लिया है, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुद्दतों की सोई।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा, मैं कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है।
1: तो मौजूद है जिसकी मेरी निगाह में ज्यादा इज्जत है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपने रूप की जरा भी चिंता होती तो शायद मैं बहुत प्रसन्न होती, मगर मैं रूप की भूखी नहीं हूं। मुझे तो सीने

0: में सच्चा दिल रखने वाले एक इंसान की चाहत है और मैंने उसे आप पे देखा है। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप कल रात को डॉक्टर किचलू के बंगले पर तशरीफ ले आएं। मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। वहां अशोक के पेड़ के नीचे हरे कपड़े पहने मैं आपके लिए आंखें बिछाए बैठी नजर आऊंगी।
1: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा। मैंने कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है। ना जाने चेहरा कैसा दिख रहा होगा। क्या करूं? हाँ, क्यों ना हौस के पानी में अपनी सूरत देखी जाए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहां तो चेहरा साफ नजर ही नहीं आ रहा है। फिर तो घर ही चलना पड़ेगा, वहां आईना देखता हूं। ये क्या, हजामत साफ नहीं है और ये कमबख्त साफा भी तो ठीक तरह से नहीं बंधा है। मगर इतना तो है कि मुझे कोई बदसूरत तो नहीं कह सकता। जरूर ये कोई ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी महिला है, वरना मामूली औरतों की निगाह में तो दौलत और रूप के सिवा कुछ और होता ही नहीं। लेकिन मेरा फूहड़पन शायद ही किसी स्त्री को पसंद आए। मुझे अब इसका ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। आज मेरे भाग्य जाके बड़ी मुद्दत के बाद मेरी कद्र करने वाला कोई सच्चा जौहरी नजर आता है। भारतीय स्त्रियां तो शर्म हया की पुतली होती हैं। जब तक अपनी दिल की हलचलों से मजबूर ना हो जाएं, वो ऐसा खत लिखने का साहस ही नहीं कर सकती। इन्हीं ख्यालों में बाबू अक्षय कुमार ने रात काटी। पलक तक नहीं झपकी। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे तक बाबू अक्षय कुमार ने शहर की सारी फैशनेबल दुकानों की सैर की। दुकानदार हैरान थे कि साहब यहां का रास्ता कैसे भूल गए। गरज ये कि आज उन्होंने बड़ी बेदर्दी से रुपया खर्च किया और जब घर चले तो फिटन पर बैठने की भी जगह नहीं थी।
2: अरे, आज सवेरे से कहां गायब रहे और ये माथे पर पसीना कैसा?
1: अब हाँ, जिगर में कुछ दर्द था, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ चला गया था।
2: तुमने तो मुझसे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। जिगर का दर्द एक भयानक रोग है।
1: अरे, डॉक्टर साहब ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है।
2: इसकी दवा डॉक्टर किचलू के यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। मालूम नहीं डॉक्टर चड्ढा बीमारी की तह तक पहुँचे भी हैं या नहीं।
1: अक्षय कुमार ने हेमवती को चुपती निगाहों से देखा। खाना खाकर अपने कमरे में जा लेटे। शाम को जब वो पार्क, घंटाघर और आनंद बाग की सैर करते हुए फिटन पर जा रहे थे तो उनके होठों पर लाली और गालों पर जवानी की गुलाबी झलक मौजूद थी। आज उन्हें पहली बार जीवन में अपने रूपवान ना होने पर दुख हो रहा था। आज वो अपनी पतली नाक के बदले अपना खूबसूरत गाउन और वकालत की डिग्री सब कुछ देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर किचलू शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक थे। पार्टियां देना तो उनका जैसे शौक था। बंगला क्या था, शान और शौकत का जीता जागता नमूना था। दूर तक फैले अशोक के पेड़, सजे धजे फाटक, बरामदे की लंबी मेहराबें, सरू के पेड़ों की कतारें, बल्ब की रोशनी से चकाचौंध बंगला भव्यता का संकेत दे रहा था। मुख्य कक्ष में ओपन थिएटर और उससे सटा बार, अभिप्राय ये कि आधुनिक सुख सुविधाओं से सजा धजा बंगला था।
3: अरे वकील अक्षय कुमार, आज ये कूलर में फूल कैसे लग गए?
4: आइए आइए भाई, आज तो आप एकदम बाके नौजवान लग रहे हैं, क्या बात है
5: भाई। आज वकील साहब को क्या हो गया है, ये चमक दमक माजरा क्या है
6: जी जन?

0: माजरा कैसा? अपने अक्षय बाबू किसी से कम थोड़ी ही ना है। रुपया है, मान सम्मान है, इज्जत है और खूबसूरत बीवी है, क्या नहीं है इनके पास।
1: माफ करना, बात काट रहा हूँ। भाभी जी की संगत का असर रंग लाया है। बीवी अगर हसीन हो, जवान हो, ऊपर से अदाकारा हो, तो उसका जोड़ बिठाना कोई मामूली बात है क्या? क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते, क्यों अक्षय बाबू?
2: कैसे कैसे मस्खरे महफिल में जमाए, इनसे फुर्सत मिले तो उन मोहतरमा को ढूंढा जाए। वहां देखूं उस अशोक के पेड़ के नीचे, मगर वो है कहां? हाँ, आधा घंटा हो गया, चलो अब नाटक भी शुरू होने वाला है, वहीं बैठा जाए।
3: क्या कातिल लताएं हैं।
1: हाय, शकुंतला के बेश में तो ये अप्सरा हैं।
3: अजी साहब, फलक के चांद और धरती के चांद में कौन ज्यादा हसीन है, कहना थोड़ा मुश्किल है क्या अक्षय बाबू?
2: ये क्या, ये तो हिम्मती है। इसने तो मुझसे कहा था कि नाटक में नहीं जाएगी, इन्होंने तो मेरी नसीहतों और अपने वादों और यहां तक कि मेरी खुशियों का भी ख्याल नहीं रखा। हे भगवान, यहां मेरा दम घुट रहा है, बाहर चलता हूं, उन मोहतरमा को तलाशता हूं। रात के 12 बजने को आए, उनका कहीं पता नहीं। मैं भी कैसा अहमक हूं, एक औरत के चकमे में आ गया, ना जाने हेमवती भी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अरे वो पेड़ के नीचे, वो सुंदरी, अरे हाँ, वो तो मुझे ही इशारे से बुला रही है। हाँ, चलता हूँ वहाँ। ऐ रूपवती, तुम्हारी इस कृपा के लिए दिल से मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हें देखने के शौक में मेरी आंखें पथरा गई हैं। अगर तुम्हें कुछ देर तक और नहीं मिल पाता तो शायद मेरी जान ही निकल जाती। कल शाम से ही मेरे दिल की जो हालत है, उसका जिक्र करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपने हुस्न के जलवे दिखाइए, ये पर्दा हटा दीजिए, चेहरे से घूंघट हटा दीजिए। ये क्या, अरे अरे अरे हेमवती, तुम, ओ तो ये सब तुम्हारी शरारत थी। बस बस हेमवती, बस अब मुंह से कुछ मत कहो, मैं खुद से बेहद शर्मिंदा हूं। हाँ हेमो, तुम जीत गई और मैं हार गया, और ये हार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा।
4: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 12वीं कड़ी, नसीहतों का दफ्तर। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, सतीश कक्कड़ और अशोक शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.2 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 के अवसर पर सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल लिसाम्मा पीवी ने सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को बधाई दी। मेजर लिसाम्मा ने अथक परिश्रम करते हुए निरंतर सेवा करने और अत्यंत करुणा और सहानुभूति के साथ रोगियों की देखभाल करने के लिए उनकी सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। और IPL मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

हर मुश्किल आसान हो जाती है जब इरादों में जान होती है। वक्त चाहे कितना भी सख्त हो, हौसला अगर पक्का हो तो रास्ता भी अपना बनता है, क्योंकि जो अपनी सोच बदल देता है वो अपनी दुनिया बदल देता है। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। दोस्तों, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, आशा करते हैं कि आप इस भीषण गर्मी में अपना ध्यान रख रहे होंगे। पानी पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि धूप में बाहर ना जाएं, भीषण गर्मी से बचें और अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में। चर्चा करेंगे नई दिशा, वैश्विक आतंकवाद की स्थिति, नक्सलवाद में गिरावट और विकास की नई राह पर, और साथ ही साथ हरित आदतें कैसे हम युवाओं की नई पहचान बन रही हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए

दोस्तों, धुरंधर से अभी आपने ये गीत सुना, संगीतकार शाश्वत सचदेव और रोशन और गीतकार इरशाद कामिल और साहिल उद्यानवी। आप सभी सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्याचार्य। दोस्तों, पौधे पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। हम जो हवा लेते हैं उसका 80% ऑक्सीजन पौधों से आता है और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का 90% हिस्सा वनस्पतियों पर निर्भर करता है। पौधों के इसी महत्व को समझते हुए और उनके स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल आज ही के दिन यानी कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि पौधों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण की स्थिरता से जुड़ा है। बात करें चुनौतियों की, तो जलवायु परिवर्तन, बीमारियां, जैव विविधता में बदलाव से ये सब चुनौतियां हम सभी देख रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इसीलिए आज के दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है और इस साल की थीम है पादप स्वास्थ्य

सुरक्षित व्यापार और डिजिटल नवाचार, प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल इनोवेशन। एक छोटी सी कविता से इस थीम को और बेहतर समझा जा सकता है। जड़ सुरक्षित तो जग सुरक्षित, हवा की खुशबू मिट्टी का मान, पौधों में बसती है सबकी जान, पर आज खामोश खड़ी है हरियाली, बीमारियों ने चुराई है इसकी लाली, जो बीच सरहद पार से आते हैं संग अपने अनचाहे दुश्मन लाते हैं। सुरक्षित व्यापार का अब संकल्प ले हम, फसलों की आंखों की आंखों में ना हो नम, अब हाथ थामेंगे नवाचार और विज्ञान का, रास्ता खुलेगा तरक्की और मुस्कान का, डिजिटल नजर से सब फसलें पहचानी जाएंगी, बीमारी आने से पहले ही हार मान जाएगी, सिर्फ एक दिन नहीं ये हर पल का है वादा, पेड़ लगाएंगे हम जरूरत से भी ज्यादा, पेड़ लगाएंगे हम जरूरत से भी ज्यादा। दोस्तों 2026 का ये पैगाम याद रखना है कि पादप स्वस्थ रहेगा तो ही हम अपना जीवन सफल बनाएंगे। पौधे बोल नहीं सकते लेकिन उनकी खामोशी में ही हमारा भविष्य छिपा है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक वादा है कि हम अपनी धरती को हरा भरा रखेंगे, क्योंकि अगर जड़ सुरक्षित तो जग सुरक्षित। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत, केदारनाथ से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में।

आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका शीर्षक है नई दिशा, वैश्विक आतंकवाद की स्थिति, नक्सलवाद में गिरावट और विकास की नई राह, और उन प्रयासों की जो हमारे आदिवासी और दूर दराज क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। भारत में सकारात्मक बदलाव, नक्सलवाद में गिरावट। अब अगर हम भारत की ओर देखें तो एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। एक समय था जब नक्सलवाद देश के कई हिस्सों में गंभीर चुनौती बना हुआ था। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वर्षों की रणनीति, सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और सरकार की विकास उन्मुख नीतियां हैं। आत्मसमर्पण हिंसा से विश्वास की ओर। दोस्तों, इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसमर्पण। हजारों नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। सरकार ने उन्हें पुनर्वास, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया है। ये दर्शाता है कि जब अवसर और विश्वास मिलता है तो बदलाव संभव है। विकास की नई किरण। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तेजी से विकास हो रहा है। नई सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है, जिससे गांव शहर की दूरी कम हो रही है। स्कूल और अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर लगातार सुधर रहा है। पुनर्वास और सशक्तिकरण का एक नई शुरुआत। सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत पूर्व नक्सलियों को घर और जमीन दी जा रही है, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल उनका जीवन बदल रहा है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक माहौल बन रहा है। आम नागरिक की भूमिका। साथियों, किसी भी समाज में स्थायी शांति केवल सरकार या सुरक्षा बलों के प्रयासों से नहीं आती, उसमें आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमें चाहिए कि हम अफवाहों से दूर रहें, अपने आसपास जागरूकता फैलाएं, युवाओं को शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों से की ओर प्रेरित करें। आज की चर्चा ये स्पष्ट है कि जहां एक और दुनिया के कुछ हिस्सों में आतंकवाद अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, वहीं भारत में नक्सलवाद जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा रहा है। ये बदलाव हमें उम्मीद देता है कि सही दिशा, मजबूत इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयासों से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित शांत

दोस्तों, शंकर महादेवन की आवाज़ में भी आपने गीत सुना लक्ष्य से। और अब हम बात करने वाले हैं हरित आदतें। जब युवा इन आदतों को अपनाते हैं तो वे समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरते हैं। आज की युवा पीढ़ी यह समझती है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ेगा, इसीलिए वो सिर्फ ये सारी चीज़ें पढ़ते नहीं हैं बल्कि अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करना, सुरक्षित भोजन, प्राकृतिक खेती और आहार का, ये सब युवा ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं ने अपनी कूल दिखने की परिभाषा को बदल दिया है। प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ, स्टील स्ट्रॉ का उपयोग करते हैं, कपड़े के बने बैग्स का यूज़ करना, शहर में मिट्टी के घरों को बढ़ावा देना, ये सब युवा सोशल मीडिया से देखते हैं। और आजकल सस्टेनेबल लिविंग एक ट्रेंड भी बन चुका है, काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये डिजिटल क्रांति हरित आदतों को घर घर तक पहुंचा रही है। हरित आदतें युवाओं की एक ऐसी नई पहचान है जो ये दर्शाती है कि वे आने वाली पीढ़ी के प्रति कितने गंभीर हैं। जब एक युवा हाथ में कपड़े का बैग लेकर निकलता है या पौधारोपण की पहल करता है तो वह केवल पर्यावरण नहीं बचा रहा होता बल्कि एक नए समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की नींव रख रहा होता है। छोटे बदलाव ही आगे जाके एक बड़े बदलाव लेकर आएंगे। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करेंगी। अब वक्त हो चला है महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। पद की संख्या है 11,127। आवेदन देने की अंतिम तिथि है 14 जून 2026। अधिक जानकारी आप rrbapply.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर भी। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म ढिशुम से।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: कवि शिव राग तेलंग।
9: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: पुलिस?
3: मिस सीमा
5: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
5: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
5: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बच जाओगे।
5: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
5: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
10: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में है। अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत रॉक स्टार फिल्म से लिया गया है। आवाजें हैं मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की। इर्शाद कामिल के बोलों को संगीतबद्ध किया ए आर रहमान ने।

कार्यक्रम का अगला गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ है, धुन बनाई AR रहमान ने, अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। इस गीत को हमने लिया तमाशा फिल्म से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत।

0: अलका याग्निक और अरिजीत सिंह के आवाज़ों में गाए तमाशा फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय शाम के 5:55 हुए हैं। लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: na sansani na sansani na sansani na uttejna na uttejna na shor din ra na shor din ra na shor din ra chori chori kiya re nahi ahankar केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस अदालत में 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही समाधान

प्रावधान किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व के अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
1: तो इसे जरा

0: विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है।
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है।
0: जी।
1: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
1: जी
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: आ जी

0: के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से, चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखू। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका। हाँ
2: हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,

0: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
1: जी
0: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: कौन है भाई, अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
0: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
0: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है।
1: जी।
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
0: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक
4: में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने

0: के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
2: इन्हें हमारा सलाम।
1: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
3: साथियों नमस्कार।
1: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
3: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
1: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
3: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
1: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
3: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
1: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
3: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
1: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
3: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा।

0: का था। और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं।

0: वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
5: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
6: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत जूली फिल्म का है, जिसे आवाज़ दी किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल संगीत राजेश रोशन का।

है ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है।

आनंद फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का लिखा हुआ, संगीत तैयार किया सलील चौधरी ने, आवाज़ लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लिखा है इंदिवर ने। धुन तैयार की कल्याण जी आनंद जी ने, किशोर कुमार की आवाज़ है और इस गीत को हमने लिया कलाकार फिल्म से। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में गाए कलाकार फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार

0: को पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के ये मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान संधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं कृषि के साथ वानिकी के लाभ, इस विषय पर डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से ली गई भेंटवार्ता। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम बता दें, सुर्खियों में यह कार्यक्रम होगा आज रात 8:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात 8:15 पर। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे आज रात

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम बता दें सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा आज रात 8 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात 8:15 पर। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे आज रात 10 बजे। रात 9:30 सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम कहकशा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं महफिलें समा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 सुनिएगा पंडित दिनकर कैकिनी का गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां गीत संगीत और समय के साथ। सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनिएगा प्रेम शंकर शर्मा के गाए भजन। प्रदेश की सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 9:30। 10:00 जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा कार्यक्रम महिला संसार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 सुनिएगा पंडित गिरिराज का सितार वादन राग बसंत मुखारी। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में आप सुन सकते हैं मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक, इस विषय पर डॉक्टर आराधना कुमारी से ली गई भेंटवार्ता। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल के कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आप सुन सकते हैं सुबह 11:00। आपकी फरमाइश होगा दिन में 12:00। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में कल सुनिएगा जादूगर को सलाम का भाग 13, समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी ग्वालियर की ही प्रस्तुति में 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं शाम 5:02 पर, माफ कीजिए दोपहर 2:02 और 2:30 पर आपकी फरमाइश के अंतर्गत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे कल शाम 5:33, शाम 6:30 और रात 8:15 पर। 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा कल रात 8:00। रात 9:30 चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। बन गया जीतू जेंटलमैन, वसीम खान का लिखा ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे कल रात 10:00, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। राग रजनी कार्यक्रम में 10:30 सुनिएगा पंडित गिरिराज का सितार वादन राग रागेश्री। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात से करेंगे शुरुआत। ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर होगी चर्चा। लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त कल होगी जारी। 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे 1,835 करोड़ से ज्यादा रुपए। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से होगी। इस यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया।
1: पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात का होगा और इस दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है। यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे से मजबूत किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री के दौरे का एक मुख्य आधार है।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर करेंगे। बैठक में शामिल विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप और भारत में फ्रांस के राजदूत थेरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को न नया आवेदन करना होगा और न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया,
2: इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। जो शिकायत आई थी उसमें अगर एक इंच की भी, एक आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा। हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी, उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री

गृह अमित शाह और कई केन्द्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साइबर अपराधों और बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत संदिग्ध लोगों का डेटा एआई सिस्टम को दिया जाएगा, जो उन बैंक खातों को पकड़ेगा जिनका इस्तेमाल साइबर ठग ठगी की रकम इधर उधर करने के लिए करते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला प्रकरण की अंतिम सुनवाई आज पूरी हो गई। करीब 2 घंटे की बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की 98 दिनों की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैज्ञानिक रूप से अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि यह स्थल मंदिर है या मस्जिद। वहीं हिंदू पक्ष ने सर्वे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भोजशाला को वागदेवी मंदिर बताते हुए पूर्ण अधिकार की मांग की है। इस साल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 365 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो देश के कुल उत्पादन का 18% है। भारत से होने वाले कुल गेहूं निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी 35 से 40% है और शरबती व ड्यूरम गेहूं की मांग अमेरिका, जर्मनी, इटली और दुबई जैसे देशों में बनी हुई है। प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति डीडी बंसल आज अपने सरकारी आवास से 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर अदालत पहुंचे। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सभी को साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए। देवास जिले में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मोरूखेड़ी ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 350 कंटूर ट्रेंच बनाए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे हर साल करीब 13 लाख लीटर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी एआई की पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के 11-11 मैच में 14-14 पॉइंट्स हैं। आज जीतने वाली टीम सीधे पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना, झाबुआ और बैतूल में जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं से के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। आगरमालवा में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण कार्य में नलखेड़ा ग्रामीण के सर्किल 20 ने तय समय से पहले 100% काम पूरा किया। खंडवा में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अधिकारियों को ईंधन बचाने के लिए काफिले में केवल जरूरी वाहन रखने के निर्देश दिए। देवास में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी। जिले को 196 सीटों का कोटा मिला है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में जन्मी माता चीता के चारों शावक मृत पाए गए। सुबह मॉनिटरिंग टीम को डेन साइट के पास शव मिले। शहडोल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर, माफ कीजिए, सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम सभा सुनवे बारे हमारे सबई सबई भैया बहनन को पहुँच जावे हमारी नेह और स्नेह भरी राम राम। आज की ग्राम सभा में अब से लेके 8 बजे लो आपके संगे रहे आपकी बहन अंशु तिलैठे कछु काम की बातें समाचार और बुंदेली लोकगीतन के संगे। मनो भैया हरो पारो खूब ही चढ़ रहा है, जेठ मास अपने पूरे सवाब पे है, 45 तक पारो पहुँच गए है और हम तो आप और से जई कहें कि ई भयानक गर्मी में अपनो ध्यान राखियो, निन्ने बाहर ना करियो, कछु खा पी के करियो, सत्तू खा लियो और मूड़ से गमछा बांधे रहियो और पानी की मात्रा अपने शरीर में कम ना होन दियो, खूब पानी पियत रहियो, 3 से लेके 4 लीटर लो। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते भैया आरो, भैया आरो सेवा से बढ़ के कोनो पुण्य नहीं होते, कैसे सेवा भाव हमारे मन को प्रसन्न करत है और जो ईश्वर की पूजा के बरोबर को पुण्य देत है। आज 12 मई को पूरी दुनिया में मनाओ जात है विश्व नर्स दिवस। नर्स दिवस के मनावे के पाछू हमारी सेवा भाव को जीवे वाली नर्सन के प्रति सम्मान प्रकट करवो है, संगई उनके सेवा भाव और समर्पण के प्रति लोगन को जागरूक करवो है। तो हम सभी उन्हें उनके सेवा भाव के लाने आभार प्रकट करवें और सदैव नर्सन के प्रति आदर और सम्मान को भाव रखवें। जो दिवस मनावे के पाछू फ्लोरेंसा नाइटेंगल की जयंती या जन्म दिवस होते यही के उपलक्ष में विश्व नर्स दिवस मनाओ जाते। भैया हरो अपन ने देखो है कि बेमौसम बरसात, कभों भी बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान या नियमन के विरुद्ध मौसम में परिवर्तन को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं और इको सीधो सीधो प्रभाव हमारी खेती बाड़ी पर पड़त है। भारत एक कृषि प्रधान देश है तो जब बात निश्चित है कि हमारन के लाने खेती कितनी महत्वपूर्ण है। मनो जलवायु परिवर्तन हमारी खेती पे बुरा असर डालत है, जैसे नए कीट संगे बीमारी ले आते हैं, गर्मी और नमी होवे से टिड्डी दल, ब्लास्ट, वाइट फ्लाई, फॉल आर्मी वर्म तेजी से बढ़त हैं या फैलत हैं। माटी और पानों में भी बुरा असर पड़त है, भूजल में गिरावट आत है, कम लवण क्षमता हो जात है, तेज बरसात में ऊपर की उपजाऊ माटी बह जात है, पैदावार कम होत है, लागत ज़्यादा आत है और हमें हमारी मेहनत को पूरा पूरा लाभ नहीं मिलत है। अब ये जलवायु परिवर्तन के पाछे कौन ना कौन हम मनुष्यन को ही हाथ है, हमने जो अंधाधुंध वृक्ष काटे और पानी को बर्बाद करो और आधुनिक जीवन शैली को हद से ज़्यादा अपनाओ। सो इको हम ही ठीक कर सकते हैं कि खूब वृक्षारोपण करें और पानी को बर्बाद ना करें तो कहूँ ना कहूँ हम जलवायु परिवर्तन को ठीक कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी चर्चाएं और अब बिरिया हो रही है बुंदेली समाचार की। भैया हरो कार्यक्रम में वापस आते हैं और बिरिया हो गई है बुंदेली समाचार की।

0: बुंदेली समाचार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार 2026 से सम्मानित करो। नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली इन पेशेवरों को प्रमाण पत्र, पदक और 1,00,000 रुपया नकद दिए गए। इस मौका पे स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जो पुरस्कार साल 1973 में स्वास्थ्य

0: मंत्रालय द्वारा शुरू करोगा हो तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलन की सराहना करी। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करवे और बांग्लादेश सीमा पे 45 दिन के भीतर बाड़ लगावे के लाने BSF को जमीन देवे को फैसला करो है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कही है कि डबल इंजन सरकार केंद्र की सभी बड़ी योजनाओं को बंगाल के लोगों तक आसानी से पहुंचे है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता विश्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बेर असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में भये ई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। उनके संगे 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता शामिल हैं। असम में NDA ने 126 में से 102 सीटें जीत के लगातार तीसरी बेर सत्ता में वापसी करी है। 3 मई को भई NEET UG 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दो है। कैसे परीक्षा के पहले से ही पेपर लीक होवे की बात सामने आई है। ये पूरी मामले की जांच अब CBI कर है और NTA सभी दस्तावेज उन्हें सौंपे। करीब 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देने हुई है, हालांकि उन्हें फिर से आवेदन या फीस नहीं भरने हुई है। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही आधिकारिक तौर पर घोषित करी जाए है। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करवे के मकसद से आज भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव को आयोजन करोगा। ई कार्यक्रम में भारत में फ्रांस के राजदूत थेरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल भए। प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकन और उनके परिवार के जीवन स्तर को ऊंचो टाबे के लाने प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। श्रम विभाग और विभिन्न बोई के माध्यम से अब श्रमिकों को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हर कदम पे आर्थिक संबल प्रदान करो जा रहा है। इनमें प्रसूति सहायता 16,000 रुपया, बेटियन के विवाह के लाने अनुदान 49,000 रुपया और 5 लाख रुपया तक को निशुल्क चिकित्सा लाभ शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पे 21 जून तक विशेष अभियान चलावे की पहल करी है। हर घर योग के ई अभियान को मकसद हर घर तक योग को पहुंचावो और लोगन को स्वस्थ जीवन शैली अपनावे के लाने प्रेरित करवो है। पन्ना जिला में ई अवसर पे आयुष विभाग द्वारा आम नागरिकन को योग के महत्व के प्रति जागरूक करो जा रहा है। जन जागरूकता अभियान के संगे विभिन्न कार्य स्थानन पे योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आम जनन को दैनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में जागरूक करवे तथा योग दिवस के सफल, सुव्यवस्थित और प्रभावी संचालन के लाने विभाग स्तर से आवश्यक तैयारियां व प्रशिक्षण गतिविधियां को संचालित करवे की कही गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार वितरण समारोह में पन्ना जिला के 2 पुलिस कर्मियों को सम्मानित करो है। इनमें जिला के थाना प्रभारी पवई निरीक्षक सुशील अहिरवार एवं प्रधान आरक्षक नीरज रैकवार शामिल हैं। इन 2 ही पुलिस अफसरों ने पन्ना जिला को गौरव बढ़ाओ है। मुख्यमंत्री ने कही इन्हें प्रशस्ति पत्र एवं 50,000 रुपया राशि प्रदान करके उन्हें सम्मानित करो है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लाने आज पूरे प्रदेश में एक संगे मतदान भाव। प्रदेश भर के करीब 88,000 अधिवक्ताओं ने 122 प्रत्याशियों के भाग्य को फैसला करो। आंधी बारिश से मिली राहत के बाद प्रदेश में एक बार फिर कहूँ लू ने दस्तक दे दी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गयो। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू को असर बनो रहे और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच रहने को अनुमान है। जी हते आज के बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है

0: तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भैया हरो, अंतराल के बाद कार्यक्रम में वापस आते हैं और सुनत हैं जो देवी गीत जिए गाँव है अनरत लाल बरसिया ने।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड

0: ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भैया हरो, कृषि के संगे अगर अपन को और लाभ भी लेने हैं तो अपन उके संगे कछु ऐसे वृक्ष लगा सकते हैं जो हमें आर्थिक रूप से मदद करें। तो ऐसे ही कछु आज हम विषय लेके आए हैं अपनी भेंटवार्ता को, कृषि के साथ वानिकी के लाभ। विशेषज्ञ हैं मनोज कुमार सिंह और इनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना ने। तो आओ सुनते हैं जब भेंटवार्ता।
4: किसान भाइयों, खेती में लाभ की बात हम हमेशा करते हैं और हमारा प्रयास यही होता है कि हम खेती करें, उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं, और किसान इसके लिए लगातार जतन करता रहता है। और हमारे भी प्रयास यही होते हैं कि हम ग्राम सभा के माध्यम से आपको ऐसे सुझाव, ऐसी सलाह और ऐसी युक्तियां आपको बतलाते रहें। जी हाँ, आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिससे आप सभी अछूते नहीं हैं। सब जानते हैं, समझते हैं, पर कहीं ना कहीं एक यूं कह सकते हैं कि अनुभव की कमी या हमारी लापरवाही के हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कृषि और वानिकी विषय पर। जी हाँ, हमारा आज का विषय है कृषि के साथ वानिकी के लाभ, और यह सब जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी IIFM भोपाल से हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद, धन्यवाद।
4: जैसा कि हमारा विषय है, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा और हमारे जो लिसनर्स हैं वह भी जानना चाहते होंगे कि कृषि वानिकी है क्या।
5: दरअसल कृषि वानिकी जो विषय है, जिसको हम एग्रोफॉरेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के मन में इस बात का भ्रम है कि कृषि को कृषि विज्ञान समझ लेते हैं और वानिकी को वन विज्ञान समझ लेते हैं।
4: जी,
5: जो कि तुलनात्मक रूप से अलग अलग विषय हैं और उनमें काफ़ी भेद है। ये आवश्यक है कि इस मंच के माध्यम से मैं श्रोतागणों को ये बताने की कोशिश करूँ कि वास्तव में इनमें मूल अंतर किस बात का है। कृषि की जब हम बात करते हैं तो मूलतः ये एक पद्धति है विभिन्न प्रकार के कार्यमालाओं की, फसल उत्पादन की, पशु पालन की, जिसमें कि जो है व्यक्ति विशेष के जो फार्म हैं या उनके प्रक्षेत्र हैं उस पर उत्पादन से संबंधित कार्य को किया जाता है। तो जब एक व्यक्तिगत किसान के खेत पे इस प्रकार की गतिविधि होती है, उनका जब समूल हम इकट्ठा करते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, जिले विशेष में या प्रदेश विशेष में या राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो व्यवस्था निकल करके सामने आती है वो कृषि के नाम से जानी जाती है।
4: जी,
5: तो कृषि विज्ञान की जो परिभाषा है वो बेसिकली या सैद्धांतिक रूप पर अध्ययन की एक शाखा के रूप में है। विज्ञान की एक ऐसी शाखा, बहुआयामी शाखा, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान, विभिन्न प्रकार के सामाजिक विज्ञान, विभिन्न प्रकार के फंडामेंटल जो साइंसेज हैं, विज्ञान हैं, इन सब का समूह जब मिल करके कृषि के कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए और उसको समझने के लिए किया जाता है, तो जो विज्ञान निकल करके सामने आता है उसको कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः लोगों में इस बात को लेकर के भ्रम है। कृषि और कृषि विज्ञान को कई बार लोग एक ही समझ लेते हैं, जबकि कृषि एक कला का भी हिस्सा हो सकता है, जबकि कृषि विज्ञान मूलतः विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में कार्य कर रही है। इसी प्रकार से वानिकी को भी यदि देखा जाए तो वन प्रबंधन जो है एक कला तो है ही, लेकिन वानिकी के रूप में यदि हम इसको देखेंगे तो फॉरेस्ट्री अपने आप में एक विज्ञान है और जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में, जिसमें कि फ्लोरा फौना दोनों की स्टडी की जाती है नेचुरल सेटिंग्स में और जो लैंडस्केप है उसके ऊपर। तो जो विज्ञान निकल करके सामने आता है वो वानिकी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब एग्रोफॉरेस्ट्री की हम बात करते हैं तो कृषि और वानिकी विज्ञान दोनों का जब संयुग्मन होता है किसी ऐसे कार्य के लिए जिसमें इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक हमारा कोई उद्देश्य पूरा हो रहा हो या किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था के लिए हमने व्यवस्थाओं को चुना हो, तो जो व्यवस्था निकल करके सामने आती है वो कृषि वानिकी के नाम से या एग्रोफॉरेस्ट्री के नाम से जानी जाती है। सामान्यतः एग्रोफॉरेस्ट्री में जो है व्यवस्थाएं हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्लांट्स होते हैं, चाहे वो कृषि के हों चाहे वो वानिकी के हों, उनका इस्तेमाल जो है भूमि के संरक्षण के लिए, भूमि में पोषण पदार्थ जो है उसकी उपयुक्तता बढ़ाने के लिए,

0: अन्यादि प्रकार से सॉइल कार्बन को इम्प्रूव करने के लिए जब बात की जाती है तो एग्रोफॉरेस्ट्री के कंसेप्ट को या उसकी अवधारणा को हम सिस्टम में लागू मानते हैं।
1: किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो इसको कुछ साधारण शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि कृषि तो आप करते हैं, आपके खेतों में अगर वे वृक्ष भी लगाएं जो फलदार भी हैं, औषधि वृक्ष भी हैं, जो आपके लिए अतिरिक्त फल और अतिरिक्त आय का साधन बन जाएं, दोनों जब मिल जाएं तो कृषि वानिकी होती है। सर, कृषि वानिकी व सामाजिक वानिकी में आप क्या अंतर महसूस करते हैं?
0: देखिए, जैसे कि शब्द से ही हमको पता लगता है कि कृषि वानिकी का मतलब कृषि के साथ वानिकी का संयोजन या संयुग्मन, और सामाजिक वानिकी का मतलब यह है कि आउटसाइड दी फॉरेस्ट एरिया, जहाँ की सोसाइटी का सोशल एक्टिविटी चल रही है या सामाजिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है, उस क्षेत्र में जब वानिकी आधारित वृक्षों का या उससे संबंधित व्यवस्थाओं का हम स्थापन करते हैं तो वो सामाजिक वानिकी के नाम से जाना जाता है। कृषि वानिकी का उद्देश्य जो है उत्पादन से संबंधित है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ से, उसके बेहतरी से संबंधित है।
1: इसका कोई उदाहरण जैसे मैं आपसे चाहूं तो?
0: जी, कई बार हम लोग चौपाल के आसपास, यदि आपने देखा हो, या गाँव में जो हमारा जो सामुदायिक चबूतरा है या सामुदायिक भवन है, इसके आसपास के क्षेत्रों में हम वन आधारित जैसे नीम है, पीपल है, महुआ है, इत्यादि के जो वृक्ष लगाते हैं, या कई बार आपने देखा होगा गांव में जो है कम्युनिटी किसी सामुदायिक जमीन पर जो है बांस का जो है उत्पादन करना जो है, ये जो है सामाजिक वानिकी के रूप में आता है। लेकिन यही वृक्ष यदि आपके खेत के ऊपर लगे हैं और उनका उद्देश्य उत्पादन की किसी प्रणाली से जुड़ा हुआ है या आपके उत्पादन के किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, तो वो कृषि वानिकी का हिस्सा बन जाते हैं। तो स्थान परिवर्तन से परिभाषाओं में अंतर आ जाता है और उनकी समझ में और उनकी उपयोगिता में भी अंतर आता है।
1: अब अगर हम इसके वर्गीकरण किया जाए, इतने बड़े विषय को अगर हम वर्गीकृत करें तो कैसे करेंगे?
0: देखिए, ये बात सही है कि कृषि वानिकी अपने आप में काफ़ी वृहद विषय है और इसको सामान्य व्यक्ति के जनमानस के समझने के हिसाब से यदि हम वर्गीकरण करना चाहें तो मोटे मोटे तौर पर हम इसको 5 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है संरचनात्मक आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे होता है। तो संरचना के आधार पर इसमें हम एक एग्री सिल्विकल्चरल सिस्टम है, जिसको कि हम कृषि और विभिन्न प्रकार की जो इंटरक्रॉप वाली अंतर्वर्ती फसलें हैं उनके लिए जब चयन करते हैं तो एग्री सिल्विकल्चरल सिस्टम कहलाता है। एक और सिस्टम है सिल्वोपास्टोरल सिस्टम, जो है जब हम विभिन्न प्रकार के चारा वर्गीय फसलों का इस्तेमाल अपने खेत पर वानिकी से संबंधित प्रजातियों के संदर्भ में करते हैं तो सिल्वी पास्टोरल सिस्टम कहलाता है। एक होता है एग्रो सिल्वो पास्टोरल सिस्टम, जो है जो कि ये कहता है कि इन दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन का, जिसमें कि हम खेती की फसलें भी लें, साथ ही साथ वानिकी की फसलें भी लें, साथ साथ चारा वर्गीय वाली फसलें भी लें, और जानवरों के पोषण के लिए भी हम जो है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें, या टिम्बर उत्पादन के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें, या वुड फूल के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें, तो जो सिस्टम निकल करके सामने आता है वो एग्रो सिल्वो पास्टोरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये संरचनात्मक आधार पर है। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि कार्यात्मक आधार पर भी हम जो है इसको वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि सामान्यतः हमारे जो एग्रोफॉरेस्ट्री का जो सिस्टम है दो प्रकार का काम करता है, या तो प्रोडक्टिव फंक्शन करता है, उत्पादन का क्रियात्मक गतिविधि करता है, या फिर संरचनात्मक, जिसको हम प्रोडक्टिव फंक्शन कहते हैं, उसके रूप में काम करता है। तो उत्पादन फंक्शन के रूप में ये भोजन प्रदान करता है, फॉडर देता है, फ्यूल वुड देता है, रेशेदार फाइबर जो है उसको भी देता है, आश्रय देता है, शेल्टर देने का काम करता है, और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो गैर कास्टीय जो वन उपज हैं उसको भी प्रदान करने का काम करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में अगर आप देखें तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ की हवा काफ़ी तेज चलती है, वहाँ पर विंड ब्रेक के रूप में जो है इन वानिकी फसलों का जो है इस्तेमाल जो है किया जाता है, शेल्टर बेल्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होता है जो कि डिकम्पोज होकर के सॉइल में जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक आधार पर भी इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, विषय काफ़ी बड़ा है, समझने के लिए हम वर्गीकृत इसको कितने भी प्रकार से करें, यदि हम वृक्ष नहीं लगाएंगे या जो हमारी प्रकृति की विविधता है, तो यदि ये जो विविधता है प्रकृति की, हम इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो है हम कहीं ना कहीं अपने विषय से जो है थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और हमारा जो मूल उद्देश्य है सस्टेनेबल लिविंग का या एक संपोष्य जीवन शैली का जो है, तो वो मूल मंत्र फेल होता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम वर्गीकरण तो ठीक है, इसके अलावा जो है ये इस बात पर भी फोकस करें कि जैव विविधता को भी किसी न किसी प्रकार से लगातार हार्वेस्ट करते रहें, और इस दृष्टि से हार्वेस्ट करें कि

0: हमारा कृषि का जो तंत्र है, वानिकी का जो तंत्र है, उनके संयुग्मन से जो हमारे पास परिणाम आ रहे हैं, वो समान रूप से लगातार न केवल हमारी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को भी लगातार
1: जी जी
0: मिलते रहे।
1: जी सर, अब कोई अन्य आधार पर भी क्या वर्गीकरण किया जा सकता है?
0: जी हाँ, इसके देखिए, हम अपने विषय के कंटेंट को या उसकी वस्तु को समझने के लिए किसी भी प्रकार से वर्गीकृत का वैज्ञानिक आधार होना चाहिए वर्गीकरण का। अब उदाहरण के तौर पे कई बार आपने देखा होगा कि एपिकल्चर जो है, जिसको हम बी फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, जो है इसका भी इस्तेमाल होता है। तो वानिकी की फसलों के साथ हम हनी प्रोडक्शन या एपिकल्चर की फार्मिंग को भी करते हैं। एक्वा फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट आ गया है, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री है उसी पैटर्न पर एक्वा फॉरेस्ट्री। एक्वा फॉरेस्ट्री का मतलब यह है कि जलीय स्थान पर जहां की जल की बहुतायत है, वहां पर आप जो है वानिकी आधारित फसलों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न प्रकार के जो उत्पादन है, जैसे मत्स्य उत्पादन है या अन्य प्रकार के जो शाक कुंभी या जिनका आप उत्पादन करना चाहते हैं, या अन्य जलीय फसलों का उत्पादन आप आसानी से ले सकते हैं। तो एक्वा फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट भी है इस वर्गीकरण में। इसी तरीके से मिक्स्ड वुड लॉट का भी कंसेप्ट है। एक क्लासिफिकेशन ये भी कहता है कि हम किसी भी प्रकार की व्यवस्था रखें, लेकिन ऐसी व्यवस्था जिसमें कि हम अपनी आवश्यकता की, सामाजिक आवश्यकता की जो अनुरूप जो है विभिन्न प्रकार की जो लकड़ियों की आवश्यकता है उसको भी हम पूरा करते चले जो है। तो वर्गीकरण किसी भी आधार पर हो सकता है, उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारा जो तंत्र है वो सही तरीके से समझ में आना चाहिए और उसका उपयोग जो है सस्टेनेबल तरीके से किया जा सके।
1: सर, वानिकी फसलों की हम बात करें और मध्य प्रदेश के किसानों की अगर हम चर्चा करें,
0: जी जी
1: तो वानिकी की ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें किसान लगा सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं?
0: मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि आप देखें तो हम बहुत सारी वानिकी आधारित फसलें हैं जिनका हम यहाँ पर इस्तेमाल एग्रोफॉरेस्ट्री के रूप में भी कर सकते हैं। पीपल जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सागौन है, तेंदू है, बेल है, कुसुम है, चंदन है, आंवला है, अमरूद की जो वैरायटी है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉटल
1: जी
0: पाम है, नीम है, महारुख है, सुबबूल है, मोयन है, रेन ट्री जो है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा धावड़ा जो है, सेमल, खैर, बेर, पलाश, अमलतास है, सीताफल जो जंगली सीताफल है
1: जी
0: इसका भी इस्तेमाल हम लोग कृषि वानिकी में कर सकते हैं। जंगल जलेबी है, गुलटुरा है, करंज है, इमली है, गुलमोहर है, हरसिंगार है, कुल्लू, कुल्लू अपने गम का नाम सुना होगा तो
1: जी जी
0: कुल्लू का भी हम वृक्ष इस्तेमाल कर सकते हैं। बैम्बू प्लांटेशन कर सकते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के उसमें जो है, कचनार लगा सकते हैं, अर्जुन के वृक्ष हो सकते हैं, सप्तपर्णी है, दूधी है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी हैं जिनका इस्तेमाल हम एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत कर सकते हैं। और इस प्रकार से न केवल संयुग्मन से आम किसान जन की आमदनी बढ़ेगी बल्कि
1: जी
0: उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और वे उसका लाभ ले सकेंगे।
1: किसान भाइयों, इस पूरी चर्चा का लबोलुआब यह है कि आप अपनी खेती के साथ साथ ऐसे वृक्षों को भी लगाइए जो आपके लिए अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन सके। सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: तो भैया हरो, आप मैं जानो कृषि वानिकी के साथ वानिकी के लाभ और एक विशेषज्ञ थे मनोज कुमार सिंह और इनसे बैठवार्ता करी थी मनोज सक्सेना ने। अब ले लेते हैं एक अंतराल।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: भैया रुक, कार्यक्रम में वापस आते हैं और सुन लेते हैं जागारी जी। एक गांव है बहादुर सिंह नरवरिया ने।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अंतराल के बाद कार्यक्रम में वापस आते हैं और कछु कृषि सलाह हम अपने भैया हरण को देन चाहते हैं। मूंग की शाकी अवस्था में हल्की सिंचाई करवे, मिट्टी में नमी

बनाए रखें, गर्मी एवं नमी की कमी से बचाव करवें, खेत को खरपतवार मुक्त रखें तथा कीटों को सफ़ेद मक्खी माहू फली छेदक की नियमित निगरानी करवें, पीले स्टिकी ट्रैप लगाएं, प्रकोप होवे पे नीम को तेल या इमिडा क्लोरोप्रिड को छिड़काव कर देवे, पीत शिरा मोजेक YMV से संक्रमित पौधन को तुरंत निकार के नष्ट कर देवे, अनुशंसित उर्वरकन को प्रयोग करें और बेसल में DAP तथा फूल आवे पे NPK फ्लोरियर स्प्रे करें। जहाती कृषि सलाह। और हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, सो कल के कार्यक्रम से ही बता चले आपको। कल कृषि चर्चा में सुनियो नैनो यूरिया विषय पे डॉक्टर दिनेश कुमार सोलंकी की जानकारी, और संजय बिरिया भेंटवार्ता में सुनियो मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक, विशेषज्ञ हुई हैं डॉक्टर आराधना कुमारी। और एक और मनोहराव के गीत सुनवा दें आप और उनको, जो तकरार गीत है बलराम रैकवार की आवाज़ में।

0: दौर में राष्ट्रीय हित और आर्थिक संयम विषय पर चर्चा करेंगे। और इस अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सोनू, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
0: शरद जी, से पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम एक अंश सुनेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन का, जिसमें उन्होंने बताया है कि अस्थिर परिस्थितियों के दौर से हम काफी समय से गुजर रहे हैं और अभी ऐसा समय है जब जन भागीदारी के द्वारा एक नागरिक के तौर पर कर्तव्य निभाते हुए छोटे छोटे संकल्प लेकर ही हम इस स्थिति से पार पा सकते हैं। आइए सुनते हैं।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
0: क्या कहेंगे आप, अभी जो स्थिति है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि काफी समय से एक के बाद एक क्राइसिस आ रहे हैं जिससे भारत ने बहुत मजबूती के साथ हमने उनका सामना किया है, अभी जो स्थिति है, अभी जो पश्चिम एशिया का संकट है, उससे किस तरह के स्पेसिफिक चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं हमारे देश के लिए?
1: देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल के लिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं, तो 87% के करीब भारत का क्रूड ऑयल विदेश से आता है और इन सब का भुगतान पेट्रोडॉलर्स, तो ज्यादातर लोगों ने सुना होगा कि ये इसका क्रूड ऑयल का ज्यादातर जो व्यापार है वो पेट्रोडॉलर्स में किया जाता है। तो पेट्रोडॉलर्स की जब हम बात करते हैं सोनू, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो विदेशी मुद्रा भंडार सीधा सीधा प्रभावित होता है। इस समय जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो $700 बिलियन से नीचे आ चुका है। तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य क्या, उसके पीछे का आप अर्थशास्त्र जब लोग समझने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ यही आकाशवाणी प्रसार भारती का दायित्व है जो इस समय पूरा आकाशवाणी निभा रहा है, कि लोगों के लिए इसको सरल भाषा में समझाया जाए कि प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसा कहा तो उसके पीछे क्या अर्थशास्त्र था। अब वो जहां पर बोल रहे थे, पहले उन्होंने हैदराबाद से बोला, फिर वडोदरा से भी बोला, तो वो इस वक्तव्य में ये तो है नहीं कि पूरी पीछे वो इकोनॉमिक्स समझाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी की बात को अक्षरशः लेने का उसके पीछे अर्थशास्त्र समझना होगा। वो ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है और ये जो खाड़ी में, वेस्ट एशिया में, कभी हाँ कभी ना, कभी लगता है कि ट्रूस हो जाएगा, वहां पर शांति वार्ता सफल हो जाएगी, प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, अगले दिन फिर लगता है कि नहीं होगा। शुक्रवार को ऐसा लगा कि ये मामला अब सुलट जाएगा, क्योंकि 14 सूत्री एक प्रस्ताव भेजा गया अमेरिका के पास ईरान द्वारा, और जब पता लगा कि इसको अमेरिका ने ठुकरा दिया, तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो $100 से नीचे आ गई थी पिछले वीकेंड से पहले जी। वो एक दफे फिर सोमवार जैसी सुबह हुई, फिर वो 105 पहुंच गई। तो ये ऐसा लगने लगा कि जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, और अगर ये चलता रहा तो जिस प्रकार से रुपए पर दबाव बन रहा है, जिस प्रकार से विदेशी मुद्रा का हमें भुगतान करना पड़ रहा है, तो उनको लगा कि भाई लोग अगर इसमें अपना योगदान दें, 140-145 करोड़ की जनता है, लोग इसमें अगर अपना योगदान देते हैं जी, तो इस समस्या का हम काफी हद तक समाधान पा सकते हैं। उसके पीछे जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है।
0: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या क्या ये छोटे छोटे उपाय सुझाए, छोटे छोटे संकल्प लेने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया, ताकि जैसे आपने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा, उसको कम से कम व्यय किया जाए।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें,

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम वैश्विक अनिश्चितता के

0: तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
1: बहुत ही गूढ़ बातें हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी बातें पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं। पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जो उन्होंने मिशन लाइफ सुझाया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें भी ये सब बातें थी। और वोकल फॉर लोकल जो सरकार का हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है, उसके तहत अगर हम देखें तो उन्होंने जो कहा है कि डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस में वेडिंग्स करिए, ये बात भी वो पहले कर चुके हैं। लेकिन अब उन बातों का जो एक कहें कि महत्व था, वो बहुत बड़े वे में अभी सामने आ रहा है स्थिति में।
2: जी हाँ, प्रधानमंत्री जी तो देखिए शुरू से ही

0: ऊपर
1: जी
0: और छोटी छोटी बातों में कहते हैं, पर इस बार उसमें एक और आयाम सोनू जुड़ा।
1: जी
0: वो आयाम था विदेशी मुद्रा भंडार का। आप देखें, जैसा मैंने आपको कहा, इन सभी चीजों में जो आपको कॉमन थ्रेड जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो विदेशी मुद्रा भंडार को सेव करना था, जहां जहां हम बचत कर सकते हैं, जो गैर जरूरी चीज है। और अगर मैं सोनू आपकी इजाजत से टॉप 3 आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है आकाशवाणी के श्रोताओं को ये जानकर बहुत बड़ी उनकी जानकारी में इजाफा होगा कि सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है, $140 बिलियन का हमने वित्त वर्ष 25-26 में आयात किया, लगभग $140 बिलियन का। दूसरे नंबर का क्या था, आपको हैरानी होगी सुन के, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स थे। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन बन रहे हैं, उनके छोटे छोटे कलपुर्जे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, लगभग 115 से $120 बिलियन का। ये दूसरे नंबर का आइटम था। और हैरानी की बात है कि तीसरा आइटम सोना था, जो कि $72 बिलियन पिछले साल 25-26 में हमारे यहाँ, इससे पिछले साल 58 था, उससे पिछले साल 45 था, लगातार इसका आयात हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो हमारा इंपोर्ट बिल जिसको हम कहते हैं, आयात का जो पूरा खर्च है
1: जी,
0: उसके बढ़ते हुए क्वांटम को देख के, उसके बढ़ती हुई संख्या को देख के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये तो अगर लोग अगर थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो तभी ये बचत हो सकती है। क्योंकि ये किस लिए आता है, लोगों के इस्तेमाल के लिए सब चीजें आती है। क्रूड ऑयल आता है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, चलिए ठीक है वो B2B होता है, कुछ लोग मोबाइल फोन बना के उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। सोना तो ऐसी चीज है जो कि 60 से 70% सोना जो हम आयात कर रहे हैं, और ये भी मैं बताना चाहूंगा सोनू के 99% सोना भारत का आयात किया जाता है। तो उसमें 60 से 70% तो ज्वेलरी मेकिंग में यूज होता है, बाकी का निवेश में जाता है। तो ये ऐसी चीज है जिसके बिना लोग गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के बिना गुजारा नहीं कर सकते। हम शायद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम मंगाते हैं क्योंकि हमारा उस पर निर्यात भी निर्भर है, उससे विदेशी मुद्रा आती भी है, परंतु सोना तो ऐसी चीज है। तभी उन्होंने सोने के लिए अलग से कहा, जो उन्होंने एक साल की बात कही कि एक साल तक लोग सोना ना खरीदे। और मैं देखिए ये कहना चाहूंगा क्योंकि सोना भारत में भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, सोना हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे हमारे सोशल फैब्रिक से जुड़ा हुआ है। तो उसमें आप सोने को रिसाइकल करिए ना। एक अनऑफिशियल एस्टिमेट आया कि भारत में 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है। तो जो आपके पास पुराने फैशन के हार पड़े हैं, कंगन पड़े हैं, चेन पड़ी है, अंगूठी पड़ी है, और अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, शादी ब्याह का मौका है, फंक्शन है, कहीं देना चाहते हैं, तो उस सोने को आप लाइए टेबल पे। एक बड़ी ज्वेलरी कंपनी ने अभी किसी फेमस क्रिकेटर को हायर किया सिर्फ यही कहने के लिए कि आप पुराना सोना अपना लाइए और बनवाइए, क्योंकि नया आप सोना के रेट भी बहुत बढ़ चुके हैं, खरीदना भी महंगा पड़ता है, लोग पीछे शिकायत भी कर रहे थे कि सोना हमारी पहुंच से बाहर हो गया, तो उसको रिसाइकिल किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना पहनना छोड़ दें। प्रधानमंत्री जी ने यह बिल्कुल, कल कुछ लोगों ने इस बात को थोड़ा सा गलत परसीव किया कि क्या सोना पहनना छोड़ दें, सोने का इस्तेमाल, सोना खरीदने को मना किया उन्होंने, सोना पहनने को या सोना रिसाइकल करने को उन्होंने मना नहीं किया।
1: बिल्कुल। शरद जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। अभी 70 दिनों से अधिक हो गए हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए, और हमने देखा है कि बाकी जो विकासशील देश है और विकसित देश है, हर जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, कहीं 50%, कहीं उससे भी ज्यादा, बहुत अवेलेबिलिटी पर भी असर हुआ है। भारत ने अभी तक जिस तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील किया है, आप कैसे तुलना करेंगे? और दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये देखते हुए कि शायद ये क्राइसिस लंबा चल सकता है, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपको लगता है जो सरकार ने ये अपील की है, ये एक इंक्लूसिव अपील है, सबको साथ में लेते हुए, और बहुत दूरदर्शिता से भरी हुई एक स्टेप है?
0: बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेरिका को स्वयं देखें, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा तेल का वहां पर उत्पादन होता है, उनके स्वयं अपने देश में कीमतें डबल हो चुकी है। वहां पर इसको गैस बोला जाता है, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो लोग गैसोलीन बोलते हैं, हम लीटर में नापते हैं, वो लोग उसको गैलन में नापते हैं। भारत सरकार ने, मुझे लगता है, भारत की जो अच्छी आर्थिक परिस्थिति पिछले कुछ सालों में रही, उस दम पर भारत इसको झेल पाया। परंतु प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इसका दबाव भारत सरकार पर, भारत के कोष पर पड़ रहा है। हम और आप जाके पेट्रोल और डीजल जब हम भरवाते हैं या हम एक नॉर्मल गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, हमें एहसास नहीं होता, हमें लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसे ही नजर आता है सब कुछ ठीक ठाक है। परंतु इसके पीछे, जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे जो अर्थशास्त्र है कि इस पे जो फिस्कल लोड, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो हमारे ऊपर राजकोषीय भार पड़ रहा है, वो भार धीरे धीरे धीरे धीरे करके कठिन होता जा रहा है। और एक अनुमान के अनुसार 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह सोनू, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, जो सरकारी क्षेत्र के संस्थान है, इनको लगभग 1,000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कब तक ये लॉस झेल पाएंगे? आखिर अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनी रही तो मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी ये कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। और इससे पहले कि ये निर्णय लेना पड़े, प्रधानमंत्री जी ने एक घर के बड़े के नाते, देश के नेता होने के नाते, उन्होंने लोगों को एक सुझाव कहिए, अपील कहिए, उसको दरख्वास्त कहिए, रिक्वेस्ट कहिए, जो मर्जी आप कहिए, लोगों को करिए कि अगर बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, हर व्यक्ति योगदान देगा, अगर अगर सरकार कह सकती

0: है सबका साथ सबका विश्वास। तो आई थिंक लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम भी, और मैं तो ऐसा मानता हूं सोनो के युद्ध की जब परिस्थिति होती है ना तो हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से सिपाही बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति, चाहे हम लोग गन उठाए तो नहीं, वहां युद्ध के मोर्चे पर हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, ना हमारा देश लड़ रहा है, पर हम इस तरीके से देश में एक आर्थिक युद्ध जो हमारे ऊपर जबरदस्ती ऐसा लगता है थोपा गया है, उससे हमें हर व्यक्ति अपना अपना योगदान एक सिपाही बन के दे सकता है।
1: और इसमें अगर सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है जैसे बाकी सब देशों ने उठाया है, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, वित्तीय जो हमारी स्वास्थ्य है हमारे देश का उसको बरकरार रखने के लिए, तो उसको भी जैसा आपने समझाया एक अर्थशास्त्री के तौर पर उसे गहराई से समझना चाहिए।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए जो अर्थशास्त्र है मुझे लगता है उसमें ना कोई राजनीति है, उसमें कुछ नहीं है, वो तो एक सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर देश के ऊपर भार पड़ रहा है तो लोगों पर भार पड़ रहा है, लोगों पर भार पड़ रहा है तो देश पर लाभ पड़ रहा है, इस इन लोगों को मिला के ही देश बनता है। तो मुझे लग रहा है अगर कल को ये कठिन निर्णय लेना भी पड़ता है तो लोग अब इसको बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ आवाजें तो देखिए सोनू हमेशा ही ऐसी होती हैं जिनको कि कोई भी निर्णय पसंद नहीं आता, अच्छा निर्णय भी पसंद नहीं आता तो ये बढ़ाने की तो मैं बात अलग है।
1: इनफैक्ट आप आवाजों की बात कर रहे हैं शरद जी, तो IMF की प्रमुख ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि उनको ये लगता है कि सरकार को, भारतीय सरकार को अब एक स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारी फिस्कल हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में ठीक हितकारी नहीं होगा।
0: क्योंकि IMF में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं और जब वो गणना करते हैं, जब वो आकलन करते हैं तो उनको दिखाई दे, मैंने तो आपको स्वयं ही कहा कि अगर जो थोड़ा भी अर्थशास्त्र को समझता है वो व्यक्ति तो तुरंत कहेगा, बल्कि वो हैरान होगा कि अभी तक भारत सरकार ने कैसे इसको बर्दाश्त कर रखा है। और प्रधानमंत्री जी ने, आपने ध्यान दिया होगा, अगर उनके आप पूरा वक्तव्य जब सुनेंगे हम तो उन्होंने कहा कि इससे देश पर दबाव पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि देश इससे अछूता नहीं है। मुझे लगता है लोगों के लिए ये संकेत काफी है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी आके लोगों को डराएंगे नहीं कि हम, अब प्रधानमंत्री जी आके आंकड़े देने लगे कि इतने दिन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार चलेगा, कल को फिर हमारा आगे क्या होगा, इस प्रकार की वो कभी भी बात नहीं करेंगे। ये तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स समझनी होगी कि जब कोई चीज पीछे से महंगी आ रही है और हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता है, मात्र 13% क्रूड हमारे देश में होता है, 87% हम बाहर से मंगाते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार तो ज्यादातर डॉलर में काम होता है, कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं वो खाली डॉलर से नहीं बनते हैं, उसमें जो रिजर्व बैंक के पास सोना है वो भी होता है 880 टन के आसपास, और इसमें IMF की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती हैं, इसको SDR बोला जाता है। तो अगर ये धीरे धीरे इसी प्रकार इरोड होता रहा, ये धीरे धीरे जाता रहा, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें, आपको याद होगा 1990-91 में भारत को एक समय ऐसा था जब अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्यों, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई थी। तो उस ओर अगर प्रधानमंत्री जी को लगा कि देश चल पड़ा है तो इसमें लोगों को अब आगे आना चाहिए और लोगों को इसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए और लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा, मैंने तो कहा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे 5 लीटर तेल कम भरवाने से क्या देश का विदेशी मुद्रा भंडार बच जाएगा, जी हाँ बच जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो 140 करोड़ की हमारी आबादी तो कमाल करके दिखा सकती है। सोनू,
1: शरद जी, अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय में राष्ट्रीय हित के लिए आर्थिक संयम और हरेक नागरिक का योगदान कितना आवश्यक है उस पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला नगमा किशोर कुमार का गाया हुआ है। साहिल लुधियानवी के बोलों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है दाग।

कुदरत। जी हाँ, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, आर डी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई है और आवाज़ परवीन सुल्ताना की।

कार्यक्रम का अगला गीत ब्लैकमेल फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण। संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया आपकी कसम फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आपकी कसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्र

0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जाँच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक S कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर

0: शंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: June every year. The Ministry of Statistics and Program Implementation said that the provisional estimates will be released on the previous working day if 7th June is a holiday. The revision in the release schedule has been made after due consultation with the Advisory Committee on National Account Statistics. The ministry said that the revision is aimed at further strengthening the data quality. The External Affairs Ministry today said that the registrations for Kailash Mansarovar Yatra 2026 are closing soon. In a social media post, the ministry encouraged the interested candidates to apply for the Yatra before the 19th of this month. Candidates can visit kmy.gov.in for further details. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heatwave conditions over Rajasthan for tomorrow. Similar conditions are likely to prevail over Gujarat, Maharashtra and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has also forecast hot and humid weather over coastal Karnataka for tomorrow. In badminton, Indian shuttlers Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty began their Thailand Open 2026 tournament campaign with a hard-fought win in Bangkok today. Top seeds Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated Indonesia's unranked pair of Putra Arvinsya and Bagas Maulana 21-19, 23-21, 21-10 to enter the men's doubles second round. In IPL cricket, Gujarat Titans were 158 for 4 in 19 overs against Sunrisers Hyderabad at Ahmedabad when reports last came in. Earlier, Sunrisers Hyderabad won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. CBI registers case in alleged NEET paper leak issue. Multiple suspects detained across several states. In Tamil Nadu, AIADMK splits. Bigger faction with 30 MLAs set to support Vijay's TVK government floor test tomorrow. Chief Justice of India Suryakant constitutes high-powered committee to prepare blueprint for modernization of courts across the country. India to host two-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Stock indices tank around 2% as elevated oil prices and US-Iran tensions dampen markets' confidence. And in badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advance to second round of Thailand Open in Bangkok. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में एआईए डीएमके में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय की टीवीके हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है। कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी तहकीकती ब्यूरो सीबीआई ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि उसने नीट यूजी इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक हो जाने के मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों के साथ एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें मुजरमाना साजिश, जालसाजी, मुजरमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को खत्म करने की कोशिश और इम्तिहानात में नामुनासिब तरीक़ेकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक्ट 2024 के तहत खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। नई दिल्ली में नीट इम्तिहान की मनसूखी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने बताया कि एनटीए तलबा के लिए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करेगी और ये मुनसिफाना तरीके

0: जालसाजियों से निपटा जा सके और बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के पूरे मुआशी निजाम में म्यूल खातों में कमी की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत एक साइबर सिक्योर भारत की तश्कील की जानिब मुस्तकिल काम कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात को उजागर किया कि साइबर जराइम को खत्म करने के सिलसिले में म्यूल खाते भी अब एक बड़ा चैलेंज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स वज़राए खारजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर नजरियात का तबादला करेंगे।
1: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पता चल जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहे हैं, कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के UAE के दौरे के बारे में बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि उनके दौरे के दौरान तवानाई की यकीनी फरहमी पर बातचीत होगी। जनाब जायसवाल ने वजीर आजम के नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड्स के दौरों के सिलसिले में भी मुत्तला किया।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद किए जाने से मुतालिक खबरों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इन खबरों से इस बात की तस्दीक होती है जो पहले से मालूम था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में एक मखसूस मुकर्रर और तालमेल से की गई कार्रवाई थी जिसका मकसद पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नीस्तो नाबूद करना था।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत खुद को तमाम रुकावटों के मुकाबले अपने तौर पर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, ख्वाह वो रुकावटें इक्तसादी हों, तकनीकी हों या जोग्राफियाई सियासी। नई दिल्ली में CII सालाना बिजनेस समिट 2026 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया हर रोज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम, जोग्राफियाई, सियासी और कारोबारी सूरत हाल की वजह से बहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत लगातार इस मुखालिफ सूरत हाल को मौके में तब्दील करता रहा है। भारतीय इकतसादी बुनियादों को इंतहाई वसी तर करार देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत कभी दबाव में नहीं आया और चैलेंज भरे दौर में हमेशा ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अहलकारों, अवामी शिकायतों और पेंशन के महकमे के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की सदारत करेंगे। काफी वक्त से इल्तवा में पड़ी 985 शिकायतों पर, जिनका ताल्लुक 37 वजारतों और महकमों से है, अदालत में बरमौका हल के लिए गौर किया जाएगा। पेंशन और पेंशन याफ्तगान के महकमे ने बताया कि अब तक 15 पेंशन अदालतों के जरिए तकरीबन 28,000 मामलों पर गौर किया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 20,000 को बरमौका ही निपटा दिया गया, जिससे कामयाबी की 71% की शरह का इजहार होता है। स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि NCERT और CBSE ने मुश्तरक तौर पर तीसरी जमात से आठवीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच और मस्नूई जहानत से मुतालिक एक नई दरसियात तैयार की है। इस पहल के मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि यह दरसियात पहले ही नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद मुतला किया कि NCERT नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जमात के लिए भी मस्नूई जहानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए राजस्थान में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। कल तक गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा हंसते जख्म फिल्म से है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए, अब सुनिए पंडित दिनकर कैकिनी का राग सावनी बिहाग में ख्याल गायन। तबले पर संगत की है यदुनंदन गोस्वामी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित दिनकर कैकिनी का राग सावनी बिहाग में ख्याल गायन। तबले पर संगत की थी यदुनंदन गोस्वामी ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं, ये सूचना निश्चित रूप से हम

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। अब हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है।

0: ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswami has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government.